0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए

0: किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन नवीन माफ कीजिएगा इसे एक बार फिर सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's unified payments interface, UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, Prime Minister praised UPI as ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Mr. Modi said it is because of this impact that French President Emmanuel Macron said that UPI is not just a tech story, it is a civilizational story. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness and enhance public engagement. PMML chairperson Nripendra Mishra presided over the inauguration ceremony. Speaking on the occasion, PMML Director Ashwini Lohani said the Nehru Planetarium has emerged as one of the leading planetariums in the country, equipped with state-of-the-art facilities to promote scientific temper and inspire curiosity among students, youth and the public. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centres, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:40 होने को हैं। आइए सुनते हैं चिंतन जो आधारित है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पर।
1: बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया, ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा। बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है, जो है 3 सार्वभौमिक सत्य, 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक आर्य मार्ग। 3 सार्वभौमिक सत्य, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया, 3 सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मांड में कुछ नहीं खोता। ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। मनुष्य मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं। कारण और प्रभाव का नियम, बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। 4 आर्य सत्य, बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख का सच, जीवन में सभी मनुष्य किसी ना किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है। बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। उस मार्ग का सत्य है जो हमें दुख से मुक्त करता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक आर्य मार्ग, अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए 8 महान मार्ग निर्धारित किए हैं। वे हैं सम्यक समझ,

0: चार आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। सही विचार, सम्मा संकल्प, व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। सम्यक वाक हमें सदैव दयालुता पूर्वक सचेत होकर दूसरे का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। सही कर्म सम्मानता, इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छे व्यवहार करना शामिल है। सम्यक आजीविका सम्मा आजीव, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी आजीविका ना कमाएं और दूसरों को दुखी करके खुशी ना पाएं। सम्यक प्रयास सम्मा वयम, इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सही जागरूकता, इसका तात्पर्य स्वयं शरीर दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सम्यक एकाग्रता संपूर्ण समाधि, चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनियतता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति आष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। ये हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा या जान लेने से दूर रहें, जो ना दिया गया हो उसे लेने से बचें, चोरी ना करें, इंद्रियों के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें, झूठ ना बोलें और दूसरों के बारे में गलत बात ना कहें, किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, जो आधारित था बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड खंड 43।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस का अयोध्या कांड खंड 43। अब समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य यूपीआई इत्यस्य वैश्विक विस्ताराय आह्वानं कृतवान्। सः वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रम् आहूतवान् यत् तत् भारतस्य स्वदेशीयेन उपभोक्तृदेय जालेन यूपीआई इत्यनेन सह अधिकानां देशानां देय प्रणाली संयोजये तथा भारतीय प्रवासी जनानां धनप्रेषण व्ययस्य न्यूनीकरणे साहाय्यं कुर्यात्। प्रधानमंत्री एतद् ह्यः मुंबई नगरे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य सप्तम संस्करणं संबोधयन् उक्तवान्। प्रधानमंत्री यूपीआई इत्येतत् वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विजेतारम् इति वर्णयन् उक्तवान् यत् गते मासे यूपीआई माध्यमेन 400+ कोट्यधिकाः धन विनिमयाः अभिलेखिताः। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् धन विनिमय व्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालीषु वैश्विक सहकारः नूतनं लक्ष्यं भवितव्यम्।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतेन नवोन्मेषं सर्वसमावेशितान् च केन्द्रे निधाय वित्तीय प्रौद्योगिक्याः यात्रा नूतनानि शिखराणि प्रति नीता अस्ति। असौ उक्तवान् यत् एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम चेत्यादयः प्रविधयः वित्तीय क्षेत्रे नवीन संभावनानां द्वाराणि उद्घाटयन्ति। चतुर्दिवसीयम् ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्येतत् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य 11 दिनांक पर्यन्तं मुंबई नगरे आयोजितः अस्ति। ध्यातव्यमिदं यत् फेस्ट इदं ह्यः एव आरब्धमासीत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् संकटकाले भारतं सर्वदा दृढतया श्रीलंकायाः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो अब रोजमर्रा के वास्तविक बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। कनाडा ने अमेरिका के 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन

0: दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात भी शामिल है। अमरीका के लगभग 700 उत्पादों पर 15 से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और क्वाइन ऑपरेटेड आर्किड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉ. मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एरिना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: रीइटरेटिंग हिज कोर फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both the nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at the Rudraksh Convention Center in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. A report.
3: The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centers, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Nutrition Month 2026 will highlight dietary diversity and adequate protein, fresh hot cooked meals at Anganwadi centers, community ownership and accountability, education for nutrition and early childhood development, and completion of 10 years of the Pradhan Mantri Matrivandan Yojana. The inaugural event in Varanasi will feature a nutrition fair, a video presentation based on beneficiaries' experiences and a dialogue between the Union Minister and Anganwadi workers. Union Minister of State Savitri Thakur and the State's Minister for Women's Welfare, Child Development and Nutrition Baby Rani Maurya will also be present. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Anganwadi workers and helpers. The state government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Anganwadi workers

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आपने सुना नितिन सवनेरी के गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और इस प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रात का सन्नाटा टूटा है, अब सुरों का सवेरा है। मौसम भी बड़ा आशिकाना और बेहद सुनहरा है। उठिए और मुस्कुराइए अपने गमों को पीछे छोड़कर, क्योंकि आज फिर एक नया सवेरा है।

सूरज की किरणें खिड़की से मुस्कुराई है, हवाएं अपने साथ एक नई धुन लेकर आई है। उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, हवा भी ठंडी है और मौसम है प्यारा।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बात है। बहानों को पीछे छोड़िए और उठ खड़े हो जाइए, क्योंकि मंजिल पाना अब आपके हाथ है।

बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं करते, जो मेहनत करते हैं वो हासिल कर लेते हैं। वक्त और हौसलों के दम पर हर मुश्किल आसान होती है, मेहनत जारी रखने पर एक दिन फतेह उनके ही नाम होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
2: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ

0: मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन

0: विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों

0: जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
3: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा UPI. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी transformation है कि जब भी fintech की चर्चा होगी, तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले.
2: Defense Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a 3-day visit to Sri Lanka, made the remarks while interacting with members of the Indian diaspora. The Defense Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and contributes more than 16% to global growth.
3: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है.
4: टुडे इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 16% टू ग्लोबल ग्रोथ. ओवर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी हैज डबल्ड एंड एट अ टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग एट

0: Saira. Thanks, Shakun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed five Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिले जिक्र दास्तान है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती, जुनूबी, मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में आर्याना सवालिनका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिनटेक में भारत की नुमाया कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क का रुकूम के लेन देन का यूनिफाइड इंटरफेस यूपीआई कामयाबी की दास्तान का एक गैर मुतनाज़े हिस्सा है। मुंबई में फिनटेक आलमी फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली है कि जब भी फिनटेक का जिक्र किया जाता है तो ये यूपीआई के बगैर अधूरा रहता है।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: टेक्नोलॉजी के जरिए तफवीज इख्तियारात के अपने बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए वजीर आजम ने यूपीआई की माली शमूलियत के एक हतमी आले कार के तौर पर सताइश की, जो ऐसे शोबों में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ जिन्हें रिवायती बैंकिंग तौर तरीकों में नजरअंदाज कर दिया गया था। वजीर आजम ने इशारा दिया कि सिर्फ अगस्त के महीने में यूपीआई के जरिए 24 अरब से ज्यादा बार रकूम का लेन देन किया गया। भारत के अहम डिजिटल लेन देन निजाम की आलमी पैमाने पर वसत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अब यूपीआई का इस्तेमाल 11 मुल्कों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी सतह पर रुकूम के लेन देन के लिए वो सब कुछ रोजमर्रा की एक हकीकत बन गया है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरान की इस घड़ी में हमेशा श्रीलंका के साथ है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और अकीदे पर मबनी हैं। जनाब सिंह श्रीलंका की सरकर्दा क्यादत के साथ बातचीत के लिए कल इस मुल्क के अपने पहले 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत के दौरान ये रायजनी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी तहजीबी और तहजीबी सकाफती रिश्ते हैं, जिससे दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई है।
3: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है पिछले 10-12 सालों में।

0: लिए अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: भारत और कुवैत ने मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कल कुवैत में भारत कुवैत दफ्तर खारजा के 8वें दौर का सलाह मशवरा किया गया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन और कुवैत की उमूर खारजा की वजारत में एशियाई उमूर के असिस्टेंट वजीर खारजा नवाफ अब्दुल लतीफ़ सुलेमान अल अहमद ने इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने सियासी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सलामती, तवानाई, टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों के बारे में तबादले ख्याल किया। उन्होंने बाहमी तआवुन के मुश्तरका कमीशन के तरीक़ेकार के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजारत खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुनासिब तारीख पर नई दिल्ली में दफ्तर खारजा के अगले दौर के सलाह मशवरे से भी इत्तेफाक किया। वजारत ने कहा कि भारत और कुवैत के दरमियान देरीना रबते हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। वजारत ने यह भी बताया कि कुवैत में 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम रबते के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत आज वाराणसी में तग़ज़िये के 9वें कौमी महीने 2026 का आगाज करेगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नपूर्णा देवी वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेक्शन मरकज में इस मुहिम का आगाज करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: ये मुहिम सितंबर के महीने में पूरे मुल्क के आंगनवाड़ी मरकजों, स्कूलों, पंचायतों और घरों में समाज के लोगों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। इस साल तग़ज़िये के कौमी महीने का मौजू है हमारी आंगनवाड़ियाँ हमारी जिम्मेदारी। तग़ज़िये के महीने 2026 के दौरान खुराक के तनव्वो और वाफिर प्रोटीन, आंगनवाड़ी मरकजों में ताज़ा गर्म पका हुआ खाना, समाज की जिम्मेदारी और जवाबदेही, तग़ज़िये और बचपन के इब्तदाई दौर की तरक्की के बारे में तालीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 साल की तकमील, वाराणसी में मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में तग़ज़िये से मुतालिक एक मेले, मुस्तफिदीन के तजुर्बात पर मबनी एक वीडियो प्रेजेंटेशन और मरकजी वजीर आंगनवाड़ी कारकुनों के दरमियान एक मुजाकरे का अहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर ममलकत सावित्री ठाकुर और ख़वातीन के बहबूद और बच्चों की तरक्की और तग़ज़िये की रियासती वजीर बेबी रानी मौर्य भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: नागालैंड भी मुल्क के उन हिस्सों में शामिल हो रहा है जहां नवा राष्ट्रीय पोषण माह 2026 मनाया जा रहा है। समाजी बहबूद का रियासती महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम देने में सरगर्म है। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के कौमी वजीर नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवीरम एलिवेटेड राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। कौमी शाहराह नंबर 66 पर 6 लेन वाले 5 किलोमीटर से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 641 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि इससे पणजी और रियासत के शुमाली हिस्से के दरमियान ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। ये राहदारी आम ट्रैफिक के लिए 11 सितंबर को शुरू कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उम्मीद है कि इस राहदारी से रोजाना 75,000 से 80,000 गाड़ियां गुजरेंगी। इस तरह मौजूदा सड़कों से तकरीबन 60% गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मापुसा पणजी के मसरूफ रास्ते पर गाड़ियों के हजूम में कमी लाना है। ये उम्मीद भी की जाती है कि इस आम राहदारी से सयाहों और तिजारती गाड़ियों की नकलो हरकत में बेहतरी आ जाएगी। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे खित्ते मजीद तनाजे का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी फौज ने पिछले 2 दिन के दौरान अमेरिकी बहरी जंगी जहाज पर ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाबी इस्लामी IRGC की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान के खाम तेल के 5 टैंकरों को तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने उर्दुन में अमरीकी ठिकानों पर मिजाइल हमले किए। अमेरिका की मरकजी कमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले 2 दिन के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाने की 2 बार कोशिश की जिसके

0: जवाब में ये हमले किए गए। उधर आईआरजीसी ने बहरेन और कुवैत की बंदरगाहों के करीब टैंकरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कनाडा ने 600 से ज्यादा अमरीकी अशिया पर 50% तक जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं। इस तरह दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक तिजारती तनाजे को हवा मिल गई है। अमरीकी अशिया पर यह महसूल कल रात से लागू हो गया है। मुतासरा अशिया में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मादे, टॉयलेट पेपर जैसी घरेलू लाजमी अशिया शामिल हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अशिया की सरकारी खरीद उस वक्त तक बंद रखें जब तक कनाडा अमरीका के ताजिरों और किसानों को कनाडा की मार्केट में बराबर की रसाई फराहम नहीं कर देता। छत्तीसगढ़ में कनकेर की एक अदालत ने 5 माओनवाजों को सजाए कैद सुनाई है। इनमें खतरनाक माओनवाज प्रभाकर और उसकी अहलिया राजे कांगे भी शामिल हैं। इन लोगों को यह सजा 2015 में हिफाजती दस्तों पर किए गए एक हमले के केस में सुनाई गई है। प्रभाकर डंडा करनिया खसूसी जोनल कमेटी DKSZC का एक कारिंदा है और उसकी बीवी राजे कांगे डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM दर्जे के साथ इस कमेटी से मुंसलिक है। इन दोनों को 7 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। इस केस में मुलविस 3 दीगर माओनवाजों को 5-5 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। ये केस 2015 का है जब माओनवाजों के एक ग्रुप ने हिफाजती दस्तों की एक टीम पर हमला कर दिया था। भारत में जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने से पहले इम्कान है कि एक बार फिर मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो। बारिश का यह सिलसिला वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत में 12 से 21 सितंबर के दरमियान जारी रहेगा। मौसमियाती रुझान से पता चलता है कि यह आइंदा बारिश मानसून की वापसी के दौरान आर्जी तौर पर इसके सरगर्म होने की अलामत है, जिसके तहत सितंबर के दूसरे निस्फ में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। जुनूब मगरबी मानसून की वापसी का सिलसिला आमतौर पर शिमाल मशरकी भारत से शुरू होता है। इसके बाद यह सिलसिला जुनूब और मशरक की तरफ चला जाता है। महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार, झारखंड, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजाइर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अमरीकी ओपन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स की दिफाई चैंपियन और आला दर्जे की खिलाड़ी एरेना सबालिनका सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में 6ठे दर्जे की लिंडा मास्कोवा को शिकस्त दी। सबालिनका ने कल रात एक जबरदस्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से कामयाबी हासिल की। मर्दों के सिंगल्स में 11वें दर्जे के फ्रांसिस तियाफो ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने जोड़ीदार अमरीका के एलेक्स माइकलसन को 5 सेटों के एक सनसनीखेज मैच में शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला 8वें दर्जे के अमरीकी शेल्टन बेन से होगा। अहमदाबाद में आज तीर अंदाजी की आलमी पैरा सीरीज में भारत के पैरा तीर अंदाज कई तमगे जीतने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ जुमरे में बहुत से सोने और कांसे के तमगे जीतने की तैयारी में हैं। फाइनल में पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम के गोल्ड मेडल के लिए भारत की भावना और हरविंदर सिंह का मुकाबला चीन के लियांग क्यूरुंग और जाई ली से होगा। साल 2026 के एशियन गेम्स के लिए भारतीय दस्ते को कल नई दिल्ली में नौजवानों की उम्र और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार अलविदाइया दिया गया। डॉक्टर मांडविया और ओलंपिक एसोसिएशन के सदर PT उषा, खेलों के सेक्रेटरी हरिरंजन राव और शेफ दे मिशन सहदेव यादव ने एथलीट्स और माविन स्टाफ की मौजूदगी में बाजाबता जर्सी का इजरा किया। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने मुंबई में मुनक़दा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें एडिशन की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमायाँ किया है कि UPI अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं बल्कि अब ये 11 ममालिक में दस्तियाब है। इसी अखबार की एक और खबर है, वज़ीर आज़म ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 22 सितंबर को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा

0: है कि UPI भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिले जिक्र दास्तान है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में आरियाना सबालिंका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 8:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आइए सुनते हैं अपूर्वा तिवारी का गायन राग मियाँ की तोड़ी में।

अभी आप सुन रहे थे साइंस मैगजीन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 9:30 होने को हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

जुगनी कोई हीर से आल दिए, जुगनी कोई हीर से आल दिए, या नहीं वाल दे, या नहीं वाल दे नाल दिए, या सुते मिर्गे खान ताई, या सुते मिर्गे खान ताई, राम से

अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उधर कनाडा ने अमेरिका की 600 से अधिक चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताज़ा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता से दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारतेंदु ने भाव, भाषा और शैली में नवीनता का समावेश कर हिंदी को आधुनिक स्वरूप दिया। इसके अलावा श्री शाह ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि करगिल युद्ध में कैप्टन बत्रा ने न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया बल्कि अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और वीरता के जरिए सहयोगी सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा का अनुमान है। मौसम के मॉडलों के ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ read by Shagun Chopra.

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद। नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट अर्चना सचदेवा। दिलों के तार जो छुए वो साज बनते हैं, दिलों के तार जो छुए वो साज बनते हैं, कुछ गीतों से जुड़े खास एहसास बनते हैं। यूं तो हर नगमा अपने आप में मुकम्मल है, पर जो आप सबकी पसंद का हो वो नगमे खास बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी की पसंद जो है वो अब शुरुआत होने वाली है जल्दी से, और इससे पहले कि हम आप सबकी पसंद को लें, शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत से।

दोस्तों, आप सबके मेल लगातार आ रहे हैं और जिससे पता लगता है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार में रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मैसेज की। ये है सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव, कुमार संचित देशमुख, प्रधमेश सरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख जाफराबाद से। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा देवांगन की, छत्तीसगढ़ से। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशान जगताप, ये हैं समता नगर काष्टी से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, ये अगला मेल हमारे पास आया है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का। इन्होंने कहा है कि नमस्कार, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। और इसी तरह आप सभी कुछ ना कुछ अपने विचार हमें देते रहिए। और ये अगला हमारे पास मैसेज आया है मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और सभी इनके परिवार के सदस्य। और ये हमारे नियमित श्रोता हैं, अब तो इनके हमें नाम भी याद हो गए हैं। और ये हमारे पास अगली फरमाइश है पंकज शर्मा की, करनाल से, सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, जगमोहन प्रजापति, किरण और जग्गी दुआ की। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, हरजिंदर सिंह भाटिया। इन्होंने लिखा है कि सत श्री अकाल, और पहला नगमा सुनकर ही दिल बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे भी इसी तरह हमें मेल करते रहिए आप। संबलपुर कांकेर से है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और दोस्तों, एक ख्वाहिश पूरी हुई तो दूसरी ने दस्तक दी है, एक ख्वाहिश पूरी हुई तो दूसरी ने दस्तक दी है, और आप सभी दोस्तों के इस प्यार ने ही इस महफिल को रौनक दी है। बिल्कुल, आप सब हैं तो हम भी हैं, और इसी से ही रौनक है। तो आइए रौनक में और चार चांद लगाते हैं इस गीत से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना, और शुरुआत करते हैं आपकी फरमाइश।

से ये हमारे पास फरमाइश आई है MLB रोड ग्वालियर से। सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और SK पप्पी की। ये है शास्त्री नगर बीड शहर से। किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल की। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। और दोस्तों, आप सबकी फरमाइश फिर से रिपीट कर रहे हैं आप, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी फरमाइश एक ही बार भेजें, जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो और बाकी फरमाइशें भी हम शामिल कर पाएँ। और ये हमारे पास अगली फरमाइश आई है उत्तम नगर दिल्ली से, जो बोधराज खोरवाल हैं, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, इनकी बहुत बार फरमाइश इन्होंने भेजी हुई है। छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। मुरादाबाद से हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर, तनवीर आलम अंसारी। मुरादाबाद से ही असना तनवीर अंसारी, अतिशबा तनवीर अंसारी, मोहम्मद फरीद अंसारी। मुल्लापुर दाखा से हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। कालका से हैं डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, TD मल्होत्रा। अलीगढ़ डव्वाली से हैं बसंत सिंह चत्र, राजकुमार, कुलदीप गांधी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इन्होंने लिखा है कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और आप, हम जानते हैं कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं, और अच्छा है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, तभी हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए और अच्छा कार्यक्रम पेश कर पाएँ। और बेंगलोर से हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्रु भूषण, संस्कृति और पौरुष। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

और हम यहाँ हैं दोस्तों आप सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए। और ये हमारे पास फरमाइश आई है महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे की। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। मुरादाबाद गांव दूलापुर से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। कश्मीर से हैं मजरुद्दीन और ये हैं जावेद, एस एम जावेद हैं, शगुफ्ता, अंजुम, गुमला झारखंड से। और ये वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड से हैं हाजी फाक और मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आप सबकी फरमाइशें हमारे पास लगातार आ रही हैं और समय भी तेज़ी से भाग रहा है, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी आपकी फरमाइशें पूरी कर लें। ये हमारे पास फरमाइश आई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता।

और डिंपल देवांगन की, इन्होंने लिखा है कि आपकी प्रस्तुति लाजवाब चल रही है, गीत संगीत की ऐसी सुरीली महफिल सजी है कि दिल बस सुनता ही जाए, और हम आपका कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जर्रा नवाजी का। और ये फरमाइश हमारे पास आई है बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय और अमित कुमार हैप्पी। मलियन सरधना मेरठ से हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम जैन। सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल, इनकी फरमाइश आई है जालंधर पंजाब से। कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका। पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा। और ये श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, इन्होंने फिर से अपनी फरमाइश भेजी है। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। तो आप सभी की फरमाइश को सलाम है और सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

और अगली फरमाइश हम पढ़ते हैं दोस्तों आपकी पसंद कार्यक्रम में, रविंद्र मोहनदास आशा देवी किशनगंज बिहार से। और ये फरमाइश हमारे पास आई है छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डोली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका, प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अल कबीर। कृष्णा कॉलोनी हांसी से हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, दंतरेंगी से हैं ये। पंजाब से मिंटू, टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। और ये हमारे पास फरमाइश आई है खेल बाजार पानीपत से, इन्होंने लिखा है कि जान पहचान वाले तो आपने 4 बार शामिल कर लिए हैं, अब गैरों को भी शामिल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप जो हैं हमारे लिए सब एक से हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जान पहचान है या कोई गैर है, और हमारे लिए सभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो ये फरमाइश है खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। तो अब आप खुश हो गए होंगे क्योंकि अब आप गैर नहीं रहे। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और हांसी से ही सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी। और ये हमारे पास फरमाइश आई है बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता की। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। छत्तीसगढ़ से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: पलकें झुकी पलकें उठी, क्या कह दिया क्या सुना।
1: दोस्तों, फरमाइशों का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, यादों का ये खूबसूरत कारवां भी हर मोड़ पर मिलता रहेगा। आज की महफिल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ। सुरों के इस सफ़र को यहीं देते हैं विराम। रखिएगा अपना ख्याल और हंसते मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: अभी आप फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका।

अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री

0: यूपीआई, मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाक अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए गए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिलमे की सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और वहां पहुंचने में कठिनाई के कारण टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। उधर अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिन में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण तथा बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज जेसिका ने एम्मा नवारो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने अनुराधा पौडवाल और अनवर की आवाज़ में ये गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं अभिजीत सावंत की आवाज़ में।

अभी आप अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें आज आप सुनेंगे मिथिलेश कुमार सिंह का गायन राग मुल्तानी में।

가리자. 내가 내가 내가 가리자. 아니 바 내가 너무 가리자.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप मिथिलेश कुमार सिंह का गायन सुन रहे थे राग मुल्तानी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से हैं। 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार

भार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी।

0: कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
0: भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमेरिका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years in public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said, Mr. Modi will complete 25 years of his public service on the 7th of October, as on this day in 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. He added that over these years, Mr. Modi has steadfastly continued this journey of service, guided by the mantra of from public service to national service. The Seva Sankalp Abhiyan will begin with organizing blood donation camp. Mr. Naveen informed that Seva Jyoti Kalash Yatra will also be taken out on the 7th of October, connecting villages and urban areas to express gratitude to the Prime Minister. External Affairs Ministry today stated that the Indian forensic team in Kathmandu has made significant progress in its work, processing more than 1,400 DNA samples so far. It said that the team has

0: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
1: रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। और रश्मि जी, हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 KHz पर। और देखिए रश्मि जी, जो हमारे श्रोता है ना, उनका साथ हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाते हैं, क्यों
1: जी? बिल्कुल।
0: और तो ऐसे ही हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमें हर रोज एक नई ऊर्जा से भरते रहिए। तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज अपने आज के प्रश्न से, क्यों
1: जी? और प्रश्न से पहले कुछ एक जानकारी भी दे दे।
0: हाँ जी, हाँ,
1: तो देखिए, क्योंकि आज जो है हम याद कर रहे हैं मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी को, और उनकी पुण्यतिथि है आज। और उर्दू के प्रसिद्ध शायरों में उनका नाम गिना जाता है। जो उनकी गजलें हैं वो प्रेम और संवेदना का संदेश देती
0: जी,
1: हैं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, काफ़ी अभी अपनी अभिव्यक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे मुरादाबादी जी, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देखिए, आज साथ ही साथ आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की भी जयंती है। और आपका जो मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारत तेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उन्होंने गद्य से लेकर कविता, नाटक और पत्रकारिता तक हिंदी का नक्शा बदल कर रख दिया था,
1: जी।
0: है ना? और
1: और अनगिनत जो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। और अगर हम याद करें तो भाई, अब जो सितंबर माह है, बहुत जल्दी हिंदी दिवस भी आएगा प्रतिभा। और उनका जो कहा हुआ कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा की जो तरक्की जब होती है तो फिर सब तरफ से तरक्की होती है, तो इसी से कुछ जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न। तो हम आज याद कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और साथ भी ले रहे हैं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा, विषय से जुड़ा प्रश्न। वो बताइए आप
0: जी। आज देखिए रश्मि जी, जो भाषा होती है वो सिर्फ संवाद का जरिया ही नहीं होती बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी होती है।
1: वाह, कितनी सुंदर बात
0: जी। और तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे श्रोताओं को बताना है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उनकी उसकी कौन सी खासियत बहुत प्रिय है, है ना? उसके बारे में हमारे श्रोता आज हमें बताएं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं?
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष लिया है प्रतिभा आपने। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो भाषा अपने आप अकेले में तो बोलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उन भाषा में संवाद नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है अपने अपने काम में लगे होते हैं, तो भाषाएं जो है ना हमारी छूटती सी जाती हैं परिवार
0: जी,
1: में
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ये अच्छी बात है कि वो क्या कर रहे हैं।
0: तो हमारे श्रोता हमें इस प्रश्न का जवाब दें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com।

0: दुल्हन एक रात की। अभी इस फिल्म से आपने गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और बात करते हैं रश्मि जी जीरो FIR की, है ना?
1: जी बिल्कुल। और ये जो जीरो FIR है, ये एक ऐसी FIR है प्रतिभा, जो घटना होती है वो उसके स्थान के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले भी किसी भी पुलिस थाने में ये जीरो FIR करवाई जा सकती है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है जीरो FIR, इसके बारे में आप बताएं।
0: देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि होता क्या है कि अगर घटना किसी दूसरे शहर में पहले होती थी तो जो भी पीड़ित होती थी महिला या कोई भी व्यक्ति, तो वो उस अधिकार क्षेत्र में जो थाना आता था वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते थे। तो इस समस्या के हल के लिए अभी ये किया गया है कि अगर घटना किसी भी शहर में हुई है तो आप वहाँ जाकर उस थाने में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
1: या जिस महिला के साथ घटना दूसरे शहर में हुई है, तब भी वो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ऐसा होता है, जो संबंधित पुलिस थाना होता है वो बाद में उस FIR की कॉपी को क्षेत्र के संबंधित थाने में भेज देता है जहाँ पर घटना हुई थी। ऐसा जो थाना है वो मना नहीं कर सकता कि जो है उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो जीरो FIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि घटना के स्थान को लेकर जो है कोई विवाद ना हो और शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी ना हो।
0: हाँ बिल्कुल। और देखिए, किसी भी पुलिस थाने में जैसा कि आपने बताया कि शिकायत ये दर्ज कराई जा सकती है, क्षेत्र अधिकार की बाध्यता नहीं है जैसा अभी हम बता ही रहे थे। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि FIR उसी थाने में दर्ज हो जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।
1: और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है जो छेड़छाड़ या हिंसा या कोई ऐसा अपराध हो जाए, उस स्थिति में तत्काल अगर शिकायत करानी हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है, और दर्ज कराने में, शिकायत दर्ज कराने में इसकी में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल। और देखिए, शिकायत दर्ज होने के बाद आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, और अपराध की जगह कोई भी हो, शिकायत दर्ज कराने में देरी नहीं होनी चाहिए। और जो जीरो FIR है, इसी अधिकार और सुविधा को मजबूत करती है।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी तकदीर। और रश्मि जी, देखिए अब बात करते हैं नागालैंड के एक ऐसे गांव की जिसने प्रकृति के संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया।
1: जी, कौन सा गांव है ये?
0: भाई, उस गांव का नाम है खोनोमा गांव।
1: अच्छा,
0: और अंगामी नागा समुदाय का ये गांव पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली की मिसाल माना जाता है।
1: जी, यानी कि जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो भाई ये जो गांव है और यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि अब जो बाकी सारे गांव हैं उनके लिए भी अनुकरणीय है। तो होता क्या था प्रतिभा, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो शिकार के लिए जाने जाते हैं
0: जी
1: और शिकार करने जाते थे, पर बुज़ुर्गों को ये महसूस हुआ कि इस अत्यधिक शिकार से जो वन्य जीवन वो प्रभावित हो रहा है, और वहाँ पर जो एक अति दुर्लभ पक्षी जो थे उनका जब शिकार हुआ तो वो बहुत ही उनको लगा कि ये अब रोकना पड़ेगा, और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये माना कि हमें ये रोकना चाहिए। और शिकार जो जब रोका गया तो फिर पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ा।
0: बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर जो है ना, हॉर्नबिल नाम का जो एक पक्षी है उसकी प्रजाति एकदम विलुप्त हो गई थी, जैसा कि आप बात कर रहे थे। तो जो बुज़ुर्गों ने ये जो एक इनिशिएटिव लिया, एक जो स्टार्ट किया, ये बहुत ही अच्छा किया। और देखो, यहाँ की जो ना केवल उनका जो एफर्ट है कि प्रकृति संरक्षण, साथ ही साथ अगर हम खोनोमा गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर पारंपरिक सीढ़ीदार खेती और एल्डर पेड़ों का उपयोग भी प्रकृति के साथ तालमेल का जो एक बेहतरीन उदाहरण है।
1: जी
0: और जो खोनोमा ने प्रकृति की रक्षा के साथ आजीविका

0: उद्यमिता के अवसर भी देखिए विकसित किए हैं। यहाँ पर इको टूरिज्म, होम स्टे, बांस के उत्पाद और वर्षा जल संचयन की जो भी जो शैली है उसने उनकी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा टिकाऊ बना दिया है।
1: जी
0: और जो खनोमा गांव जो है हम एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।
1: हाँ। और यहाँ पर इसके अलावा जो ट्रेपोगन अभयारण्य है उसको विकसित किया गया है, और जो दुर्लभ जो वन्य जीव है, खासकर जो ब्लाइथ ट्रेपोगन है, इन पक्षियों का संरक्षण हुआ है। और जो आपने पारंपरिक एल्डर पेड़ों की बात की, तो सीढ़ीदार पारंपरिक होते
0: जी
1: ही हैं पेड़, तो उससे क्या होता है जो उर्वर रहते हैं खेत। और ये भी कोशिश की गई, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो उसमें भी बहुत मदद मिली। तो कुल मिलाकर सभी जो रहवासी हैं उन्होंने मेहनत करी और जो गांव को एक अच्छा पर्यावरण संरक्षण करते हुए उदाहरण बना दिया।

0: मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी महबूबा। और रश्मि जी, हमारे जो प्रश्न था उसके जवाब आने लग गए हैं हमारे
1: जी
0: पास।
1: बिल्कुल। और एक प्रश्न आप एक बार फिर बता दीजिए
0: देखिए,
1: प्रतिभा।
0: हमारा जो श्रोताओं प्रश्न था वो भाषा से जुड़ा हुआ था कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत प्रिय है, उसके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और जो पहला जो जवाब आया है वो नवीन भाटिया जी का मोतीनगर से आ गया है। वो कहते हैं सिंधी में हम बोलते हैं और सबसे अच्छा शब्द जो लगता है उन्हें वो है सुथो। शायद मैं सही उच्चारण किया है, बताएंगे वो, यानी अच्छा। और भाई वाह, बहुत
0: जी हाँ,
1: अच्छा।
0: बिल्कुल। और देखिए, दूसरा जो जवाब आया है वो महेश अग्रवाल जी का आया है, और उन्होंने बोला है कि हमारी जो मातृभाषा है वो सदाबहार भाषा है, और यहाँ ये जो है हमारे रग रग में रची बसी हुई है, और कहीं ना कहीं हम इस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। तो देखिए, ये बात तो है ही है कि सदाबहार है हमारी मातृभाषा, जो हम अपने घर में बोलते हैं, बड़ों से, बुजुर्गों से,
1: जी।
0: बच्चों से, उसका असर तो हमारे व्यवहार में, बोलचाल में नजर आता ही आता है।
1: और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नागलोई से, और वो कह रहे हैं कि भाषा तो अपनी जगह सभी अच्छी है, लेकिन हमें अपने जानकारों से बात करना या परिवार के सदस्यों से बात करना, उसमें मातृभाषा का असर ही ज़्यादा काम करता है, और भाषा से ही इंसान की खूबियों का पता चलता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वे कह रहे हैं कि भाषा जो है संस्कृति, समाज और परिवार और देश की पहचान होती है। भाषा पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे को भी आपस में जोड़ देती है, और हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और आप उसके अलावा शुभकामनाएं उन्होंने लिखी हैं, और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और एक और मेल हमारे पास आया है, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब तो नहीं है, परंतु आपने जो 0 FIR के बारे में कहा था ना प्रतिभा, तो डॉक्टर राजेश्वर राव राव का जो ये मेल आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 0 FIR को रजिस्टर करने से मना करते हैं तो ये एक कानूना अपराध होता है, और इसको चैलेंज किया जा सकता है उच्च अधिकारियों के द्वारा के पास।
0: जी
1: तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं, तो उसके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी हमें दी है। तो ऐसे ही हमारे पास से जुड़े रहिए और हमें मेल करते रहिए, हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार रहता है श्रोताओं। लेकिन आप जो है हमारा प्रश्न दोबारा प्रतिभा आपको बता देती है, मेल एड्रेस फिर बता देती हैं। हमारा प्रश्न है
0: जी हमारा प्रश्न मातृभाषा से जुड़ा हुआ है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत ज़्यादा प्रिय है, और उसके बारे में आपको हमें बताना है। और साथ ही साथ अपने घरों में आप बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और एक और मेल आ गया है प्रतिभा हमारे पास, उमेश जी, उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं कि हमें अपनी मातृभाषा का वो शब्द प्रिय है जिसमें भावना हो और अपनों का प्यार हो और संस्कृति हो, उसमें अपनापन और सुकून तो होता ही है, और बच्चों को जो है हम अपनी मातृभाषा भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: सही।
2: हंसो मत, बोलो।

0: अभिनेत्री फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: और अब बात करेंगे, एक ऐसी ज़रूरी बात है ये जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था मन की बात कार्यक्रम में, और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि इस अभियान का जो लक्ष्य है वो ड्रग फ्री इंडिया है। उन्होंने कहा कि युवा किसी न किसी तरह से जो ये नशे की लत का शिकार है, तो हमारा सामूहिक संकल्प ये रहेगा कि युवाओं की जो का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो खुशी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प होना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल। और देखिए, नशे की आदत सिर्फ युवा या उस व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी बात के दौरान उन लोगों की सराहना भी की है जो ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं।
1: और ये भी ज़रूरी है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अलग-अलग भाषाओं में ऐसा रचनात्मक कंटेंट बनाएं, चाहे वो वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, तो जो कि समाज को नशे के खिलाफ जागरूक कर सके।
0: जी
1: और क्रिएटिव जो कंटेंट है उसके फॉर्मल कैंपेन से ज़्यादा उसका असरदार होता है और वो ज़्यादा कारगर होता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, लोगों और क्रिएटर्स से उन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपील की है मन की बात में कि वे इस अभियान से जुड़ी अपनी कोशिशों और कहानियों को

0: सोशल मीडिया पर हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ शेयर करें ताकि ये एक व्यापक जन आंदोलन बन सके।
1: और जो युवा संगीतकार हैं और लेखक हैं, उनसे ऐसे ड्रग फ्री जीवन जीने का और उसका संदेश देने वाले शक्तिशाली नारे और गाने बनाने के लिए आग्रह किया। और ये भी कहा है उन्होंने कि छात्र और जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे दिल को छू लेने वाले नाटक लिखें और उसे प्रसारित करें, जिसमें कि ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनके साथ उनसे बाहर निकलने के रास्तों को दिखाया गया हो।
0: बिल्कुल, और देखिए कि ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिससे हम भी जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं और किसी के जीवन को बेहतर और नशा मुक्त बनाने में हम मदद कर सकते हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: जी, और ये फिल्म भी प्रतिभा जो नशे से मुक्ति के लिए ही बनी थी, उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में पूरी कहानी बुनी गई थी। तो ये गीत आपने इस जो सुनवाया हमारे श्रोताओं को, और अगला जो विषय है वो क्या लेने जा रही हैं आप?
0: देखिए, अगला जो विषय है वो पोषण से जुड़ा हुआ है ना। देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे देश का भविष्य है, ये हम सभी जानते हैं। और उनके स्वस्थ भविष्य की नींव जो जीवन के शुरुआती वर्षों में ही पड़ती है।
1: जी
0: पहले 6 वर्ष बच्चों के शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
1: और ये जो बात आप इसलिए बता रही हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, उसके बारे में भी तो बताइए।
0: जी, आज का दिन जो है 9 सितंबर से जो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत हो चुकी
1: जी
0: है,
1: जी बिल्कुल
0: तो इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और जो ये जो शुरुआत हुई है इस माह की, उसका जो उद्देश्य है वो बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने और समुदाय को पोषण संबंधी प्रयासों से जोड़ने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शुरू किया गया है।
1: जी। और इस वर्ष की थीम है प्रतिभा, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी।
0: जी
1: अभियान का जो उद्देश्य है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जो है प्रारंभिक बाल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में मजबूती से विकसित करना है। जो पोषण माह है इसके दौरान स्थानीय और कम लागत वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री से तैयार जो व्यंजन होते हैं उन्हें प्रदर्शन करना भी। देखो, हमारा जो स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी बहुत पोषण में मजबूत हैं, जैसे कि जो मिलेट्स
0: जी
1: हैं, यहाँ के मौसमी फल सब्जियाँ हैं, मेवे हैं, बीज हैं, दालें हैं, ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना पौष्टिक हैं खाद्य पदार्थ। जो इनको दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है, और साथ में जो है कम लागत से बनने वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री को पोषण मेले और प्रोटीन रिच फूड अभियान जैसी गतिविधियों से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, और इसी को ये आयोजन इसी को अंडरलाइन करते हुए किया जा रहा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और देखिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पके भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी इस जो जो चलेगा, जो महीने पूरा भर जिसमें गतिविधियां होंगी उसमें
1: जी
0: विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बात पर भी। और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर माताओं और अभिभावकों को पोषण और बाल देखभाल की जानकारी भी देंगे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रतिभा, जो हमारी भारतीय माएँ हैं वो तो बड़े उनको चिंता रहती है कि बच्चों को जो है
0: जी
1: ताज़ा और गर्म भोजन मिले।
0: जी
1: हर एक माँ की यही चिंता रहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं बच्चे को जो है ताज़ी अपने हाथ से बनी हुई रोटी खिला सकूँ, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो ये पोषण से भी जुड़ी हुई है और ज़रूरत है कि ये जो बच्चों का सुपोषण है भाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
2: समझो और समझा।

0: हम सभी जानते हैं कि शतरंज कितना पेचीदा खेल है ना,
1: बिल्कुल।
0: जिसमें
1: और
0: दिमाग लगाना है और उसमें
1: क्यों जी
0: चालबाजियां सीखनी है कि कैसे
1: जी
0: आपको सामने वाले को हराना है।
1: जी और क्योंकि एलेना जो है उसकी उम्र बहुत कम है भाई, वो सिर्फ 4 साल और 6 महीने की है वो लड़की, और ऐसी जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नन्ही सी कली ने एक आधिकारिक FIDE रेटिंग हासिल कर कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
0: बिल्कुल
1: और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने एलेना मिश्रा को 1432 की आधिकारिक ब्रिट्स रेटिंग दी है। भाई क्या बात है।
0: और देखिए ये जो उपलब्धि है उन्हें प्रतिस्पर्धी शतरंज में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली। और देखिए इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेटिंग हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
1: जी
0: और देखिए खास बात यह है कि 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिनकी आधिकारिक फीडे रेटिंग मौजूद है आज की
1: और
0: तारीख।
1: प्रतिभा मैं इनकी फोटो देख रही थी, बड़ी एक इनोसेंट सी इनकी फोटोग्राफ थी, और मुझे लग रहा था इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब ये लगता है कि अभी ये छोटी बच्ची क्या ही समझ पाएगी। लेकिन भाई ऐसी रणनीति बनाकर जो उन्होंने शतरंज खेली, भाई चाल ही तो चलनी होती है
0: जी
1: उसमें,
0: जी
1: तो ये कमाल की इस बच्ची ने शतरंज खेली और ये बड़ी रेटिंग लेकर आई, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी उपलब्धि जो है उन्हें अपने आयु वर्ग में दुनिया की सबसे अलग और खास खिलाड़ियों में शामिल करती है।
0: बिल्कुल देखिए आज वो दुनिया का उभरता हुआ सितारा बन गई है। और जो विशेषज्ञ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये मान रहे हैं कि अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत को एक और बड़ी शतरंज खिलाड़ी मिल सकती है।

0: और इस बीच एक और मेल आ गई है, मुकेश सटवार लक्ष्मीबाई नगर से कह रहे हैं कि हम बे शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो उत्तर प्रदेश से हैं और दादरी क्षेत्र से कहते हैं, और कहते हैं हम छोटे बच्चों से इसी भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा मंटू शर्मा कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबसे प्रिय भाषा है, राजू अग्रवाल हरियाणा से, और समय कह
1: जी कि
0: रहा
1: हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति, लेकिन रश्मि जी ये हमारा वादा है अपने श्रोताओं से कि फिर किसी और दिन इसी वक्त पर हम अपने श्रोताओं से ज़रूर मिलेंगे, बहुत सारे विषयों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन आप हमारे साथ इस मंच पर, इस कार्यक्रम पर हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। क्यों रश्मि जी?
0: जी बिल्कुल। और फिलहाल हम लेते हैं उनसे अनुमति
1: हाँ
0: और कार्यक्रम को समेटते हैं जिसका नाम है घर आंगन, और कहते हैं
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से

जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश

0: ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month on the occasion of the birthday of Prime Minister Narendra Modi to mark the completion of his 25 years in public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said the Prime Minister will complete 25 years of his public service on the 7th of October, as on this day. In 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. The BJP President emphasized that under the leadership of Prime Minister Modi, India's progress has not been limited to development, but India's cultural identity and heritage have also been strengthened.
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं
3: He did not just focused on infrastructure and development. He also sought to change the way the people of this country think. When we look at his entire tenure, we can see that his decisions were not merely transformative in terms of governance and development, but also brought about a significant change in the lives of ordinary people. His 25 years of service and dedication have been marked by continuous efforts, a life rooted in values and committed governance. His contribution has given a new dimension to the history of democracy in the world.
2: के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: The Seva Sankalp Abhiyan will begin with organizing blood donation camp. Mr. Naveen informed that Seva Jyoti Kalash Yatra will also be taken out on the 7th of October, connecting villages and urban areas to express gratitude to the Prime Minister. He said that Seva Mera Yogdan program will be held from the 17th of this month to the 17th of October, with public participation under which various activities will be undertaken.

यही सब चर्चाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम की आशा जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म भरोसा। भरोसा, वो भरोसा जो कि भाई हर किसी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और दो दोस्तों के बीच में भरोसा, दो कोई भी रिश्तों के बीच में भरोसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी एक गलत फहमी होती है और पूरा रिश्ता डगमगा जाता है। और इसी गलत फहमी और इसी भरोसे के ऊपर आधारित है साल 1963 में आई फिल्म भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इसी ताने बाने में बुनी गई है ये फिल्म, जहाँ पर एक दोस्त किसी काम से बाहर जाते वक्त अपनी सारी धन दौलत और अपनी बेटी सीता यानी कि आशा जी को अपने जिगरी दोस्त शिवचरण के पास छोड़ के चले जाता है। और जो शिवचरण है वो सीता को अपने बेटे रामा यानी कि गुरुदत्त साहब के साथ अपने ही बच्चे की तरह बड़ा करता है। वक्त बीतता है, रामा सीता बड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, भाई इसमें भरोसा कहाँ से टूटा या गलत फहमी कहाँ से आई? तो कहानी में आता है छोटा सा ट्विस्ट। जब रामदास वापस लौटता है तो वहाँ पर शिवचरण का जो लालची साला रसिक होता है यानी कि महमूद साहब होते हैं, वो थोड़ा सा जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि रामदास को लगता है कि उनके दोस्त शिवचरण ने उनकी जायदाद, उनके पैसे और उनकी बेटी के साथ धोखा किया है। और

वहीं पर यही सब चीज़ों को, या जो भी उनके जो रामा के पिता हैं शिवचरण, उन पर जो इल्ज़ाम लगे उन सबको मिटाने के लिए रामा आगे आते हैं और अपने प्यार सीता को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है, लास्ट में होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग, सच सामने आता है, सारे शक सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वापस से जो भरोसा है वो बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो सच्चा भरोसा होता है ना वो कभी भी नहीं टूटता है, इसीलिए सच्चा भरोसा हमेशा बना के रखिए। फिल्म के बारे में जुड़ी और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, बिल्कुल। कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, यही सब होता है अगर आपका भरोसा टूटता है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भरोसा के बारे में, और इस फिल्म में जो किरदार निभाया है वो हैं गुरुदत्त साहब। और वैसे जब भी हम गुरुदत्त साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो इमेज बनकर आती है वो प्यासा फिल्म या कागज़ के फूल फिल्म में जो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर निभाया, हमें वो नज़र आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर गुरुदत्त साहब ने हर तरह के रंगों का किरदार निभाया, और वही इस फिल्म में भी उन्होंने मस्ती भी की है, मज़े भी किए हैं, और शायद ये गीत सुन के भी आपको लगा होगा। वैसे गुरुदत्त साहब के बारे में एक चीज़ और मानी जाती है कि वो डायरेक्टर खुद भी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे एक निर्देशक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये पूरी फिल्म उन्होंने के शंकर साहब के साथ बनी। और के शंकर साहब दक्षिण भारत के एक काफ़ी बड़े निर्देशक रहे हैं, और गुरुदत्त साहब उनकी काबिलियत से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उनको सौंपा और कहा कि भाई अब आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। और जिस भरोसे के साथ गुरुदत्त साहब ने के शंकर के हाथ में ये फिल्म सौंपी थी, वो भरोसे पर पूरी तरह से सफल हुए। और

जिस भरोसे के साथ गुरुदत्त साहब ने के शंकर के हाथ में ये फिल्म सौंपी थी, वो भरोसे पर पूरी तरह से सफल हुए और इस फिल्म में उनकी जोड़ी आशा जी के साथ में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रही। वैसे ये फिल्म जो है ये एक चीज़ और साबित करती है कि गुरुदत्त साहब जो हैं

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात करें फिल्म भरोसा के बारे में। इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने जहां बिल्कुल अपने इमेज से अलग किरदार निभाया, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ जो जोड़ी बनी वो आशा पारिक जी की बनी। और आशा पारिक जी को आपने देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम चुलबुले और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख डांसिंग टाइप के जो उनके कैरेक्टर हुआ करते थे, बहुत चुलबुली होती थी वो अपने हर किरदार में। लेकिन इन सब के इतर इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही संजीदा किरदार निभाया है। एक बहुत ही मैच्योर लड़की का किरदार इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया कि हर किसी की आंखें नम हो गई उनके इस कैरेक्टर को देखकर। और दूसरी बात, भाई गुरुदत्त साहब के साथ उनकी ये जोड़ी पहली बार, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरुदत्त साहब आशा जी के साथ में आए हैं और उन दोनों ने इस इन किरदारों को निभाया। और वाकई में जब ये जोड़ी स्क्रीन पर आई तो हर किसी ने उनको प्यार दिया और लोगों के भरोसे पर ये जोड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ में उतरी। और वैसे भी जो 60 का दशक था उस वक्त में आशा जी को हिट गर्ल कहा जाता था, उनको जुबली गर्ल बोलते थे। वो जिस फिल्म में होती थी उस फिल्म का हिट होना या जबरदस्त सफलता पाना ये साबित कर देता है कि आशा जी जिस फिल्म में होंगी वो तो हिट होगी ही होगी, क्योंकि वो सभी के दिलों में राज करती थी। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और हमारी फिल्म है आज की भरोसा। भरोसा फिल्म जिसमें एक और ऐसा किरदार था जिसने इस फिल्म को हिट बनाने में पूरा साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, वो किरदार था कॉमेडी के किंग महमूद जी का। जी हाँ दोस्तों, महमूद साहब जब भी पर्दे पर आते तो भाई उनके लिए तालियां बजने लगती और लोग ठहाके लगाने लगते। वो इस तरह से अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना, ये तो हर कोई जानता है। और ऊपर से इस फिल्म में शोभा खोटे के साथ जो उनकी जोड़ी बनी, वाह, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, उसका कोई भी जवाब नहीं है। और साथ ही साथ उन दोनों की जुगलबंदी ने तो लोगों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। फिल्म में जहाँ दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब, आशा पारेख जैसे दिग्गज कलाकार थे, वहीं दूसरी तरफ महमूद साहब की जो अदाकारी थी, उनकी जब भी स्क्रीन पर एंट्री होती तो वो एक अलग और अपनी अलग पहचान, अपनी मजबूत पहचान के साथ आते। मतलब कह सकते हैं कि आप बड़े बड़े कलाकारों के रहते हुए महमूद साहब ने अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो हर किसी को मनवाई। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आपके साथ हूँ मैं, आपके होस्ट और दोस्त प्रीति, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जुड़े हमारे साथ कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरैया, जलंधर पंजाब से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और ये जुड़े हमारे साथ सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह।

के साथ पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के साथ, मेरठ कैंट से जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी के साथ में, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा जी, जसवीर, जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलकांत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता के साथ पिपरिया से, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम नागर कोहरा, जिला नंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव फनासी जिला हसार से जुड़े हैं राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं कि फिल्म में संगीत रवि का और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, मोहम्मद रफ़ी, आशा जी की आवाज़ में सभी नगमे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया के साथ, सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से, पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार साहू जी, और हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से, जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जोन टिकेस्ट्रो, रोजी पाल और विलिस टिकेस्ट्रो के साथ में। और दोस्तों ये अगला संदेश आया जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक का, निसार अली जी का हमारे पास ये संदेश है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू के साथ ये हमसे जुड़े हुए हैं, नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मनहरेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवशंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर के साथ, और ये जुड़े हैं डूंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं ये है चूड़ी लाइन मुंगेली से छत्तीसगढ़, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार के सभी सदस्य, पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप के साथ। तो दोस्तों ये थे वो सभी संदेश जिनके ज़रिए आप सभी हम तक जुड़े, हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम से जुड़े, अपनी जो बातें हैं वो आपने हम तक शेयर की। और देखो बातों बातों में वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और हमारी जो आज की फिल्म भरोसा है जिसमें आशा जी, गुरुदत्त साहब, महमूद साहब की अदाकारी थी, वैसे दोस्तों इस फिल्म को देखकर भी और वैसे भी हम यही कहेंगे कि रिश्ते चाहे कोई भी हो उनकी सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। और उम्मीद है आज का ये सफ़र, ये जो गीत हैं, ये सब आपके दिल को ज़रूर छुए होंगे। तो अब वक्त हो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी से चाहूँगी विदा लेना, लेकिन छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ਦੇ ਪੈਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇਸਾਦਾ ਸਿਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਪੈਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਈ 27ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲਾ 2025-26 ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਚ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸਾਨਾਇਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਕਾਇਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज्म का इरादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्जिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के मशरिकी और शिमाल मशरिकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरक तहजीबी अख्तार के हामिल करीबी पड़ोसी और बहरी साझेदार के तौर पर भारत और श्रीलंका दोनों मुल्कों की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस खित्ते में हिफाजत, सलामती, अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा भी किया। ब्रिक्स सरबराह इजलास से पहले ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग इस माह की 9 से 10 तारीख के दौरान मुंबई में मुनक़िद हो रही है। इस साल ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक का मौजू है इस्तेहकाम, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए मिलकर काम करना। इससे कबल वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात गुज़श्ता माह जयपुर में हुई थी। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मुंबई में हतमी मीटिंग से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। नवा कौमी तख्जिया महीना आज वाराणसी के इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जोशोखरोश के साथ शुरू हुआ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी के साथ खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के कई वजीरों की मौजूदगी में शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नवे कौमी तग्जिया महीने के जरिए तग्जिया से भरपूर और बाइख्तियार भारत बनाने का अज़्म है। ये मुहिम हर माँ की सेहत, हर बच्चे के तग्जिये और हर कुनबे के खुशहाली से मरबूत है। उन्होंने कहा कि खालिस और मुतवाजन ग़िज़ा सेहतमंद और खुशहाल मुल्क के लिए मजबूत बुनियाद है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2014 से गरीबों, बच्चों, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए सेहत बख्श तग्जिये को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी मराकज के निज़ाम में वाज़े तब्दीलियां आई हैं। आंगनवाड़ी मराकज अब सिर्फ तग्जिये की तकसीम के मराकज नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों की सेहत, तग्जिये और इब्तदाई नश्वोनुमा के मराकज हैं। वजारत खारिजा ने आज कहा है

0: के काठमांडू में मौजूद भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में नुमाया पेशरफ्त की है और अब तक 1400 से ज्यादा डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है। वजारत ने बताया कि टीम ने अब तक 378 डीएनए प्रोफाइल्स तैयार किए हैं। इस दौरान भारत की मुश्तरका तकनीकी टीम ने आज चिली में सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। ताहम सुरंग की ढलवान और महदूद रसाई की वजह से टीम को जदीद तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद मुश्किलात का सामना है। वजारत खारजा ने कहा कि सुरंग की सफाई के लिए भारी मशीनरी अंदर ले जाने की खातिर आरजी रास्ता बनाने का काम भी आगे बढ़ रहा है और तवक्को है कि ये काम मजीद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 27वें कौमी यूथ पार्लियामेंट मुसाबिका 2025-26 के इनामात की तकसीम की तकरीब नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कल मुनाकिद की जाएगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू इस तकरीब की सदारत करेंगे और इनाम जीतने वाले तलबा और विद्यालयों को मुसाबिके में मुमताज कारकर्दगी के लिए इनामात तकसीम करेंगे। पार्लिमानी उमूर की वजारत पिछले 30 साल से जवाहर नवोदय विद्यालयों में यूथ पार्लियामेंट मुसाबिके का इनेकाद कर रही है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए कौमी यूथ पार्लियामेंट मुसाबिके की स्कीम के तहत मुल्क भर के नवोदय विद्यालय समिति के 8 इलाकों में फैले 100 विद्यालयों में 2025-26 के लिए 27वां मुसाबिका मुनाकिद किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अवामी जिंदगी में उनके 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी सदर नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम आइंदा 7 अक्टूबर को अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। साल 2001 में इसी दिन जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर अपनी मुद्दत कार का आगाज किया था। उन्होंने मजीद कहा कि इन बरसों के दौरान जनाब मोदी ने अवामी खिदमत से कौमी खिदमत के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए अवामी खिदमत के अपने सफर को मजबूती से मुसलसल जारी रखा। बीजेपी के सदर ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत की पेशरफ्त सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही बल्कि भारत की सकाफती शिनाख्त और विरसे को भी मजबूती मिली। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त जनाब मोदी ने मुल्क की क्यादत संभाली भारत को मफलूज पॉलिसी का सामना था और उसका शुमार दुनिया की 5 कमजोर मईशतों में होता था, लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है।
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: सेवा संकल्प अभियान खून अतिया कैंप के साथ शुरू होगा। जनाब नबीन ने बताया कि वजीर आजम को तशक्कुर का इजहार करने के लिए गांव और शहरी इलाकों को जोड़ते हुए 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम आज से रवा माह की 15 तारीख तक भारत के दौरे पर होंगे। ये दौरा नायब सदर सीपी राधाकृष्णन की दावत पर हो रहा है। वो कल नायब सदर से मुलाकात करेंगे। इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम की हैसियत से मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का ये भारत का पहला दौरा है। नई दिल्ली में क़याम के दौरान आगा खान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला और वजीर खारजा जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 162 शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए वोटिंग सिक्योरिटी के वसी इंतजाम के दरमियान हो रही है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में कमी आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गंगा नदी पटना में गांधी घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर ऊपर, दीघा घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 109 सेंटीमीटर और हाथीदह के करीब खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में नदी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। आबी वसाइल का महकमा और रियासती इंतजामिया की टीमें पुश्तों पर करीबी नजर रखे हुई हैं।

0: और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय

0: है खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है तारीख 9 यानी कि 9 सितंबर और आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे का जन्मदिन है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है डिसिप्लिन की। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, बेमिसाल टाइमिंग और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देने की जिद और मार्शल आर्ट। जी अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, क्योंकि अगर मार्शल आर्ट और अनुशासन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम होता है राजीव हरिओम भाटिया, यानी कि हम सबके चहेते अक्की या कहें कि अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में खतरनाक स्टंट करने वाला वो एक्शन हीरो जो कि सन 2000 आते आते हम सबको पेट पकड़कर हंसाने पे मजबूर किया और बन गया कॉमेडी किंग, या फिर देशभक्ति की फिल्मों को उसने किया, या फिर सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाला जिम्मेदार नागरिक का किरदार निभाया। आप कह सकते हैं कि अक्षय ने हर किरदार में जान फूंकी। तो चलिए आज उन्हीं की बातों को करते हैं और उन्हीं के इस शानदार सफ़र के बारे में हम बात करते हैं। तो करते हैं शुरुआत उन्हीं की एक खूबसूरत से फिल्म तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी से। ये खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

जी दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों से सफ़र शुरू हुआ अक्षय कुमार का, जो कि उतना आसान भी नहीं था। जी, अमृतसर में वो पैदा हुए और उनका बचपन बीता दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में। पढ़ने के बाद मार्शल आर्ट सीखने की उनको बहुत इच्छा हुई और वो पहुंच गए बैंकॉक। वहां उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल की और अपने गुजर बसर के लिए वहाँ पर उन्होंने साथ साथ काम किया शेफ और वेटर का। वहाँ पर सीखने के बाद वापस आए, सीधे पहुँचे मुंबई और यहाँ पर उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। लेकिन किस्मत ने करवट तब बदली जब उनके एक स्टूडेंट के फोटोग्राफर पिता ने उन्हें मॉडलिंग का सुझाव दिया। जी हाँ, क्योंकि उस स्टूडेंट के फादर ने बोला कि भाई, आप तो दिखने में हीरो जैसे लगते हो, तो क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करते या फिर मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। और ये सोचकर अक्षय कुमार पहुंच गए अपना फोटो शूट कराने के लिए, क्योंकि उन्हें लग गया कि भाई, खाली इस ये मार्शल आर्ट सिखाने से तो उतना काम नहीं चलेगा कि आप अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकें या अच्छे से पैसा कमा सकें। और यही सोचकर उन्होंने फोटोग्राफर का काम शुरू किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्षय कुमार, जो कि आज के टाइम पर बहुत डिसिप्लिन और बहुत टाइमिंग को लेकर मशहूर हैं कि भाई, वो एकदम जो टाइमिंग है उसके बहुत पक्के हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। अभिजीत के साथ हैं अलका याग्निक और फिल्म है खिलाड़ी। भाई, खिलाड़ी कुमार के बारे में बात कर रहे हैं तो गाना भी उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और आपके साथ हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे अक्की कुमार यानी कि अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार जो कि भाई आज बहुत ज़्यादा सफल बड़े हीरो हैं, और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा राज है वो है उनका अनुशासन यानी कि उनका डिसिप्लिन। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, रोज़ाना वर्कआउट करते हैं, कोई लेट नाइट पार्टियाँ नहीं करते, और साल में 3 से 4 फिल्में पूरी करते हैं। और ये टाइम टेबल आज के नए कलाकारों के लिए तो वाकई में एक मिसाल के रूप में है। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं उसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल जब वो सिखाया करते थे कराटे, उस वक्त में उनके एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें मॉडलिंग के ऑफ़र दिया, कहा कि भाई आप मॉडलिंग कीजिए और फ़ोटोशूट कराइए। उसके बाद में अक्षय ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और वो एक जगह पर उन्हें मौका मिला मॉडलिंग के लिए जाने के लिए। वहाँ पर उन्हें फ़ोटोशूट कराना था, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा लेट से पहुँचे, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेट से पहुँचे थे। दरअसल वहाँ पर वो पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा लेट, और 1 घंटे से ज़्यादा लेट पहुँचने की वजह से उन्हें वहाँ पर बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, बहुत कुछ उनको बातें बोली गईं। और वही एक वक्त था वो जो बातें थीं वो पूरी तरह से उनके दिल को छू गई, और उसके बाद से उन्होंने वादा किया अपने आप से कि मैं कभी भी वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मतलब टाइम की वैल्यू करूँगा। और वो दिन है, और आज आज का दिन है अक्षय हमारा, जो अक्षय कुमार हैं वो अपने हर जगह पर हर काम पर बिल्कुल टाइम से पहुँचते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज उनका बर्थडे है, तो वो अपने बर्थडे पे भी कुछ बहुत बड़ा तामझाम, बहुत बड़ी पार्टीज़ नहीं करते हैं जैसा कि नॉर्मली हर कोई करता है, बल्कि अक्षय कुमार टाइम से रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह अगले दिन जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, और उसके बाद अपना केक काटते हैं। कहते हैं ना कि सूरज को जगाना आसान नहीं होता, लेकिन अक्षय कुमार हर रोज़ सुबह सूरज के उगने से पहले उठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज इतने साल के बाद में भी आप देखिए ना, 50 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, उसके बाद भी जब वो पर्दे पर 100 फीट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं, तो जो यंग एज के बच्चे हैं जो कि 20-20 साल के लड़के हैं वो भी उनके सामने पानी भरने लगते हैं और उनको अपना फिटनेस आइकन मानते हैं। वैसे वो किस्सा जब उनको टाइमिंग के लिए डांट पड़ी, उसके बाद उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, और उसके बाद वो बन गए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खिलाड़ी नंबर 1।

जी दोस्तों, सन 1991 में फिल्म सौगंध से अक्षय कुमार हीरो बन गए और फिर वाकई में हर किसी ने वो तमाशा देखा। जी हाँ, क्योंकि सन 1992 में आई उनकी एक और फिल्म,

1991 में जो फिल्म आई सौगंध, उससे उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिली जिसके अक्षय कुमार हकदार थे। और फिर 1992 में आई उनकी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, और खिलाड़ी फिल्म आने के बाद तो मतलब ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार ही पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक खिलाड़ी नाम वाली फिल्मों में काम किया, चाहे वो खिलाड़ी फिल्म हो, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 786, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। जी हाँ, और यही वजह है कि अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार हो गया। लेकिन 90 के दशक में, जी हाँ दोस्तों 90s में, जब हर कोई एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया करते थे, उस वक्त अक्षय कुमार ने अपने सभी स्टंट खुद किए, चाहे वो 100-100 फीट ऊंची इमारतों से छलांग लगाना हो या फिर हेलीकॉप्टर से लटकना हो। जी हाँ, हर तरह के स्टंट जो हैं वो अक्षय कुमार खुद किया करते थे, और शायद यही वजह है कि उनका ये जो खिलाड़ी कुमार नाम पड़ा वो बिल्कुल सही पड़ा।

जी दोस्तों, बिल्कुल हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वो अक्षय कुमार जो कि एक्शन कुमार बन गए थे, जो कि खिलाड़ी कुमार बन गए थे, वो एक्शन से अलग भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2000 में आई फिल्म, प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी, जिसने अक्षय कुमार के करियर को एक नया रास्ता दिया, एक नया रूप दिया। इस फिल्म में राजू का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो लाजवाब है, उसके बराबर कोई नहीं। और इसके बाद तो उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की छड़ी ही लगा दी। गरम मसाला, वेलकम, सिंह स्कीम, भागम भाग जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने इस तरह के किरदार निभाए, इस तरह की एक्टिंग की कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर वापस से एक बार और बदलाव आया। वो बदलाव क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे ये खूबसूरत सा गीत।

फिल्म हेरा फेरी से। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे श्रोताओं के जो संदेश है वो भी हम शामिल कर लेते हैं। और ये हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, नितेश कुमार देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गा प्रसाद पराग टेलर के साथ पलारी छत्तीसगढ़ से, स्वर्ण सिंह गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, दलजीत राजदीप गुरनूर गुरलाल अविराज के साथ, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह मीता हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल जी, गुलाम साबिर राही मेराजा हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, सैयद मसरूर जुड़े हैं शाइना हसन के साथ, नाजिया इब्राहिम के साथ सहारनपुर कुमार हेड़ा से, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हैं, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, भंवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन चंपा नेहा राजू जगदीश देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवा प्रेम कपिल शिवांश संगीता गोप हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से, अस्तुपुरा जिला मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से भी जुड़े हैं, बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं कराची से अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाभा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु के साथ में, और पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप गुगलानी जी के साथ में, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुँचाया है मॉडल टाउन करनाल से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं कमल सहानी जी के साथ पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से, तुलसी मस्कीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुँचाने वाले हैं संजय ढींगिया जी नमन अपार ढींगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएस नवानकर निर्मला विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और ये जो अगला संदेश है देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी जी हमारे साथ जुड़े हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, चिरमेरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सौदा नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी गाँव फरासी जिला हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी दोस्तों, और भी बहुत से संदेश हैं, निसार अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वर्ण सिंह गिल जी एक बार फिर से जुड़े हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये थे वो संदेश, और लीजिए अभी हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म हेरा फेरी से।

जी दोस्तों, आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने बात की अक्षय कुमार जी के बारे में, जो कि चांदनी चौक की तंगलियों से निकलकर बॉलीवुड के शहंशाह अक्षय कुमार बने। और दोस्तों, यहाँ तक बनने का जो उनका सफ़र था, वो बहुत ही ज़्यादा एक अनुशासन के साथ में था। और उनका जो ये डिसिप्लिन है, वो हमें यही सिखाता है कि अगर आपको दुनिया में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो आपको डिसिप्लिन तो बिल्कुल लाना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, ये सफ़र हमारा यहीं तक था और हमने आज अक्षय कुमार जी के बारे में ढेर सारी बातें की। तो आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, क्योंकि ये सफ़र हमारा यहीं तक है। और 3 बजे हमारे साथ होंगी अर्चना गोयल जी, जो लेकर आएंगे कार्यक्रम मैटरनी मेलेडी। तो अब मैं उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ फिल्म धड़कन से। मुझे दीजिए अनुमति और इंतज़ार कीजिए अर्चना गोयल जी का। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़ का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, फिल्म गीत सिर्फ गीत नहीं होते, कभी वो किसी फिल्म की पहचान बन जाते हैं और कभी किसी कलाकार के करियर का सबसे खूबसूरत पड़ाव, और कभी कभी तो एक गीत के पीछे ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे सुनकर हम कह उठते हैं, अरे इस गीत की कहानी तो गीत से भी ज़्यादा दिलचस्प है। मैटनी मेलोडीज़ के सफ़र में हम आपको ले चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहाँ गीत लिखे जाते थे, धुनें रची जाती थीं और फिर उन्हें पर्दे तक पहुँचाने में पूरी टीम अपनी आत्मा लगा देती थी। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ सदाबहार गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से। कार्यक्रम का आगाज किया है आरती फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब बात करते हैं उस गीत की जो मोहब्बत के इजहार का पर्याय बन गया। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का वो गीत जिसमें मधुबाला यानी अनारकली और दिलीप कुमार यानी सलीम की प्रेम कहानी और सामने बादशाह अकबर की सत्ता। इस गीत की सबसे खास बात थी इसका फिल्मांकन। शीश महल का भव्य गीत सेट और चारों तरफ शीशे और उसमें दिखाई देती अनारकली की परछाइयाँ। कहा जाता है कि इस गीत को अंतिम रूप देने से पहले शकील बदायूनी ने इसके बोलों पर बहुत मेहनत की और कई बदलाव भी किए। रिकॉर्डिंग के दौर से जुड़ी एक मशहूर जानकारी ये थी कि प्रतिध्वनि जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में ये गीत रिकॉर्ड किया था, और जब ये गीत पर्दे पर आया तो अनारकली का प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं रहा, वो बगावत की आवाज़ बन गया।

कमाल है ना, कुछ गीत कानों से होकर दिल तक पहुंचते हैं और कुछ गीत सीधे यादों में घर बना लेते हैं। हमारी संगीत की यात्रा अभी लंबी है, अब चलते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जिसमें प्रेम है, मासूमियत है और साथ ही एक खूबसूरत सफ़र। दोस्तों, उस दौर के गीतों की खूबसूरती शायद यही थी कि गीत खत्म हो जाता था लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता था। ऐसे ही सुनते हैं एक और गीत फिल्म यहूदी से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। और अब सुनते हैं गुरुदत्त का प्यासा से एक ऐसा सिनेमा जिसमें मोहब्बत के साथ साथ समाज और इंसानी संवेदनाओं पर भी सवाल किए। और साहिर लुधियानवी के शब्द, ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक शायर की बेचैनी है। प्यासा के गीतों ने फिल्म की आत्मा को आवाज़ दी। दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म का गीत हम आपकी आंखों में मूल कहानी का हिस्सा नहीं था, वितरकों की मांग पर फिल्म में जोड़ा गया था ताकि फिल्म के गंभीर वातावरण में थोड़ा हल्का फुल्का रंग आए। यही तो उस दौर के सिनेमा की खूबसूरती थी। गीत कहानी से अलग नहीं होते थे, गीत खुद कहानी का हिस्सा बन जाया करते थे।

कितनी अजीब बात है, समय बदल गया, तकनीक बदल गई, फिल्में बदल गईं, लेकिन दिल की भाषा आज भी वही है। कुछ गीत दिल की आवाज़ बनकर हमारे सीने में धड़कते रहते हैं और ये गीत वाकई हमारे जज्बात होते हैं। ऐसे ही एक गीत फिल्म ऊंचे लोग से, इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

और अब आपको सुनवाते हैं श्री 420 का वो गीत जिसमें राज कपूर हीरो थे, सर पर टोपी, कोट और कंधे पर बेफिक्री, और गीत मेरा जूता है जापानी। शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और ये गीत उस दौर के भारत की बदलती पहचान और आत्मविश्वास को भी अपने भीतर समेटे हुए था। एक लोकप्रिय संगीत समीक्षा में इसे नए भारत के गौरव और बदलते शहरी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण गीतों में गिना गया। गीत में विदेशी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन दिल की बात बिल्कुल अपनी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यही पंक्ति इस गीत को समय से आगे ले जाती है।

हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज सोलह आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

आज के मैटनी मेलोडीज में हमने सुने कुछ सदाबहार गीत जिनमें कहानी थी, कविता थी, संगीत था और सबसे बढ़कर जिंदगी थी। ये गीत आज भी हमारे साथ चलते हैं क्योंकि अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वे बस हमारी यादों में थोड़े और गहरे उतरते जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, मैं फिर लौटूंगी कुछ किस्सों गीतों के साथ जहाँ हर गीत के पीछे छुपी होती है एक कहानी। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

इन्हें अपने शिकार से शदीद हमदर्दी होती है। उसकी बेबसी पर उनका दिल खून रोता है। वो इस पर रोती नहीं, इससे इजहार हमदर्दी भी नहीं करती, बल्कि इनको इस सूरत हाल पर शदीद गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों है। मगर पढ़ने वाले को इससे शदीद हमदर्दी का एहसास होता है और इस सूरत हाल के खिलाफ एक नफ़रत और गुस्से का एहसास भी। इसमत चुगताई के अफसाने महज ख्याली कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो इनके अमीक मुशाहिदे, ज़ाती तजुर्बात और गिर्दोपेश की सच्ची अकासी करते हैं। उन्होंने निसाई हिसासियत, तबकाती नाअहलियत और नफ्सियाती कशमकश को मुख्तलिफ जावियों से पेश किया है। इनके अहम और नुमाइंदा अफसानों में लिहाफ, चौथी का जोड़ा, दो हाथ, सोने का अंडा, जुर्म, छुई मुई, नन्नी की नानी, जाल और छोटी आपा जैसी शाहकार कहानियाँ शामिल हैं। ये तमाम अफसाने निसाई जज्बात की तर्जुमानी करने के साथ साथ कारी को समाज के इन दबाव और अलमियों पर सोचने पर मजबूर करते हैं, जिन्हें अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। चौथी का जोड़ा इस्मत के बेहतरीन अफसानों में से एक है, जो हिंदुस्तानी मुआशरे के गरीब और मुतवस्सित तबके की ज़बो हाली, जहेज़ की लानत और बेटी की शादी के ख्वाबों के टूटने की दास्तान है। कहानी का मरकज़ी किरदार बी अम्मा एक गरीब मुस्लिम घराने की नुमाइंदा हैं, जो दिन रात मोहल्ले भर की लड़कियों के कपड़े और बिलखसूस इनकी शादी के जोड़े सीती हैं। वो कपड़े के छोटे से छोटे टुकड़े से भी अपनी हुनरमंदी से बेहतरीन लिबास तैयार कर लेती हैं। इक्तबास मुलाहिजा फरमाइए। आज तो सफ़ेद गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नापतोल हार जाएगी। जब ही सब दम साधे उनका मुंह तक रही थी, कुबरा की माँ के पुरस्तकलाल चेहरे पर फिक्र की कोई शिकन ना थी। चार ग्राह गजी के टुकड़े को निगाहों से बेउनत रही थी। नाप तोल का अक्स उनके नीलियों जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था और उदास उदास गहरी झुर्रियाँ अंधेरी गुफाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठा ली। बी अम्मा, जो पूरी दुनिया के मसाइल हल कर देती हैं, अपनी बड़ी बेटी कुबरा के रिश्ते के लिए सख्त परेशान रहती हैं। इनकी छोटी बेटी हमीदा अपनी बहन के नसीब के लिए दिन रात दुआएं मांगती है और कहती है, अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए, मेरे अल्लाह मैं 100 रकत नफल तेरी बारगाह में पढ़ूंगी। बी अम्मा को उम्मीद होती है कि इनका भतीजा राहत इनके घर आकर कुबरा से शादी कर लेगा। उसकी खातिर वो अपनी बची हुई लौनगे बेचकर राहत के लिए अच्छे खाने बनाती हैं, मगर राहत इनकी तमाम खिदमतों का फ़ायदा उठाकर शादी का ऐलान किए बगैर ही रुखसत हो जाता है। इस सदमे से कुबरा दिक यानी टीबी के मर्ज का शिकार होकर इंतकाल कर जाती है और बी अम्मा, जो उम्र भर दूसरों की बेटियों के लिए चौथी का जोड़ा सीती रहीं, बिलाखिर अपनी ही बेटी का कफन तैयार करती हैं। इस्मत ने इस दिलखराश मंजर को यूं कलमबंद किया है, बी अम्मा ने आखिरी टाँका भरकर तोड़ लिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नर्म गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। इनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि इनकी कुबरा का जोड़ा बनकर तैयार हो गया और कोई दम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। इस्मत का दूसरा अहम अफसाना सोने का अंडा है, जो बेटी की पैदाइश को मनहूस समझने वाली समाजी और जाहिलाना जहनियत पर गहरी चोट करता है। अफसाने का किरदार बंदू मियाँ जब तीसरी बार बेटी की विलादत की खबर सुनते हैं तो अपने होश व हवास खो बैठते हैं और घर का खुशगवार माहौल मातम में बदल जाता है। इस्मत इस अलमिये की अक्कासी करते हुए लिखती हैं, सहनची के सामने पड़ी हुई खाट पर बंदू मियाँ सर पकड़े ऐसे बैठे थे जानो डाकू इनके घर में कूमल फोड़कर डर आए हैं और इनकी 9 महीने की जमा पूंजी को आग लगाकर एक राख का ढेर बना गए हैं। ये तीसरा गांव था इनकी जाने हजी पर, एक सहा दूसरा सहा, पर इस तीसरे चरके ने तो इनकी कमर दोहरी कर दी। एक नहीं 3 बेटियां, ऐसी धसी हुई छाती पर 3 पहाड़, 3 बाराते, 3 दूल्हों के 100 नखरे, 3 जहेजों की 3000 तंतने, जैसे 3 लंबी नागिने इनकी गर्दन की तरफ जबाने लपलपाती बढ़ी चली आ रही हों। रह रहकर एक दबी हुई

0: ख्वाहिश फन उठाती कि एक बार जी कड़ा करके इन तीनों नागिनों का गला घोट डालें। इसके बरक्स अफसाना छुई मुई में इसमत चुगताई ने आला और अदना तबके के दरमियान मौजूद बनावटी नफासत और सच्चाई का मवाजना किया है। यह अफसाना एक तरफ ऊंचे तबके की औरत की मस्नूई नाजुक मिजाजी को बेनकाब करता है तो दूसरी तरफ गरीब औरत की सख्त मशक्क़त को सामने लाता है। मगर जब दोनों औरतें एक ही वक्त पर बच्चे को जन्म देती हैं तो फितरत के सामने तमाम समाजी और तबकाती फ़र्क मिट जाते हैं। इसी तरह अफसाना नन्ही की नानी में इस्मत ने गरीब और बेसहारा तबके की एक मासूम बच्ची नन्ही की दर्दनाक दास्तान बयान की है, जो हालात की मजबूरी की वजह से एक रईस शख्स की जिनसी हवस का शिकार बन जाती है। नन्ही वक्त से पहले जिस्मानी और जहनी तौर पर तलपट होकर एक नामुकम्मल औरत बन जाती है। इक्तिबास मुलायजा, नन्ही भूल गई मगर कुदरत ना भूल सकी। कच्ची कली कबल अज़ वक्त तोड़कर खिलाने से पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं, ठोंठ रह जाता है। नन्ही के चेहरे पर से भी ना जाने कितनी मासूम पंखुड़ियाँ झड़ गईं। चेहरे पर फटकार और रोड़ापन, नन्ही बच्ची से लड़की नहीं बल्कि छलांग मारकर एकदम औरत बन गई। वो कुदरत के मशाक हाथों की सवारी भरपूर औरत नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी मूरत जिस पर किसी दीवाने ने 2 गज लंबा पांव रख दिया हो। ठिगनी मोटी कचोर सी जैसे कच्ची मिट्टी का खिलौना कुम्हार के घुटने तले दब गया हो। नन्ही की नानी हालात और गरीबी के खौफ से खामोश रहती हैं और जब नन्ही फरार हो जाती है तो मुआशरा नानी को ही मलामत करता है और वो इसी दुख में दुनिया से चली जाती हैं। अलावा अजीम अपने अफसाने जाल और छोटी आपा में इस्मत ने सने बलोगत में कदम रखती हुई लड़कियों के जज्बाती जिस्मानी और नफ्सियाती उलझनों को नहायत ईमानदारी और बेबाकी के साथ पेश किया है। मुख्तसर ये कि इस्मत चुगताई की अफसाना निगारी ने उर्दू अदब को एक नया मोड़ दिया। उनसे पहले औरत को अदब में महज एक ख्वाब एक ख्याली तसव्वुर या सिर्फ मजलूम के तौर पर पेश किया जाता था, मगर इस्मत ने इसे एक जीता जागता सोचता और सवाल करता हुआ वजूद बख्शा। उन्होंने औरत को घुटन की जिंदगी से निकालकर खुददारी खुशशनासी और एहतजाज का रास्ता दिखाया। इनकी तहरीरों में औरत सिर्फ हालात के आगे सर तस्लीम खम नहीं करती बल्कि वो जिंदगी की तमाम तर तलखियों और सच्चाइयों का सामना बेखौफी से करती है। इस्मत चुगताई की ये तख्लीकात आज भी निसाई शऊर आज़ादी फ़िक्र और समाजी इंसाफ की एक रोशन और ताबिंदा मिसाल हैं।
1: इस्मत चुगताई, निसाई शऊर, समाज और अफसानवी हकीकत। सामीन, इस मौजू पर अभी आप मोहतरमा उज़्मा रिजवान से उनकी तकरीर सुन रहे थे। और आइए अब चंदनदास की आवाज़ में समार करते हैं एक खूबसूरत गज़ल।

0: अभी आप यह गज़ल सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। सामिन, हमारा ताल्लुक़ ख़ास जिस मुआशरे से भी हो, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात, वाक़यात और हक़ायक़ का सामना करते हैं, और ज़िंदगी से मुतालिक उन तमाम पहलुओं की अक्कासी अफसाने में बड़ी खुश उसलूबी से की जाती है। यह एक ऐसा आईना होता है जिसमें हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, किरदारों, हालात और वाक़यात की तस्वीरें देख सकते हैं। आज अक्सर अदब प्रोग्राम में ऐसा ही एक सबक आमोज़ अफसाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। अफसाना निगार हैं जनाब असरार गांधी। उनवान है सर्द मौसम की तपिश।
1: उसे अपने सामने खुली हुई खिड़की से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। इन पहाड़ों के दरमियान धुएं की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता बादल ऊपर उठ रहे थे। हवा ठंडी हो चली थी। लगता था कि शायद इस गर्मी से निजात मिलने वाली है जो पिछले कुछ दिनों से अजाब बनी हुई थी। इस इलाके में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि मुझे देहरादून आए हुए आज कोई 15 दिन हुए हैं, शायद 15 महीने या फिर 15 बरस। यहाँ आने के लिए उस दिन जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो सूरज की आखिरी किरणें भी गुरूब हो रही थीं। बेटा स्टेशन के बाहर ही मिल गया था। हम लोगों ने चाय पी और देहरादून के लिए निकल पड़े। अब दिन का उजाला स्याही मायल हो चुका था। बेटा बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाना, मेरी बगल में बैठी हुई मेरी बीवी ने बेटे से कहा। क्यों अम्मा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस रास्ते की खूबसूरती देखते हुए चलेंगे। ओ अच्छा ठीक है, बेटा धीरे से बोला। हालांकि बेटा यह जानता था कि माँ को उसके ड्राइविंग से बहुत डर लगता है। उम्र का फ़र्क ऐसे ही रवैयों को जन्म देता है। कार एक ख़ास रफ्तार से चल रही थी। बेटा बार बार माँ को बताता ये कौन सी जगह है। हम लोग जब देहरादून पहुँचे तो रात पूरी तरह से खेमाजन हो चुकी थी। जिस इलाके में बेटे का मकान था खासा पौश दिखाई पड़ रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि यहाँ के तमाम मकान 400 स्क्वायर गज पर बने हैं, काफ़ी बड़े बड़े और खुले खुले। लेकिन यहाँ कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तमाम लोग अपनी ذاتی ज़िंदगी गुजारते हैं। ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब्बा ज़रा बाईं जानिब नज़र घुमाइए।

मैंने बाईं तरफ देखा तो वहाँ एक खासी बुलंद पहाड़ रंगो नूर में डूबा हुआ था। मैंने बेटे की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अब्बा, यही मसूरी है। ओह अच्छा, रात में मसूरी यूँ दिखाई पड़ती है? अब तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, बेटे ने सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, बरसों पहले मैं यहाँ एक बार आया था। हाँ, मुझे मम्मी ने बताया था कि आप घूमने के शौकीन हमेशा से रहे हैं। मैं कुछ और नहीं बोला, बस हंस पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना खाया, थकान से बोझल हो रही थी आंखें, सो गया। मालूम नहीं कब तक सोता रहा, सूरज की पहली किरण ने आकर मुझे जगा दिया। सूरज की ये किरण मेरे चेहरे को गुदगुदा रही थी। मैंने अपनी आंखें फिर बंद कर लीं, सोचा कि एक नींद और सो लूं, लेकिन हल्की हल्की खुनकी मेरे नींद के दरमियान हायल हुई थी। मेरी कैफियत कुछ ऐसी थी कि न मैं पूरी तरह से जाग रहा था और न सो ही रहा था। आखिरकार मैं उठ गया और बालकनी पर आकर खड़ा हो गया। हवा के झोंके मुझे किसी कदर सर्द लगे और मेरे अंदर मौजूद नींद के असरात पूरी तरह से ज़ायल हो गए। मैंने बालकनी में मौजूद कुर्सी पर बैठकर चारों तरफ फैले हुए खूबसूरत नज़ारों के दरमियान अपने आप को खोता हुआ महसूस किया। दरख्त के दरमियान से गुजरती हवा की आवाज़ फैले हुए सन्नाटे को मजरूह कर रही थी। ऐसे में मुझे अपनी एक प्यानटिस दोस्त शुब्बू याद आ गई। उसे मेरी पहली मुलाकात मसूरी में ही हुई थी। शायद वो कोई सोशल गैदरिंग थी, किसी ने मुझसे उसका तारुफ कराया था। ये शहला है, बहुत अच्छी प्यानटिस्ट। तारीफ कराने वाला अचानक किसी दूसरे तरफ मुतवज्जे हो गया और आप, शैला ने मेरी तरफ़ देखा। ये कसीम हैं, ये कहानियाँ लिखते हैं। तारुफ कराने वाला हम लोगों की तरफ फिर पलट पड़ा। ओह, उसने कुछ सोचते हुए कहा, फिर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। अचानक मैं बोल पड़ा, शैला साहिबा, अगर आप कुछ ख्याल ना करें तो किसी टेबल पर बैठकर एक कप चाय हो जाए। चलिए, कोई मज़ायका नहीं, वो सोचते हुए बोली। हम दोनों एक मेज़ पर आकर बैठ गए। चाय की पहली चुस्की के साथ वो बोली, आप कैसी कहानियाँ लिखते हैं? ज़िंदगी की, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। वो मेरे कहने के ढंग पर हंस पड़ी, फिर बोली, ज़िंदगी में बहुत से रंग होते हैं, आप किन रंगों को अपनाते हैं जो मेरे गिरफ्त में आ जाएं? मैंने फिर उसी तरह से जवाब दिया। उसने अपनी नज़रें हाल की तरफ घुमाई और हाल का जायज़ा लेने लगी, फिर मेरी तरफ मुड़ कर देखते हुए बोली, सचमुच हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। मसलन, मैं उसकी बात काटता हुआ बोला, मसलन फैशन, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर मैंने पहली बार उसको गौर से देखा, उसके सादा मिजाजी का अंदाज़ा हुआ। वो अचानक फिर बोली, कसीम साहब, नीम उरियाँ मुकम्मल उरियाँ से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तजस्सुस ख़त्म हो जाए तो किसी भी चीज़ की कशिश अपने आप ख़त्म हो जाती है। आप ठीक कह रही हैं। देखिए, अब लड़कियां तमाम सरहद पार कर चुकी हैं। मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बोली, ऐसे चलते हैं, आपसे मिलकर सचमुच बहुत अच्छा लगा, आगे भी मिलना चाहूँगी। आपका बहुत शुक्रिया शैला साहिबा, मुझे भी अच्छा लगा। वो उठ खड़ी हुई और जाने से पहले अपना मोबाइल दे गई। फिर मेरी उससे कभी मुलाकात होने लगी, कभी नहीं। उन्हें मुलाकातों के दरमियान वो मुझे एक बार अपने साथ फंक्शन में ले गई थी। मैंने उसे पहली बार पियानो बजाते हुए देखा था और मैं मभूत होकर रह गया था। उसने मुझे बताया कि उसे यहाँ के एक होटल में महीने भर के लिए एंगेज कर रखा है। उसे हर रात अपने फ़न का मुजाहरा करना पड़ता है। पैसे अच्छे दे रहे थे इसलिए चली आई। मेरे साथ मेरा भाई भी है, मेरे रहने का इंतज़ाम होटल ने किया है। वो बहुत अच्छी पेंटिस्ट थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब वो स्टेज से नीचे उतरी तो सीधे मेरे पास आई। मैंने बहुत हिम्मत करके उसे गले लगा लिया। मुझे ख्याल गुजरा कि शायद उसे अच्छा न लगे, लेकिन उसके रवैये से मैं भी कुछ ऐसा महसूस न कर सका कि उसे बुरा लगा या नहीं। कुछ देर बाद वो मेरे लिए सिर्फ शहला रह गई और मैं उसके लिए कसीम। उससे मोबाइल पर हर दिन बातें होने लगीं। हम दोनों अक्सर कई कई घंटे साथ घूमते, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बाहों में बाहें डाले हुए। इन्हीं बातों के दरमियान मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर उसके लिए कोई जज्बा बेदार हो चुका है। मेरे रवैयों में खासी तब्दीली पैदा हो चली थी और शायद शहला भी इस कैफियत से गुजर रही थी। मैंने उसको शहला के बजाय शुब्बू कहना शुरू कर दिया था, जो उसे बहुत अच्छा लगा था। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, देखो कसीम, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ और बस। मुझे ज़ोरदार झटका लगा था। शुब्बू, फिर ये सब मोहब्बतें, इतना ख्याल, इतनी चाहत और ये सब कुछ एक दोस्त के भी लिए हो सकता है? बोलो, इस बात के लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? मैं चुप रहा कि मेरे पास इस बात का सचमुच कोई

0: जवाब न था। वो फिर बोली, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को चाहती हूँ बहुत। देखो, मैंने तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए कही, तुम किसी खुशफहमी का शिकार न हो जाओ और बाद में टीसें तुम्हारी ज़िंदगी के मुश्किल को बढ़ा दें। मुझे लगा जैसे मैं बर्फ़ की सिल बनता जा रहा हूँ। कई दिनों तक हम लोगों ने आपस में बातें नहीं की, लेकिन फिर एक दिन उसकी कॉल आई। उसने कई बार सॉरी किया, इस तरह की पहले बारी बातें नहीं हुई थी। मेरे उसके दरमियान मन मिटाव कई बार होता, फिर दोस्ती होती। एक दिन दोपहर में उसका फ़ोन आया, कसीम आज शाम मैं तुमसे चैटिंग नहीं कर सकूंगी। क्यों? मुझे एक म्यूज़िक के मुकाबले में जाना है, तुम भी चलो। नहीं शुभू, मैं कहीं नहीं जा सकूंगा, मैंने डॉक्टर से वक्त ले रखा है, वहाँ से सीधे मेरे पास आ जाओ। अगर मैं जीत गई तो खाना खिलाओगे? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है। फिर मैं जल्दी से बोला, बहसियत एक दोस्त के। शुभू ज़ोर से हंसी और फ़ोन काट दिया। कोई 3 घंटे बाद वो वापस आ गई, उसका चेहरा खिला हुआ था। मुझे गले लगाते हुए बोली, कसीम मैं फर्स्ट आ गई। अरे वाह, क्या बात है शुभू, मुबारक हो। मैंने भी खुशी का इजहार किया। मुझसे अलग होकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। शुभू जाने के लिए उठ खड़ी हुई और मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोली, कसीम प्लीज़ आइंदा इस तरह की कोई डिमांड मत करना, प्लीज़ माई फ्रेंड। मैं कुछ बोला नहीं, बस इस बात में अपना सर हिला दिया। शुभू बहुत नपे तुले अंदाज में कदम उठाती हुई वापस जा रही थी। दरवाजे से निकलते वक्त उसने घूम कर मुझे देखा और बाई बाई का इशारा करते हुए ज़ोर से बोली, कसीम डिनर ड्यू है। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, वो दरवाजे से निकल चुकी थी। सर्द हवा का एक झोंका आया और गुजर गया, मैंने झुरझुरी ली। फिर जब ड्राइंग रूम के वॉल क्लॉक ने 8 बजाया तो मैं बालकनी से उठकर कमरे में आ गया। बीवी अब तक गहरी नींद सो चुकी थी। मैं वहाँ से फिर उठा, बाथरूम में दाखिल हो गया। कोई आधे घंटे बाद मैं किचन में खड़ा अपने लिए चाय बना रहा था। चाय बनाना मेरे लिए कोई नई बात न थी, पिछले 12 बरसों से यही हो रहा था कि सुबह की चाय मुझे खुद बनानी पड़ती। मैं चाय की प्याली लेकर फिर बालकोनी में आ गया। अभी मैं कुर्सी पर बैठा ही नहीं था कि शुभू फिर मेरे पास आ गई। कसीम मैं परसों वापस अपने घर जा रही हूँ। क्यों? मेरे सवाल में हैरत थी। मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आई थी, अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। क्या तुम सचमुच चली जाओगी? हाँ, जाना तो पड़ेगा, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। ओह, मैंने अपनी गर्दन कुर्सी से लगाकर आंखें बंद कर ली। शुभू, मुझे तो यहाँ से पहले ही चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुम्हारी वजह से रुका हुआ था। मैं समझ सकती हूँ कसीम, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें छोड़कर मुझे जाना अच्छा लग रहा है? इस अलहदगी के ख्याल से पूरे वजूद में कांटे चुभने लगते हैं। चंद लम्हों के बाद वो मुझसे अलग हटते हुए बोली, कसीम मैं तुमको कभी नहीं भूल सकूंगी, तुमने मेरी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए हैं। इन रंगों के लहरिया बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और मैं बावली से हो जाती हूँ। एक लम्हे के लिए ठहर कर बोली, कसीम मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकोगे, याद आओगे और याद करोगे। वो फिर खामोश हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं पत्थर हो गया हूँ। वो जाने के लिए उठी, मुझे गले लगाया और बोली, कसीम प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ और मुझे हंस कर रुख्सत करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मोबाइल पर कॉन्टेक्ट बनाए रखूँगे। मैं महसूस कर रहा था कि शुभू कुछ बेचैन सी है। उसके होंठों पर एक लर्जिश महसूस हो रही थी, जैसे उस पर कोई तूफान गुजर रहा हो। फिर अचानक मेरे मुँह से निकला, शुभू। उसने मुझे डिबडिबाई आँखों से देखा, फिर बैठ गई। बोलो कसीम, क्या बोलूँ? कुछ भी बोलो कि ज़िंदगी का ये कठिन सफ़र कुछ आसान हो जाए। क्या चंद दिनों और नहीं रुक सकती? नहीं कसीम, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, मुझे जाना ही होगा। मजबूरियाँ मुझे तुमसे छीनने के लिए मुँह खोले खड़ी हैं। कसीम, मेरा बोझल वजूद बोझल हो रहा है। अच्छा चलूँ? वो फिर उठकर खड़ी हुई। उसने मुझे देखा, मेरी डिबडिबाई आँखों को देखा। उसने एक इर्तियाश देखा जो मेरे पूरे वजूद पर साया फिगन था। वो फिर बैठ गई। नहीं कसीम, प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ। देखो, ज़िंदगी इसी का नाम है, आज यहाँ कल वहाँ परसों मादूम। ज़िंदगी के इस रवैये को कोई तब्दील नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं कसीम प्लीज़, मुझे हंस कर रुख्सत करो कि ये लम्हा हमेशा यादों में मौजूद रहे। खुदा हाफिज़ कसीम, खुदा हाफिज़ शुभू। मैंने देखा कि शुभू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई दरवाजे के बाहर निकल रही है।
1: सर्द मौसम की तपिश, इस उनवान के तहत अभी आप जनाब इसरार गांधी से उनका अफसाना सुन रही थी। प्रोग्राम था अक्से अदब और तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 4 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
2: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: मंत्रिमंडल ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। ये परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन है। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतरिम बैठक हो रही है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, फिजी फिनिक्स, पायोनिक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और URL हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण पर रोक लगाने वाले कानून के दायरे में लाया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र

0: ये भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आज नागरिकों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार हैं। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है थाना बिसरक से। खोए हुए व्यक्ति का नाम अरुण है, उम्र 29 वर्ष, पुरुष, आंख नाक कान औसत, रंग गोरा, कद 5 फुट 5 इंच। वो 18 जुलाई 2026 से अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया है। सूचना देने वाले का पता है सुमन, शैतान चौक के पास, ग्राम यूसुफपुर, चक सावेरी, थाना बिसरक, गौतम बुद्ध नगर। मोबाइल नंबर है 7532037802। पिंटू झा पुत्र धनवीर झा ग्रेटर नोएडा से सूचित करते हैं कि धनवीर झा, जिनकी उम्र 58 वर्ष, पुरुष, रंग गोरा, वलिष्ठ शरीर, सिर पर कम सफ़ेद बाल हैं, वो घर से बैंक जाने के लिए निकले लेकिन वापस नहीं आए। उनसे संबंधित जानकारी थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है। दीपांशु चितकारा पुत्र स्वर्गीय श्री संजीव चितकारा 9 अगस्त 2026 से P58 सेक्टर 11 नोएडा से लापता हैं। दीपांशु की आयु 26 वर्ष, शरीर इकहरा, कद 5 फुट 6 इंच है। इनके विषय में कोई सूचना या जानकारी अगर आप रखते हो तो कृपया थाना सेक्टर 24 नोएडा या मोबाइल नंबर 8595902595 पर संपर्क करें। ये सूचना है थाना सोमवारिया, जिला सोरेंग, वेस्ट सिक्किम की रहने वाली इंदिरा कला सुब्बा की पुत्री फियराज सुब्बा, जो कि 25 जुलाई 2026 से गली नंबर 5, ग्राम छरेरा, सेक्टर 44 नोएडा से कहीं चली गई हैं। इंदिरा कला की आयु 37 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 3 इंच तथा होठ की दाहिनी तरफ तिल का निशान है तथा नीली जीन्स और गुलाबी कुर्ती पहने हुए है। इनसे संबंधित सूचना सेक्टर 37 थाना को दी जा सकती है। थाना बादलपुर गौतम बुद्ध से ये सूचना है लापता व्यक्ति का नाम राजेंद्र सिंह, ग्राम छपरौला, थाना बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। राजेंद्र सिंह की आयु 40 वर्ष, शरीर औसत, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 8 इंच। वह 5 अगस्त 2026 से गांव छपरौला अपने घर से कहीं चला गया है। अधिक जानकारी के लिए 9692795012 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीमती रेखा देवी, जिनकी उम्र 36 वर्ष, बदन इकहरा, कद 5 फीट है, वह 7 अगस्त से अपने घर से कहीं चली गई हैं। उनका पता है गली नंबर 3, तिगड़ी, थाना बिसरक, गौतम बुद्ध नगर। कृपया अधिक जानकारी के लिए यहीं संपर्क करें। गुलशन पुत्र चमरू साहब सूचित करते हैं कि उनके पिता चमरू साहब

जिनकी आयु 57 वर्ष, औसत शरीर रंग सांवला, कद 5 फुट 6 इंच है तथा याददाश्त कमज़ोर है। वह 1 अगस्त सुबह 6 बजे अपने घर से टहलने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। उनके विषय में कोई सूचना या जानकारी यदि आप रखते हैं तो कृपया थाना विसरक से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम हरेंद्र राय, अंतिम बार बारात घर के पास ग्राम आगापुर सेक्टर 49 नोएडा में देखा गया। उम्र करीब 55 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 9 इंच है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके बारे में किसी सूचना मिलने पर आप उनके पुत्र आनंद के मोबाइल नंबर 9354476933 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। इकबाल की ये पंक्तियां सुनते ही एक बात याद आती है, आसमान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना लगे, उसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है।
1: बिल्कुल, और शायद हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। एक मंजिल मिलती है तो लगता है बस यहीं रुक जाएं, पर तभी दिल एक नए सपने की तरफ दौड़ने लगता है।
0: हाँ, और आजकल हम युवाओं की सबसे बड़ी उलझन शायद यही है कि हमारा माइंड ना मल्टीपल चीज़ों की ओर भागता रहता है और लगता है कि सब कुछ एक साथ कर लिया जाए, और इसी के साथ मन में ढेरों सवाल भी चलने लगते हैं। और इसी सवाल के साथ मैं हूँ त्रिशान। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है युववाणी कार्यक्रम में। मेरे साथ है आज मेरी को होस्ट अंशु
1: नमस्कार दोस्तों,
0: और हमारी साथी डिम्पल।
2: गुड इवनिंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी आज के शो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे सपनों की, करियर की, स्ट्रगल की और उन रास्तों की जिनको हम अक्सर ढूंढते रहते हैं।
1: बिल्कुल डिम्पल, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि किसी को अपना रास्ता जल्दी मिल जाता है और किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है।
0: एकदम सही कहा अंशु आपने, क्योंकि सबकी जर्नी ना अलग अलग होती है।
1: हाँ त्रिशन, और जब जर्नी की बात हो रही है तो देखा जाए तो जिंदगी भी तो एक सफर ही है।
0: वाह क्या बात की है अंशु आपने, इसी बात से मुझे एक खूबसूरत सा गीत याद आ गई है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये मधुर गीत।

0: क्या मजेदार सॉन्ग था, दिल खुश हो गया।
1: सच मित्रशन, ये गीत सुनकर माइंड एकदम फ्रेश हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, आज की बात।
2: वेट वेट दोस्तों, आज से मुझे याद आया कि आज ही रात को मैं 3-4 दिन के लिए सोलो ट्रिप पर जा रही हूँ।
1: अरे वाह, कहाँ?
2: पहाड़ों पर।
0: वाओ, माउंटेन्स। तो पैकिंग हो गई आपकी?
2: अरे अभी कहाँ त्रिशान, अभी तो सिर्फ बस 2 ही सूटकेस पैक किए हैं, 2 बाकी हैं अभी।
1: क्या?
0: 1 मिनट, आप 3-4 दिन के ट्रिप के लिए 4 सूटकेस ले जाओगे?
2: ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या रखूं और क्या छोड़ूं।
1: लेकिन डिंपल, आप अकेले जा रही हैं ना?
2: हाँ, बताया तो कि मैं सोलो ट्रिप पर जा रही हूँ।
0: तो फिर इतना सामान किसके लिए?
2: निशान, इतना सामान मेरे लिए और किसके लिए?
1: ऐसा क्या रखा है आपने अपने सूटकेस में?
2: मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 ड्रेसेस, साथ में 10-12 मैचिंग फुटवेयर और मैचिंग पर्स और थोड़ा बहुत मेकअप और बाकी अदर ट्रिप एसेंशियल्स।
0: ओ माय गॉड डिंपल, इतना सब कुछ?
2: हाँ, इतना सब कुछ क्या, थोड़ा सा ही तो है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रखूँ क्या छोड़ूँ, सब कुछ इम्पोर्टेंट है।
1: लेकिन ये फैसला तो आप घर निकलने से पहले भी कर सकती थी ना?
2: अंशु, सबसे बड़ी मुश्किल ही तो वही है कि मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ।
0: इसका मतलब डिंपल, आपको अपने लाइफ में मिनिमलिस्ट अप्रोच लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
2: वो कैसे?
1: बहुत सिंपल है, कम रखिए लेकिन सोच समझ कर रखिए। ऐसी चीजें चुनिए जो आपको सच में चाहिए और जिनका इस्तेमाल भी होगा।
0: क्योंकि कई बार हमारे पास असल में ना चीजों की कमी नहीं होती है, बल्कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं।
2: आई थिंक यू आर राइट त्रिशान, क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा तो उतना ही कंफ्यूजन, लेकिन माय सिचुएशन राइट नाउ।
1: एग्जैक्टली, और मिनिमलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ खरीदे ही नहीं या आपकी जिंदगी बोरिंग हो जाए।
0: बिल्कुल अंशु, मतलब बस इतना सा है कि जो चीज आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड करती है ना, सिर्फ उसे रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए।
2: मुझे लगता है शायद आप दोनों सही कह रहे हैं।
1: और यही बात सिर्फ पैकिंग पर नहीं, हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है, क्योंकि ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
0: कम चीजें होंगी तो कम क्लटर होगा,
1: विच मीन्स अ पीसफुल माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।
2: राइट, इसका मतलब हर चीज अपने पास रखना जरूरी नहीं है, कभी कभी कम में भी बहुत खुशी और सुकून मिलता है।
0: अब तुम्हें समझ आया डिंपल कि लाइफ में मिनिमलिस्ट अप्रोच लेने की कितनी ज्यादा जरूरत होती है? और इसी के साथ वक्त हो गया है एक प्यारे से गीत का,
1: तो आइए सुनते हैं गाना इलाही।

0: क्या गाना था, मजा आ गया सुन के।
1: सच में मुझे आशा है कि हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीकली सेगमेंट।

0: की तरफ। वैसे त्रिशान, तुम क्या सोच रहे हो?
1: कुछ खास नहीं अंशु, मैंने कल न्यूज़ में देखा कि हम सबको बिजली के बिल में ना राहत मिलने वाली है।
0: हाँ, सही कहा त्रिशान, क्योंकि आज जिस योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। यानी घर की छत सिर्फ कपड़े सुखाने या कबूतरों की मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि सोलर पावर के लिए भी काम आ सकती है।
1: यानी कि इस योजना का मकसद रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा देना भी है।
0: बिल्कुल सही, सरकार का लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 तक 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाना है।
1: और साथ ही साथ एलिजिबल हाउसहोल्ड्स को सोलर इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी भी मिलेगी और योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी।
0: हाँ, इसका मतलब सिर्फ बिजली का बिल कम होना नहीं है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा, घरों की एनर्जी नीड्स में मदद मिलेगी और रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: वैसे अंशु, ये तो हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद योजना है ना।
0: बहुत सही कहा त्रिशन।
1: तो मतलब इसमें हम सबका फायदा ही फायदा है।
0: हाँ, तो इसी बात पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
1: अरे वाह अंशु, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली।
0: तो हमारे सब श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर जी की आवाज में एक प्यारा सा नगमा।

0: वाह, व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग। तो अब वक्त हो चला है हमारे अगले विशेष सेगमेंट का, मन से माइक्रोफोन तक, जिसमें आज हम सुनेंगे यंग अचीवर सीए खुशी शर्मा की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। सीए खुशी से बात करेंगी आज हमारी साथी मलाइका जी।
1: आई एम मलाइका एंड आई एम हेयर विद खुशी। शी इज़ वन ऑफ द यंग एंड एनर्जेटिक चार्टेड अकाउंटेंट्स आउट हेयर हु जस्ट बिकेम अ सीए। इट इज़ एन इमेंस ऑनर टू बी हेयर विद यू खुशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मलाइका फॉर हैविंग मी हियर एज अ पार्ट ऑन द स्टूडियो एंड फॉर इनवाइटिंग मी।
1: खुशी, ज़्यादा मेरी रुचि जानने में ये है कि आपने कब सोचा कि आपको सीए की तैयारी करनी है और सीए बनना है। वॉज इट इन योर स्कूल डेज और कॉलेज डेज एंड एग्जैक्टली वॉट इंस्पायर्ड यू इनिशियली एंड मोटिवेटेड यू थ्रू आउट योर जर्नी?
2: मैंने अपनी सीए की जर्नी का जो डिसीजन था या शुरुआत करी थी, दैट वॉज बैक इन लाइक द स्टोरी ऑफ द कोविड-19। जब कोविड-19 या पैंडेमिक हिट द एंटायर इकोनॉमी एंड एवरी वन वॉज फाइनेंशियली इकोनॉमिकली लाइक शैटर्ड इन टू अ सिचुएशन जहाँ पर सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, एक्सेस वॉज वेरी लिमिटेड टू ऑल द रिसोर्सेज और इवन टू द प्रिमाइसेज। सो दैट वॉज द टाइम दैट 2020 में व्हेन आई हैड माई क्लास 12th एंड वी हैड वन एग्जाम विच वी वॉन्ट अलाउड टू इवन अपियर फॉर दैट। उस टाइम पर व्हेन द कॉलेज इज क्लोज, यू कैन नॉट एक्सेस टू द प्रिमाइसेज और इवन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नॉर्मल कॉलेज लाइफ विद द होल फन एंड द ग्रुप एंड इवन लर्निंग और ग्रोइंग देयर। दैट व्हेन आई स्टार्टेड और डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू परस्यू अ कम्पिटिटिव एग्जाम, बेसिकली अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच कुड इवन बी लाइक बैलेंस माई एंटायर जर्नी दैट आई वॉन्ट डू द ग्रेजुएशन एंड देन आई माइट हैव फॉलोड इट। सो देयर इट वॉज कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे सी ए करनी है, क्योंकि बैक इन टू माई स्कूल फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड्स व्हेन आई परस्यूड कॉमर्स देयर, सो आई हैड अ बिट ऑफ इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी। जैसे मुंशी लोग जो होते थे पुराने टाइम के, उनके हिसाब से कि जो कैलकुलेशंस है या फिर एक्चुअली प्लेइंग विद द नंबर्स कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हो, या मतलब नॉट एग्जैक्टली द मैथ्स बट द डेबिट एंड द क्रेडिट दैट वी हैव इन द अकाउंट्स, तो दैट इंस्पायर्ड मी अलॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो देन एवरी वन इन माई फैमिली ऑल्सो दे सपोर्टेड मी कि नहीं, बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ाई में काफी रुचि रखता है, बिकॉज आई हैव बीन अ टॉपर सिंस माई स्कूल इन क्लास 10th इन क्लास 12th। सो पढ़ाई वॉज नेवर अ पॉइंट कि इट वुड गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी और वुड नॉट लेट मी टू कंटिन्यू इन द एंटायर जर्नी, क्योंकि सीए अपने आप में एक ऐसा डिसीजन है जो किसी और को बताने से पहले द पॉइंट इज कि यू हैव टू बाइंड योर सेल्फ इन दैट रिलेशन विद द कोर्स और द सब्जेक्ट दैट आई वॉन्ट टू डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कम्स इन टू माई वे। सो दैट वॉज द रीजन कि आई डिसाइडेड टू परस्यू सीए एंड दिस वॉज द ओनली थिंग विच होल एंड सोल केप्ट मी मोटिवेटेड एज वेल इन माई एंटायर जर्नी। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन इंडिविजुअल आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू इन अ वे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यू वॉन्ट टू बी एंड एज एन इंडिविजुअल यू वॉन्ट टू हैव योर ओपिनियंस और पोर्ट्रे दैट। तो उस पूरी जर्नी में जिसने मुझे हेल्प किया, इट वॉज ऑब्वियसली कि आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, प्लस द चॉइसेस दैट यू इवन मेक कि यू हैव टू सैक्रिफाइस अपना पार्टीज, अपने फ्रेंड्स, अपना सोशल लाइफ, अपना लाइक फोन एंड एवरीथिंग जो आपके पास में है, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑन वंस पार्ट। सो यस, दैट इज द

0: reason which inspired me a lot in my entire journey because it was fun. Like, if I just try to connect the dots and even introspect my entire journey, so that's the only thing which taught me that I know being a chartered accountant, it's a game of numbers. We learn to balance, but most of the important things in life cannot be balanced altogether, and that is patience, perseverance, self-belief, and even knowing what to do and to even keep it doing, having the faith.
1: That's amazing, Khushi. As you know, CA is considered one of the most challenging course out there. आपके लिए सबसे ज़्यादा challenging क्या था? क्या कभी ऐसा लगा कि बस अब किताबों को बंद कर देते हैं या give up करने का thought आया हो आपके पास?
0: So, Malaika, as you mentioned, that CA is one of the toughest exams, which I would also agree because it's not only about adding the letters prior to your name, but it's a whole journey of like 4 to 4.5 years. Kyunki when I started it back in my days, so it took many of the years of my life as well, where I have to sacrifice like my social life or even my graduation, that I cannot pursue the normal college life at that point of time. And similarly, there were two instances which I might walk through as a story where I thought that I do give up and I should not continue that journey. So first instance was that when I was appearing for my second level, like there are total three levels, and in the second level where I faced my first attempt where I appeared for the exams and I wasn't able to clear, the result was unsuccessful. So it was that point of time ki when back to your school days, you have been a topper and you have always appeared to be in a way. So mere liye that was the first time where I saw that I wasn't able to clear the exam, because being into a CA or even a professional qualification, यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट आई वुड ऑलवेज एम फॉर अ रैंक. जैसे स्कूल लेवल में होता था कि मैं फर्स्ट ही आऊंगी या सेकेंड ही आऊंगी एंड पास तो हम हैं, तो हियर इट सीम्स टू लाइक कि आई वॉन्ट टू क्लियर फर्स्ट एंड देन आई कैन एम फॉर माई सेल्फ एज अ रैंक. सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि वेन आई वॉजेंट एबल टू क्लियर, एंड टू एन एक्सटेंट आई वॉज अ बिट शॉक कि मतलब मैंने क्लियर नहीं करा एंड आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, वेर आई इवन लाइक क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली एंड एवरी वन कि मुझसे नहीं हो रहा है या जिस हिसाब से है. बट देन एवरी वन मोटिवेटेड और एवरी वन जस्ट बी लाइक कि दैट वॉज द ओनली पॉइंट वे दे ऑल टोल्ड मी कि समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने जिस समय सोचा और जैसे सोचा वो उस हिसाब से हो. इट टेक्स अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट वॉज द ओनली रीजन कि विच टोल्ड मी अबाउट द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द पेशेंस दैट यू हैव टू, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द मार्क्स दैट आई गेट इन माई होल क्वालिफिकेशन जर्नी, बट इट टॉट मी अ लॉट ऑन द अदर हैंड रिगार्डिंग द पेशेंस दैट आई हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर. एज जिंदगी में हमेशा आंसर्स के पीछे नहीं भाग सकते, बिकॉज टिल द टाइम यू रीच टू द आंसर्स लाइफ चेंजेस द क्वेश्चंस. सो इट कैन नॉट हैपन एवरी टाइम दैट यू हैव योर एंटायर जर्नी फिगर्ड आउट. सो दैट वॉज वन इंस्टेंस. एंड सेकेंड विच वॉज वेन आई अपियर दिस ईयर फॉर माई सी ए एग्जाम्स, एंड अगेन दैट देर वॉज एन अटेम्प्ट विच आई इवन फेस्ड दैट इन जैन आई अपियर फॉर माई एग्जाम्स एंड आई वॉजन्ट एबल टू क्लियर माई ग्रुप टू बिकॉज आई अपियर फॉर द एग्जाम्स सेपरेटली. देन अगेन इट वॉज क्योंकि ये वो टाइम था जब 2.5 ईयर्स की आपकी ट्रेनिंग के बाद में यू आर नाउ सिटिंग डाउन इन द क्लोज्ड रूम्स दैट यू हैव टू फोकस ऑल डे ऑल अलॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली दैट यू कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि आप नहीं कर सकते वो चीज़ों को एक्सेस, लाइक मोबाइल फोन्स, गोइंग आउट, यू हैव टू सैक्रिफाइस द स्लीपलेस नाइट, द सेल्फ डाउट दैट यू हैव इन योर लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बींग इन दैट जर्नी. तो अगेन आई थॉट दैट आई वॉन्ट टू गिव अप, बट स्टिल समथिंग वॉज देयर स्टक इन टू मी विच एक्चुअली लेड मी दैट नो यू शुड नॉट गिव अप एंड यू शुड कंटिन्यू दैट जर्नी. सो इट्स जस्ट दैट विच आई वुड लाइक टू से.
1: खुशी, इट्स अमेजिंग विद यू. आई एम पर्सनली फीलिंग सो इंस्पायर्ड फॉर माई करियर. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यूथ हैज लर्न अ लॉट विद योर स्टोरी एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग विद यू हेयर इन द स्टूडियो. थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर.
0: थैंक यू.
2: अभी आपने सुना यंग सीए खुशी शर्मा को. उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. तो आइए सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गीत.

0: ये गाना सुन के तो मजा ही आ गया।
1: हाँ अंशु, सेम टू सेम। अब बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विक बास।
1: आज ही के दिन 9 सितंबर सन 1990 को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU का दर्जा मिला।
0: ये कहानी किसी कॉलेज से विश्वविद्यालय बनने की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सर सैयद अहमद खान की संघर्ष और ख्वाब है, जहां तालीम को ही तरक्की की बुनियाद माना गया है।
1: क्या बात बोली है अंशु आपने। तालीम से याद आया कि आज आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म आज ही के दिन 1850 में वाराणसी में हुआ था।
0: उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ना पसंद करते हैं।
1: और तो और उन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को भी आगे बढ़ाया है।
0: और आज ही के दिन 9 सितंबर 1970 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में कारगिल युद्ध के वीर शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम वीरभद्रा का जन्म हुआ था, और उन पर तो एक मूवी भी बनी है।
1: हाँ, उनकी जो मूवी है शेरशाह, वो 2021 में रिलीज हुई थी। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले कैप्टन बत्रा जी का साहस आज भी हर भारतीय के लिए वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।
0: इसी वीरता को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: और आइए अब चलते हैं हमारे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड।
1: सबसे पहले बात करते हैं उन युवाओं की जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। IBPS, RRB, ऑफिस असिस्टेंट के लिए रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शुरू हो चुका है और 21 सितंबर 2026 तक चलेगा। अगर आप लोग भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है।
0: तो देर किस बात की है, जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और इस फील्ड में रुचि रखते हैं वो आज ही www.ibps.in पर रजिस्टर कर सकते हैं।
1: वैसे अंशु, मेरा एक सवाल है, क्या आज के टाइम में सिर्फ डिग्री ही काफी है जॉब पाने के लिए?
0: बिल्कुल नहीं, आज डिग्री के साथ स्किल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है, इसलिए युवाओं को इंटर्नशिप्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का फायदा जरूर उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात की अंशु आपने। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के 2026-2027 एप्लीकेशंस की लास्ट डेट बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है।
0: तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे श्रोताओं को ये जानकारी जरूर काम आई होगी।
1: तो ये था आज का हमारा क्विक बस।
0: और अब आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक ऐसा गाना जो हर उस युवा के लिए है।

0: मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम का ये खूबसूरत सफ़र अब अपनी आखिरी मंजिल पर है, लेकिन शायद कुछ बातें किसी मंजिल पर नहीं रुकती।
1: जी हाँ, हो सकता है आज की किसी बात ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, कोई सवाल जहन में आया हो जिसने दिल पे दस्तक दी हो।
0: तो सिर्फ उसे खुद तक मत रखिए, हमारे साथ भी उसे आप जरूर शेयर कीजिए। आप हमें अपना फीडबैक बता सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर yuvarnifeedback@gmail.com पर, yuvvanifeedback@gmail.com।
1: आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मैं अंशु
0: और मैं त्रिशान,
2: मैं डिंपल, और हम सब आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम और एक नई उमंग के साथ।
0: तब तक के लिए खुश रहिए और सुनते रहिए युववाणी कार्यक्रम।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 5 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
2: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: मंत्रिमंडल ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पैंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पैंड्रा रोड तक तीसरी लाइन। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफ़ी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा जो भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ हों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्त चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डीजीफिनेक्स, पायोनेक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लॉट और ट्यू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और URL हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया

जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं

0: and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In the US Open tennis, American Ben Shelton and 11th seed Francis Tiafoe have set up a semi-final clash in men's singles. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं कुसुम बहन। और देखिए आज के हमारे कार्यक्रम में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लोकगीत भी होंगे,
0: जी
1: तो देखिए।
0: जी लोकेंद्र भाई, और देखिए बहुत सारे भजन हम सुनवाते हैं मधुर मधुर। और अभी जन्माष्टमी भी गई है और आज छठी भी है, तो इसमें हम कृष्ण का भजन सुनवाना चाहते हैं। और कृष्ण तो इतने चंचल हैं और सबके मतलब सबके मन को भाते हैं कृष्ण जी, और
1: तो आइए।
0: इतना
1: हाँ
0: उनका वर्णन सुन के हम भी बहुत आनंदित हो जाते हैं लोकेंद्र भाई।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कुसुम बहन। तो सबसे पहले अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस भजन से। कलाकार हैं सुधा श्रीवास्तव।
0: जी

0: यशोदानंद को छलियारी, हमें तो जोगनिया बनाए गए री। अभी आप सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव को, बहुत ही प्यारा भजन था। इस तरह से वो जो शिकायत कर रही थी, असल में वो उनका जो अहंकार था वो मिट गया था और भगवान की ने उनको सादगी और भक्ति के रस में रंग दिया था लोकेंद्र भाई
1: और बिल्कुल कुसुमेन, और अगला लोकगीत सुनवाते हैं वीणा ढोल व सखियों की आवाज़ में।
0: जी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वीणा ढिल्लोर और सखियों को। और लोकेंद्र भाई, गांव में होता है अक्सर जब महिलाएं एक साथ बैठकर ढोलक बजाती हैं तो वहाँ पे ये गीत एक उत्सव बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: एक महिला एक पंक्ति गाती है और बाकी सखियाँ उस पंक्ति को आगे बढ़ाती हैं, और इस तरह से गीत, लोकगीत, संगीत की शुरुआत हो जाती है। और वो उसमें जो गीत निकल कर आता है वो एक अलग ही बात होती है उसकी।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोक रंजन जो लोक संगीत और लोक संस्कृति पर आधारित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध लोक परंपराओं, लोक गीतों और क्षेत्रीय संगीत को श्रोताओं तक पहुंचाना है।
0: जी
1: और देखिए, भारत विविधताओं का देश है और हर राज्य एवं इसके अलावा क्षेत्र की अपनी अपनी लोक संगीत होता है, परंपराएं होती है, और वो किसी भी मौके पर जो हमारे लोकगीत हैं वो किसी भी मौके पर गाए जाते हैं। और देखिए, इसमें कोई वो एक पर्टिकुलर नहीं होता, देखिए चाहे वो बच्चा हो, जच्चा हो, सब किसी भी हर किसी त्यौहार, तीज त्यौहार सब में उसमें हमारी लोक संस्कृति की झलक झलकती है।
0: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, उसमें जो छेड़छाड़ होती है, जो मस्ती होती
1: हाँ
0: है, जिस तरह से हम बात करते हैं उत्सवों की, हो तो एक बहुत ही अच्छी, कहते हैं ना कि बहुत उत्सव सा माहौल बन जाता है और सभी बहुत पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और यही हमारे गांव की परंपरा है, लोकगीतों की जो शैली है सबको पसंद आती है। तो अब आगे हम क्या सुनवाने जा रहे हैं अपने
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं
1: अगला
0: को?
1: हम लोकगीत सुनवा रहे हैं पुष्पा गोसाई व साथियों की आवाज़ में, ये लोकगीत।

मेन अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पुष्पा गोसाई व साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत, और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप लोक रंजनी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
3: नमस्कार, मैं हूं रेनू गुप्ता और आज हम आपका लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बहुत सारी खबरें।
2: बिल्कुल, खूब सारी आज जानकारियां हैं और साथ ही साथ एक खास प्रोग्राम भी है। एशियन गेम्स 2026 पर सीरीज शुरू हो रही है। आज से रोज हम कुछ खेल उठाएंगे और उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। हर बार हर रोज नया खेल, नई जानकारी। साथ ही साथ वुमेन्स एशिया कप T20 के मैचेस हो रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। दिलीप ट्रॉफी के बारे में, आज फाइनल है उसके बारे में जानकारी तो देंगे ही। US ओपन हॉकी, सुब्रतो कप और पैरा आर्चरी भी आज के प्रोग्राम में
3: शामिल किया जाएगा। बिल्कुल दीपिका, और सबसे पहले बात करते हैं एशियाई खेलों की, जो कि आज की सबसे खास खबर है हमारी। तो एशियाई खेलों के लिए 503 भारतीय खिलाड़ियों का दल जापान के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या शुभकामना संदेश दिया है, आइए सुनते हैं।
4: डे बाय डे देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। हम सब लोगों ने देखा है, 2014 में हमें 57 मेडल मिले थे, लेकिन 2023 एशियन गेम्स में हमें 107 मेडल मिला। ये मेडल में बढ़ोतरी क्यों हुई? देश में एक स्पोर्ट्स के लिए इकोसिस्टम क्रिएट हुई, देश के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन हुआ। फेडरेशन लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर कंटिन्यूस डायलॉग के आधार पर कई बदलाव करे गए। उसका नतीजा ये आया कि 2023 में 2014 के सापेक्ष में 53% हमारा मेडल बढ़ा, और उसमें भी मैंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भी देखा, हमारा गोल्ड मेडल में बढ़ोतरी हो रही है। एशियन गेम्स में भी लास्ट 2014 के सापेक्ष में हम 2023 की तुलना करें तो 75% गोल्ड मेडल में बढ़ोतरी हुई। पैरा एथलेटिक्स में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 111 पैरा एथलेटिक्स में लास्ट एशियन गेम्स में हमें मेडल मिला। हमें और अच्छा करना है, ये हमें डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता से हम बहुत कम है। ये देश में ब्रेन पावर, मैन पावर और टैलेंट पूल की कोई कमी नहीं है। जब जब ये देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है, देश को अपॉर्चुनिटी मिली है, तब देश ने दुनिया में नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स सेक्टर बट एवरी सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करके हमने दिखाया है। और इसलिए आने वाले दिनों में हमें एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके प्रेशर को परफॉर्मेंस में बदलना है।
3: हाँ बिल्कुल ठीक कहा हमारे मंत्री जी ने, बहुत टैलेंट और बहुत दमखम है हमारे खिलाड़ियों में। और अब बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की
2: और सुनते हैं ये खास सीरीज चीयर फॉर इंडिया।

एशियन गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ी एक बार फिर पूरी ताकत, आत्मविश्वास और उम्मीदों के साथ उतरने को तैयार है। निशाना साधने से लेकर कोर्ट पर मुकाबला करने तक, पूल से लेकर मैदान तक, हर जगह होगी

0: भारत की चुनौती और हर मुकाबले में होगी देश की उम्मीद। तो आइए जानें भारतीय दल की तैयारियों को, हमारे खिलाड़ियों की ताकत को, पिछले एशियाई खेलों के प्रदर्शन को और उन उम्मीदों को जो इस बार भारत से जुड़ी हैं, क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये है तिरंगे के लिए जुनून। बने रहिए हमारे साथ चीयर्स फॉर इंडिया में एशियन गेम्स 2026 की पूरी तैयारी और भारत की हर बड़ी उम्मीद के साथ। आज की कड़ी में हम जानेंगे सेपेक टक्रो, वॉलीबॉल और एक्वेटिक्स के बारे में। जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियाई खेलों का आयोजन होने जा रहा है। पिछली बार हांगझोऊ में भारत ने इतिहास रचा था, 107 पदक भारत की झोली में आए थे, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक थे। और सबसे पहले बात करते हैं सेपेक टक्रो की। एक छोटी सी गेंद, सामने ऊंचा नेट और खिलाड़ी उसे हाथ लगाए बिना पैर, घुटने और सिर से खेल रहा है, यही है सेपेक टक्रो। यह खेल देखने में जितना रोमांचक है, खेलने में उतना ही मुश्किल। और इस खेल में भारत अब कोई नया नाम नहीं है। 2018 के एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था और फिर हांगझोऊ 2022 में भारतीय महिला टीम ने भी वेमेन्स रेगू में कांस्य पदक अपने नाम किया, यानी भारत ने इस खेल में अपने लिए एक जगह बना ली है। अब नजर है जापान पर। इस बार भारतीय पुरुष टीम में अरुण राजू, जसवीर सिंह, आशीष चुनावत, लोखोन सिंह, बॉबी कुमार और आकाश युमनाम जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं महिला टीम में प्रिया देवी, मैपक देवी, चौबा देवी, शिल्पा एलंगम्बम और उनके साथी खिलाड़ी भारत की चुनौती पेश करेंगे। नाम भले ही अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, पिछले पदक को और चमकदार बनाना। क्या कहते हैं सेपेक टक्रो के कोच संदीप, आइए सुनते हैं।
1: सर, टीम पूरी तरह तैयार है और इस बार भी हम मेडल के साथ ही वापसी करेंगे, हमें उम्मीद है पूरी पूरी। इंडिया टीम की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं अभी ईसाई सेंटर सोनीपत में और टीम सब प्लेयर्स फिट हैं। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, इनसे हमें चुनौतियाँ मिलेंगी, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हम जीतेंगे जरूर। हाँ जी, टेस्ट इवेंट हुआ था उसमें इंडिया टीम ने गोल्ड मेडल लिया था और उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप हुआ था मलेशिया में, उसमें हमने क्वाड इवेंट में सिल्वर मेडल लिया और उसके बाद अभी हाल ही में मलेशिया में 39th किंग्स कप हुआ था, उसमें इंडिया टीम ने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए।
0: कोच से खास बातचीत करी हमारे सहयोगी नवीन कुमार शर्मा। भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी में फिटनेस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस पर खास जोर है, क्योंकि सेपेक टक्रो में एक ही पल की चूक और मुकाबला हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर टाइमिंग सही रही, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन रहा तो भारतीय टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो सेपेक टक्रो में भारत की उम्मीद पदक की है और इस बार सवाल सिर्फ पदक जीतने का नहीं है, पदक का रंग बदलने का भी है। और अब चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की ओर। एक तरफ नेट, दूसरी तरफ विरोधी टीम और बीच में भारतीय खिलाड़ी। इस खेल से भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। एशियन गेम्स में भारत ने वॉलीबॉल में 3 पदक जीते हैं, 1958 में कांस्य, 1962 में रजत और 1986 में फिर कांस्य, लेकिन उसके बाद पदक का इंतजार, एक लंबा इंतजार। और अब अची नोगोया में भारतीय पुरुष टीम इस इंतजार को खत्म करने का सपना लेकर उतर रही है। भारतीय टीम में अमित गुलिया, अश्वल राय, मुथुस्वामी अपायू, चिराग यादव, जॉयल बेंजामिन और उनके साथी खिलाड़ी शामिल हैं। कुल 12 खिलाड़ी, छोटी सी टीम लेकिन बड़ा लक्ष्य। हांगझोऊ में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी, साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीम को भारत ने हराकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन आगे बढ़ते हुए टीम पोडियम तक नहीं पहुंच सकी। इस बार टीम उस अनुभव से सीख लेकर उतर रही है। अची नोगोया में भारत के सामने कतर, वियतनाम और हांगकांग, चाइना जैसी टीमें होंगी। ऐसे में सर्व महत्वपूर्ण होगा, हर ब्लॉक महत्वपूर्ण होगा, हर पॉइंट महत्वपूर्ण होगा और सबसे जरूरी होगा प्रेशर में धैर्य, क्योंकि वॉलीबॉल में एक पॉइंट में मोमेंटम बदल सकता है। एक शानदार रैली पूरी टीम जोश भर सकती है और एक छोटी गलती मुकाबले की दिशा बदल सकती है। भारतीय टीम के पास अनुभव भी है, युवा जोश भी है और सबसे बड़ी बात पदक का सपना है। 37 साल से ज्यादा समय से एशियन गेम्स वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम पोडियम से दूर है। अब उम्मीद है कि

एचिनो गोया में यह इंतज़ार खत्म हो, क्योंकि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए बस एक शानदार टूर्नामेंट चाहिए। और अब वॉलीबॉल के कोर्ट से चलते हैं पानी की लहरों के बीच, यानी कि अब बारी है एक्वेटिक्स यानी स्विमिंग की। यहाँ मुकाबला किसी खिलाड़ी से कम और घड़ी से ज्यादा होता है। हर स्ट्रोक मायने रखता है, हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मायने रखता है, और फिनिश लाइन पर वही खिलाड़ी आगे होता है जो अपनी पूरी ताकत सही समय पर लगा पाए। एचिनो गोया के लिए भारत ने 12 स्विमर्स की टीम चुनी है। इस टीम में अनुभव भी है और युवा ऊर्जा भी। श्रीहरि नटराज, साजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और वेदांत माधवन जैसे नाम भारतीय उम्मीदों को मजबूत करते हैं। श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लंबा अनुभव है। दोनों ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस अनुभव का फायदा एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर निश्चित रूप से होगा। और फिर नजरें हैं युवा वेदांत माधवन पर। वेदांत 200 मीटर फ्रीस्टाइल और 200 मीटर बैकस्ट्रोक के साथ रिले में भी भारत की चुनौती का हिस्सा है। दूसरी ओर आर्यन नेहरा डिस्टेंस स्विमिंग में भारत की उम्मीद है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी रफ्तार में लगातार सुधार किया है। लेकिन स्विमिंग में भारत के सामने एक बड़ा सवाल भी है। एशियन गेम्स में भारत को स्विमिंग का आखिरी पदक 2014 में मिला था। उसके बाद लंबा इंतजार। हांगझोऊ में भी भारतीय स्विमर्स पोडियम तक नहीं पहुंच पाए। यानी एचिनो गोया में लक्ष्य साफ है, इस इंतजार को खत्म करना। लेकिन स्विमिंग में पदक जीतना आसान नहीं। एशियन गेम्स में जापान, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में स्विमर्स बेहद मजबूत हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को अपना बेस्ट टाइम देना होगा। शायद पर्सनल बेस्ट, शायद नेशनल रिकॉर्ड, और अगर दिन भारत का रहा तो शायद पोडियम भी। आज के ये तीन खेल और सपना एक ही। सेपेक टेक्ट्रो में भारत के पास पदक की विरासत है, तो वॉलीबॉल में शानदार इतिहास और लंबे इंतजार को खत्म करने की चुनौती, वहीं स्विमिंग में है एक नई पीढ़ी जो पानी की लहरों को चीरकर भारत को पोडियम तक पहुंचाने का सपना देख रही है। तीनों खेल अलग हैं, तीनों की चुनौतियां अलग हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जर्सी पर लिखा है इंडिया, और यही इन सबको जोड़ता है। इस बार भारत की तैयारी सिर्फ मैदान या स्विमिंग पूल तक सीमित नहीं है। खिलाड़ियों को जापान के माहौल के अनुकूल बनाने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज खिलाड़ियों को दी जा रही है। एचिनो गोया गेम से पारंपरिक एथलेटिक्स विलेज नहीं होगा, तो एचिनो गोया से हम क्या उम्मीद करें? सेपेक टेक्ट्रो से पदक की उम्मीद, वॉलीबॉल से एक लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद, और स्विमिंग से एक नई शुरुआत। लेकिन याद रखिए, पदक सिर्फ पोडियम पर नहीं बनता, पदक बनता है सुबह की प्रैक्टिस में, खाली स्टेडियम में, बार बार दोहराई गई उसी टेक्निक में, और हार के बाद फिर से उठने में, और विश्वास में कि अगली बार बेहतर करना है। तो अब एचिनो गोया में भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे, किसके हाथ में सेपेक टेक्ट्रो की गेंद होगी, किसकी नज़र वॉलीबॉल के नेट पर होगी, और कोई स्विमिंग पूल की लेन में खड़ा होगा। लेकिन करोड़ों भारतीयों की नज़र उन पर होगी, हर पॉइंट पर तालियां होंगी, हर स्ट्रोक पर उम्मीद होगी, हर जीत पर तिरंगा लहराएगा, और हार भी हुई तो देश कहेगा कोशिश जारी रखो, क्योंकि खेल में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जज्बा भी मायने रखता है। तो आइए एचिनो गोया 2026 में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और पूरे दिल से कहें चीयर्स फॉर इंडिया, चीयर्स फॉर टीम इंडिया।

जी हाँ दीपिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खेल में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जज्बा भी मायने रखता है। और अब आपको ले चलते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां विमेन्स T20 एशिया कप एक रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। तो आइए जानते हैं विमेन्स T20। T20 एशिया कप में मंगलवार यानी 8 सितंबर को बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच मुकाबला खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मैच में बांग्लादेश ने UAE को 34 रन से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 103 रन पर 7 विकेट बनाए। जवाब में UAE की टीम 20 ओवर में 69 रन पर 9 विकेट ही बना सकी। ये जीत बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टूर्नामेंट के नॉकआउट समीकरण में बांग्लादेश की जीत के साथ अंतिम चार की तस्वीर साफ हुई और अब उसका सामना भारत से होगा। बांग्लादेश ने मुकाबले में गेंदबाज

0: के दौरान लगातार दबाव बनाए रखा। यूएई की बल्लेबाजी लक्ष्य के सामने गति नहीं पकड़ सकी और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इस नतीजे का अर्थ यह हुआ कि अब विमेंस एशिया कप में सेमीफाइनल मुकाबले होंगे भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि 10 सितंबर को खेला जाएगा, और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जो 11 सितंबर को खेला जाएगा। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल की। भारत ने ग्रुप स्टेज में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से हांगकांग चाइना के खिलाफ भारत की जीत बेहद प्रभावशाली रही, जिसमें स्मृति मंदाना ने 124 रन की शानदार पारी खेली और भारत ने 193 रन बनाए। हांगकांग चाइना की टीम 56 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 137 रन से जीता। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन है। शीर्ष क्रम में स्मृति मंदाना जैसी अनुभवी बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में उपयोगी विकल्प और बॉलिंग में दीप्ति शर्मा जैसी ऑलराउंडर। बांग्लादेश को हल्के में लेना भारत के लिए गलती होगी। बांग्लादेश ने यूएई को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और नॉकआउट मुकाबले में उसका लक्ष्य निश्चित रूप से भारत को शुरुआती दबाव में डालना होगा। इस मुकाबले में भारत की कोशिश होगी कि पावर प्ले में तेज शुरुआत मिले, मिडल ओवर में विकेट हाथ में रहे और गेंदबाजी के दौरान बांग्लादेश के स्कोरिंग ऑप्शंस को सीमित किया जाए। एक तरफ भारत सेमीफाइनल में अपने अभियान को आगे बढ़ाना चाहेगा तो बांग्लादेश पहली बार नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ बड़े मंच पर उतरेगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। श्रीलंका पिछली विमेंस एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है। 2024 में श्रीलंका ने फाइनल में इंडिया को हराकर खिताब जीता था, इसलिए श्रीलंका के पास डिफेंडिंग चैंपियन का आत्मविश्वास है, जबकि पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 13 सितंबर को टाइटल के लिए भिड़ेंगे, यानी विमेंस एशिया कप अब अपने सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुका है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि महिला एशिया कप में भारत और बांग्लादेश की टक्कर का इतिहास भी काफी रोमांचक रहा है। 2018 के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार विमेंस एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। कुआलालंपुर में खेले गए उस फाइनल में भारत ने 20 ओवर में 112 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने आखिरी गेंद पर 113 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो अब हम सभी की नजरें रहेंगी आने वाले मैचेस पर और देखेंगे कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है।
1: और अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, यानी कि दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच के चौथे दिन का क्या है हल, वो जान लेते हैं। चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन ने साउथ जोन पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। आज चौथे दिन की शुरुआत साउथ जोन के लिए बेहद मुश्किल स्थिति से रही और उसके सामने ईस्ट जोन की विशाल बढ़त को कम करने की चुनौती थी, लेकिन ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में भी अच्छी शुरुआत की और बढ़त को 500 के पार पहुंचा दिया। हालांकि उसे शुरुआती झटके लगे, युवा वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं अभिमन्यु ईश्वरन 3 रन ही बना पाए। शिखर मोहन की बात करें तो 52 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन, जिन्होंने पिछली पारी में 270 रन बनाए थे, 80 रन बना पाए और कुमार कुशाग्रा 34 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सुदीप कुमार जो है वो रन आउट हो चुके हैं 2 रन बनाकर और कुमार कुशाग्रा के साथ मोहम्मद कुनैन कुरैशी 26 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और टोटल है भारत का 212 5 विकेट के नुकसान पर।

न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में रोशनी है, रफ्तार है और हर पॉइंट के साथ बढ़ता रोमांच। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में अब खिताब की जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं। अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। क्वार्टर फाइनल्स में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं और डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज के बाहर होने के बाद पुरुषों के वर्ग में इस बार नया चैंपियन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात फ्रांसिस टियाफो और एलेक्स माइकलसन के बीच हुए रोमांचक मुकाबले की। दो सेट से पिछड़ने के बाद फ्रांसिस टियाफो ने शानदार कमबैक करते हुए फेलो अमेरिकन एलेक्स माइकलसन को 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 से हराया। करीब 4 घंटे 38 मिनट चले इस मुकाबले में टियाफो एक समय हार की कगार पर थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त रेजिलियंस दिखाते हुए मैच का रुख पलट दिया। इस जीत के साथ टियाफो ने तीसरी बार यूएस ओपन सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले वह 2022 और 2024 में भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। खास बात यह है कि टियाफो इस सदी में एंड्रे अगासी के बाद यूएस ओपन में 3 बार सेमीफाइनल खेलने वाले दूसरे अमेरिकन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। माइकलसन के लिए यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल था और हार के बावजूद

उन्होंने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया। दूसरी ओर बेन शेल्टन ने डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज़ को 5 सेट्स के बेहद रोमांचक मुकाबले में हराकर बड़ा उलटफेर किया। शेल्टन ने अल्काराज़ को 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 से हराया। करीब 4 घंटे 28 मिनट चले इस मुकाबले का अंत न्यूयॉर्क में देर रात हुआ और ये US ओपन इतिहास में सबसे देर से खत्म होने वाले मुकाबलों में शामिल हो गया। इस जीत के साथ शेल्टन ने दूसरी बार US ओपन सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले वह 2023 में भी US ओपन सेमीफाइनल खेल चुके हैं, जहां उन्हें नोवाक जोकोविक से हार मिली थी। इस तरह मेन सिंगल का पहला सेमीफाइनल तय हो चुका है, यानी फ्रांसिस तियाफो वर्सेस बेन शेल्टन। यानी फ्लशिंग मीडोज में एक और ऑल अमेरिकन सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। इस मुकाबले का विजेता US ओपन फाइनल में पहुंचेगा और अमेरिकी पुरुष टेनिस के लंबे ग्रैंड स्लैम टाइटल ड्रॉट को खत्म करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगा। बाकी क्वार्टर फाइनल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना बॉटिक वेंडे जांसकुल्प से, जबकि कैरेन खचानोव का मुकाबला अलेक्जेंडर ब्लॉक से होना है। इन मुकाबलों के विजेता दूसरे सेमीफाइनल्स में आमने सामने होंगे। अब बात करते हैं विमेन सिंगल्स की। विमेन सिंगल्स में डिफेंडिंग चैंपियन आर्याना सबालेंका ने लिंडा नोस्कोवा को बेहद करीबी मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यह सबालेंका का लगातार 6ठा US ओपन सेमीफाइनल है। 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन अब लगातार 3रा US ओपन टाइटल जीतने की कोशिश में है। दूसरे विमेन्स क्वार्टर फाइनल में जेसिका पेग्यूला ने फेलो अमेरिकन एमा नोवारो को 3-6, 6-4, 6-3 से हराया। एक सेट से पिछड़ने के बाद पेग्यूला ने शानदार वापसी की और लगातार 3रे साल US ओपन सेमीफाइनल में पहुंच गई। यह 2024 में फाइनल और 2025 में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद उनका लगातार 3रा US ओपन सेमीफाइनल है। इस जीत के साथ 2026 सीजन में पेग्यूला की 50वीं जीत भी पूरी हुई। अब सेमीफाइनल में उनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन आर्याना सबालेंका से होगा। ये मुकाबला खास होगा क्योंकि सबालेंका ने पेग्यूला को 2024 US ओपन फाइनल में हराया था और 2025 में सेमीफाइनल में भी पेग्यूला को मात दी थी। इस तरह विमेन सिंगल का पहला सेमीफाइनल भी तय हो चुका है, यानी सबालेंका वर्सेस जेसिका पेग्यूला। महिला वर्ग के बाकी क्वार्टर फाइनल्स में एलिना रायबाकीना का सामना जेंग क्विनवेन और कोको गॉफ का सामना मीरा एड्रीवा से होना है। इन दोनों मुकाबलों के विजेता दूसरे सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। फ्लशिंग मीडोज में अब हर मुकाबला ग्रैंड स्लैम टाइटल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। अमेरिकी खिलाड़ियों की मजबूत मौजूदगी ने इस ईयर US ओपन को और भी खास बना दिया है और अब इंतजार है उन 4 खिलाड़ियों का जो मेंस और विमेन सिंगल्स के फाइनल के टाइटल के लिए उतरेंगे और अपनी जीत दर्ज कराएंगे। और अब बात कर लेते हैं जूनियर एशिया कप हॉकी की। चीन के मोकी में चल रहे जूनियर एशिया कप हॉकी से भारतीय प्रशंसकों के लिए बेहतरीन खबरें आ रही हैं। 4 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में खिताब बचाने के मजबूत इरादे से आगे बढ़ रहा है। पूल ए में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने अपने अभियान का अंत धमाकेदार अंदाज में किया है। भारत ने आज चीनी ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले क्वार्टर में चीनी ताइपे ने भारत को रोके रखा, लेकिन इसके बाद भारतीय फॉरवर्ड लाइन ने आक्रमण की झड़ी लगा दी और अगले 3 क्वार्टर में 15 गोल दाग दिए। कप्तान अनमोल एक्का ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए अकेले 6 गोल दागे और खास बात यह रही कि उनके सभी 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। भारत 4 मैचों में 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 10 अंक लेकर पूल ए में शीर्ष पर रहा। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया को 14-0 और दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया था, जबकि जापान के खिलाफ मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा था। पूल ए से दक्षिण कोरिया ने जापान को 3-2 से हराकर दूसरा सेमीफाइनल स्थान हासिल किया। अब बात भारतीय जूनियर महिला टीम की। भारतीय महिला जूनियर टीम भी टूर्नामेंट में शानदार लय में है और लगातार 3रा एशिया कप खिताब जीतने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1, मलेशिया को 11-1 और जापान को 7-0 से हराकर पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज का मुकाबला एलीट पूल में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारत का सामना मेजबान चीन से हो रहा है। चीन भी मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया को हराकर अजेय रहा है। खिताबी हैट्रिक पर नजर अगर डालें तो पिछले संस्करण के फाइनल में भारत ने चीन को ही पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता था।
आज की भिड़ंत न केवल पूल में नंबर एक बनने के लिए अहम है, बल्कि नॉकआउट से पहले दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक इम्तिहान भी है। मोकी से आ रही ये शानदार जीतें साफ संकेत दे रही हैं कि दोनों ही भारतीय टीमें

0: इस बार भी स्वर्ण पदक की सबसे प्रबल दावेदार हैं।
1: और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, यानी कि सुब्रतो कप के अंडर 15 सब जूनियर बॉयज़ का फाइनल आज मैच होना है और ये मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। काफ़ी अहम मैच है, वेस्ट बंगाल और असम के बीच में ये फाइनल मैच खेला जाएगा और खेल के मैदान से एक ऐसी प्रतियोगिता की कहानी है ये, जिसने देश के लाखों स्कूली बच्चों को फुटबॉल का सपना देखने का हौसला दिया। इस टूर्नामेंट की खासियत सिर्फ मुकाबले नहीं है, बल्कि वह मंच है जो कम उम्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। तो कौन होगा इस बार का सब जूनियर बॉयज़ अंडर 15 का चैंपियन 65th सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में, वो हम जानेंगे अब से कुछ ही देर में जब मुकाबला होगा, और किस तरह का मुकाबला होगा और कौन सी टीम जीतती है तब पता चलेगा। और इस फाइनल की पूरी जानकारी आपको कल के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम जरूर देंगे।
0: अब बात करते हैं पैरा आर्चरी की, जहां अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के तीसरे स्टेज में भारतीय तीरंदाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। 5 से 9 सितंबर तक चले इस टूर्नामेंट में 19 देशों के 109 पैरा आर्चर्स ने हिस्सा लिया और भारत ने पहली बार इस इंटरनेशनल सीरीज के किसी लेग की मेजबानी की है। टूर्नामेंट के आखिरी दिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी। दिन की सबसे बड़ी स्टार रही वर्ल्ड की नंबर 1 शीतल देवी, जिन्होंने विमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल के फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सईदान को बेहद रोमांचक शूट ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोनों का स्कोर 144-144 टाई से हो गया था, जिसके बाद शीतल ने प्रेशर मोमेंट में इनर 10 पर परफेक्ट निशाना लगाकर सोना जीत लिया। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में यह शीतल का पहला इंडिविजुअल गोल्ड है। गोल्ड का यह सिलसिला मिक्स टीम में भी जारी रहा, जहां पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह और भावना की जोड़ी ने रिकर्व मिक्स्ड टीम के फाइनल में चीन को 6-0 से एक तरफा अंदाज में हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबलों में भी भारत का दबदबा रहा। मेंस कंपाउंड में वर्ल्ड चैंपियन तोमन कुमार ने और विमेंस कंपाउंड में सरिता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि विमेंस रिकर्व में भारत की भावना ने अपनी ही टीममेट को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले टीम इवेंट्स में भी भारत का शानदार फॉर्म दिखा था। मेंस कंपाउंड डबल्स में तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने इराक को 152-139 से हराकर गोल्ड जीता, जबकि मेंस रिकर्व डबल्स में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर इस सीरीज में लगातार तीसरा टाइटल अपने नाम किया। विमेंस रिकर्व डबल्स में भावना और पूजा को तथा W1 मिक्स टीम में स्वाति चौधरी और आदिल अंसारी को सिल्वर मेडल मिला। स्वाति ने इसके अलावा W1 विमेंस इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। टूर्नामेंट में एक और बड़ी हाईलाइट रही रिकॉर्ड्स की। शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स क्वालिफिकेशन में 1440 में 1400 का स्कोर बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि शीतल ने विमेंस इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन में 658 पॉइंट्स के साथ अपना ही एशियन रिकॉर्ड तोड़ा। अहमदाबाद के भारतीय आर्चर्स का यह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाता है कि कंपाउंड हो, रिकर्व हो या W1 कैटेगरी, भारत का बेंच स्ट्रेंथ बेहद मजबूत हो चुका है। इस साल होने वाले आईची नगोया एशियन पैरा गेम से पहले यह पूरे देश और भारतीय कैंप के लिए एक बेहद शानदार खबर है।
1: और अब वॉलीबॉल की बात करते हैं। एवीसी मेंस वॉलीबॉल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 2026 में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो चीन और ईरान से लगातार 0-3 से हारने के बाद भारत ने पूल बी के अपने आखिरी मैच में शानदार वापसी की और न्यूजीलैंड को 3-0 यानी कि 25-22, 25-18 और 25-21 से हराया। भारत ने पूल बी में 1-2 के रिकॉर्ड और 3-6 के स्टे रेशो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें बनी हुई हैं। हर पूल की टॉप 2 टीमें सीधे क्वालिफाई करती हैं, जबकि कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रहने वाली 2 सबसे अच्छी टीमें भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचती हैं। इसलिए भारत का क्वालिफिकेशन अब तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच अंतिम तुलना पर निर्भर करता है। खासकर पूल ए में बहरीन नाम बनाम ओमान के मैच के नतीजे पर भारत की 3-0 की शानदार जीत ने उन्हें मौका दिया है, लेकिन क्वालिफिकेशन की अंतिम स्थिति पूल का बचा हुआ मैच पूरा होने के बाद ही साफ होगी। जापान में हो रहा यह टूर्नामेंट एलए 2028 ओलंपिक गेम्स और 2027 FIVB मेंस वॉलीबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफिकेशन का एक अहम इवेंट है। तो ये शानदार वापसी है भारत की और अब भारत फैसले का इंतजार कर रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
0: और मुझे रेणु गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत

0: कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। विषय है पंडित गोविंद बल्लभ पंत का राष्ट्र निर्माण में योगदान। वार्ताकार हैं साहित्यकार और मीडिया कर्मी पार्थ सारथी थपलियाल।
1: राष्ट्र का निर्माण केवल युद्ध जीतने या सत्ता प्राप्त करने से नहीं होता। राष्ट्र बनता है उन लोगों के संकल्प, संघर्ष और कर्म से जो अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण की यात्रा में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उनमें से एक थे। देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के खूंट गांव में पिता मनोरथ पंत और माता गोविंदी देवी के संतान के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। उनके पिता मनोरथ पंत सरकारी सेवा में थे। बालक गोविंद बल्लभ पंत का पालन पोषण उनके नाना बद्रीदत्त जोशी के सानिध्य में हुआ। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद चले गए और जहां से उन्होंने स्नातक और विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त की। अपने अध्ययन काल में ही पंत जी इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। धीरे धीरे राष्ट्र सेवा उनका जीवन का ध्येय बन गई। जिस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था, उस समय कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की अनेक अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं जनता के लिए परेशानी का कारण थी। उनमें से एक थी कुली बेगार प्रथा। अंग्रेज अधिकारियों के सामान को ढोने के लिए स्थानीय लोगों से बिना मेहनताना काम कराया जाता था। पंत जी ने इस अन्याय का विरोध किया और कानूनी तथा राजनीतिक दोनों माध्यमों से इस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। परिषद के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सुधार, किसानों की समस्याओं और क्षेत्रीय विकास जैसे प्रश्नों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा उन्होंने बनाया। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन रहा था, तब पंत जी उत्तर प्रदेश में गांधी जी के विचारों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने संयुक्त प्रांत में आंदोलन को संगठित किया और गिरफ्तार होकर जेल चले गए। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें जेल की यातना सहनी पड़ी। पंत जी के जीवन की एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पंत जी को गंभीर चोटें आईं। इन चोटों का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर जीवन भर रहा, लेकिन राष्ट्र सेवा के मार्ग से उनके कदम कभी पीछे नहीं हटे। शरीर घायल हो सकता था, लेकिन संकल्प नहीं। पंत जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज अशिक्षा, शोषण, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अन्याय से भी मुक्त हो। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार, पंचायतों के विकास, नशाबंदी, अस्पृश्यता निवारण और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। काशीपुर में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की दिशा में भी पहल उन्होंने की। उनकी दृष्टि में राजनीति और समाज सुधार एक दूसरे से अलग नहीं थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों खादी, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वच्छता, महिला उत्थान और अस्पृश्यता निवारण के प्रति वे प्रतिबद्ध थे। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के बाद वे संयुक्त प्रांत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित भूभाग के प्रीमियर बने। उस समय लगभग मुख्यमंत्री के करीब उनका पद था। 1946 में वे पुनः इस पद पर आए। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर

0: प्रदेश हुआ और पंडित गोविंद बल्लभ पंत उसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। वे दिसंबर 1954 तक इस पद पर रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के सदियों से चली आ रही उस सामाजिक कुप्रथा को दूर करना जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बनाए हुए थी। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने और जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की प्रक्रिया उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। पंत जी समझते थे कि स्वतंत्रता केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं है, स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ है सामान्य नागरिक के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और अवसर पैदा करना। 1955 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत का केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। उनके सार्वजनिक जीवन का यह एक नया और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था। उस समय देश अभी अपने प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को मजबूत कर रहा था। राज्यों का पुनर्गठन एक जटिल और संवेदनशील विषय था। पंत जी ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च महत्व दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गृहमंत्री के रूप में उन्होंने देश की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयासों में भी सक्रिय योगदान दिया। भारतीय भाषाओं की गरिमा और राष्ट्रीय जीवन में उनकी भूमिका को लेकर उस समय व्यापक विमर्श चल रहा था। पंडित पंत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पद से बड़े व्यक्ति थे। सादगी, राष्ट्रभक्ति, कर्मठता और सामाजिक संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण थे। वे हिमालय की तरह दृढ़ थे, लेकिन जनता के सुख दुख के प्रति उतने ही संवेदनशील भी। वे नारियल जैसे कठोर भी थे और गंगा जैसे तरल और निर्मल भी। उनकी कानूनी समझ, संसदीय मामलों पर पकड़ और प्रशासनिक अनुभव असाधारण थे। वे सिद्धांतों पर दृढ़ रहते थे, लेकिन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने में विश्वास रखते थे। उनकी राष्ट्र सेवा को राष्ट्रीय सम्मान तब मिला जब 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 7 मार्च 1961 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। उस समय भी वे देश के केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर कार्यरत थे। विद्यार्थी के रूप में उन्होंने देश को समझा, वकील के रूप में जनता के अधिकारों की रक्षा की, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल की यात्राएं की, मुख्यमंत्री के रूप में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया। स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत का जीवन बताता है कि राष्ट्र निर्माण केवल बड़े पद प्राप्त करने से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण होता है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति संवेदना और कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य पर अडिग रहने से। भारत माता के इस रत्न को शत शत नमन। पर्वत की गोदी से उठकर चमके राष्ट्र के भाल, पंत जी का पावन जीवन सदा रहे मिसाल।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता कार्यक्रम, विषय पंडित गोविंद बल्लभ पंत का राष्ट्र निर्माण में योगदान। वार्ताकार थे साहित्यकार और मीडिया कर्मी पार्थ सारथी थपलियाल, प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी मनोज।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए संस्कृत के में समाचार।
1: यम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 20,000 कोट्यधिक व्ययेन 8 रेल बहुपथ प्रकल्पाः अनुमोदिताः। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्गस्य चतुष्पथीकरणाय च स्वीकृतिः प्रदत्ता। श्रीलंका वायुसेनायाः L-70 प्रक्षेपकाणाम् आधुनिकीकरणाय भारत श्रीलंका सैन्य सन्धिः हस्ताक्षरितङ्गतः। स्वभूमिः भारत विरोधी कृत्येभ्यः न प्रयुज्यते इति कोलंबो प्रशासनेन आश्वासितम्। आगामिनः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वांगरूपेण मुंबय्यां ब्रिक्स वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक नियामकानां च अन्तिमा महत्वपूर्णा संगोष्ठी साम्प्रतं प्रचलति। चीनदेशस्य शंघाई नगरे आयोज्यमानायां विश्व कौशल स्पर्धायां भारतं प्रथमवारं 11 नवीनासु कौशल श्रेणीषु भागं ग्रहीष्यति। अपि च अहमदाबादे प्रचलन्त्याः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः अन्तिमे दिवसे भारतेन उत्कृष्ट प्रदर्शनेन 2 स्वर्ण पदके 4 च कांस्य पदकानि स्वायत्तीकृतानि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं रेल संजालस्य अभूतपूर्व विस्ताराय क्षमता संवर्धनाय च 20,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां व्ययेन निर्मीयमानेभ्यः 8 बहुपथ रेल प्रकल्पेभ्यः स्वाकृतिं प्रादात्। नवदिल्ल्यां संवाददातॄन् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत् यत् एतेषु प्रथमचरणे पश्चिमबंगाल झारखण्ड ओडिशा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्येषु व्याप्त 14 मण्डलेषु नूतन मार्गस्य निर्माणं विधास्यते। अस्मिन् खड़गपुर झारसुगुड़ा चतुर्थपथः, कटनी पेण्ड्रा रोड चतुर्थपथः तथा बिलासपुर पेण्ड्रा रोड तृतीयपथः समाविष्टाः सन्ति। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश कर्नाटक तेलंगाना राज्येषु 45-500 किलोमीटर परिमित विस्ताराय 21,000 कोटि रूप्यकाणां अन्य 5 परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। मन्त्रिणा सविशेषं प्रख्यापितं यत् सर्वकारेण देशस्य 7 सान्द्रता रेल वीथीनां चतुष्पथीकरणं विधातुं निर्णयः गृहीतः। एतेषु देहली हावड़ा मुंबई हावड़ा दिल्ली मुंबई दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली चेन्नई हावड़ा चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई इति 7 प्रमुखाः मार्गाः सन्ति, येन रेलयान विलंबस्य समस्या मूलतः विनक्ष्यति।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलंबो नगरे श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार दिसानायके इत्यमुना सह महत्वपूर्णां मन्त्रणां व्यदधात्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ प्रत्यपादयतां यत् उभावपि देशौ निकटप्रतिवेशिनौ सामुद्रिकसहयोगिनौ च स्तः इति हेतोः भारतं श्रीलंका च उभयोः राष्ट्रयोः समग्रविकासाय जनकल्याणाय च परस्पर सहयोगं सातत्येन निर्वहिष्यतः। सामाजिक संचारपटले रक्षामन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् अस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षायाः स्थैर्यस्य शान्तेः समृद्धेः च संवर्धनाय उभौ देशौ संयुक्ततया कार्यं विधास्यतः। रक्षामन्त्री ह्यः त्रिदिवसीय यात्रायाः अङ्गतया कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रक्षा विदेश मन्त्रालययोः वरिष्ठाधिकारिभिः समन्वितस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधत्ते। रक्षामन्त्रिणः हार्दिकं स्वागतं व्याहरन् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः दिसानायके भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह स्वकीयं पूर्वतनं संवादं सस्मार, अथ च दृढतया पुनरुद्घोषयत् यत् श्रीलंका स्वकीयायाः भूमेः उपयोगं भारतस्य सुरक्षाहितान् बाधमानानां शत्रुतापूर्णगतिविधीनां कृते न कदापि अनुमंस्यते। अवसरेस्मिन् उभयतः श्रीलंका वायुसेना

0: राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। लोकेंद्र भाई, ग्राम संसार कार्यक्रम में हम हाजिर हैं, बहुत सारी जानकारियां लेके चर्चा भी होगी, योजना के बारे में भी जानकारी देंगे और एक वार्ता भी सुनवाएंगे और साथ ही साथ मनोरंजन भी करवाते रहेंगे।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, देखिए मौसम में एकदम से बदलाव आया है, कहीं सर्दी है, कहीं तो ऊपर उतार चढ़ाव है, कहीं गर्मी है और कहीं बरसात भी हो रही है। तो अब मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि बरसात जहाँ हो रही है वहाँ पे पानी का निकास जरूर करें, मच्छर, क्योंकि पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ पानी, मच्छर मक्खी उत्पन्न होंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इस चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें और इस मौसम में बाहर के कटे फटे फल ना खाएं, जिससे हमारे जो पेट की बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न होती हैं।
0: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, आपने बिल्कुल सही बात करी। और देखिए, मौसम बदल रहा है और जहाँ तक आपने पानी जमा होने की बात की है तो जमा बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि इस तरह से मच्छर पैदा होते हैं और सीलन भी होती है और उससे बीमार होते हैं। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर जो आपका पीने का पानी है वो अगर उबाल कर पिए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, और क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी भी हो रही है, जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम क्या करते हैं, हमारा मन ये कहता है कि गर्मी से आके फटाफट हम ठंडा पानी पी लेते हैं। तो इस
1: हाँ
0: तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने अपनों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
1: और देखिए इसके साथ साथ अपने भाइयों को हम ये भी बता दें कि इस मौसम में हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन भी पिएं और मौसम के अनुसार उचित कपड़े पहनें और तापमान में जो बदलाव है उसमें अचानक बदलाव आया उससे बचें। हाथों की स्वच्छता को, मतलब समय समय पर हाथों को साफ सुथरा रखें। और इसके साथ साथ अपने भाइयों को ये भी बताते चलें कि प्रतिदिन हल्का व्यायाम यानी कि नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए और व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दिन भर की थकान है, हमारे जो मस्तिष्क की थकान है वो सारी मिट जाए।
0: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, आपने बिल्कुल सही बात करी। खान पान के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और अपने जो मानसिक जो हमारा
1: हाँ
0: स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि बीमारी थोड़ी सी होती है लेकिन हम सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं, और उस तरह से जो हम, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम बाकी जो मानसिक बीमारियाँ उनसे बच सकते हैं
1: बिल्कुल।
0: और
1: और
0: सुरक्षित रह सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: देखिए हम बातचीत और भी करेंगे कुसुम बहन, अब अपने भाइयों को करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ये रागनी कलाकार हैं कोमल चौधरी।
0: जी।

0: अंत सावित्री से।
1: बिल्कुल। और अब हम वार्ता सुनवाते हैं खेलों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं का विकास। विशेषज्ञ हैं शंभुनाथ पांडे, जो कि खेल पत्रकार हैं। आइए सुनते हैं।
2: भारत एक विशाल ग्रामीण आबादी वाला देश है, जिसकी आत्मा आज भी गांवों में बसती है। देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की संख्या अधिक होने के बावजूद उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और मनोरंजन के पर्याप्त अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में खेल ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास का एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। खेल केवल शारीरिक शक्ति और मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुणों का भी विकास करते हैं। ग्रामीण भारत में खेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। कबड्डी, कुश्ती, खो खो, गिल्ली डंडा, दौड़ और विभिन्न प्रकार के स्थानीय खेल गांवों के जीवन का हिस्सा रहे हैं। आधुनिक समय में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेल भी ग्रामीण युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं। यदि इन खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर मिले तो ग्रामीण युवा न केवल व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा और शक्ति होते हैं। ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए केवल पुस्तकीय शिक्षा पर्याप्त नहीं है, उनके व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पक्षों का विकास आवश्यक है। खेल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले खेल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर मजबूत और सक्रिय रहता है। दौड़ने, कूदने, तैरने, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य खेलों से मांसपेशियां युवाओं की मजबूत होती हैं तथा मोटापा और कई जीवन शैली संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। ग्रामीण युवाओं में खेलों की आदत उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। खेल मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। खेल तनाव और चिंता को कम करने में सहायता करते हैं। प्रतियोगिता का सामना करने से युवाओं में मानसिक मजबूती विकसित होती है। जीत और हार दोनों को स्वीकार करना उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटना सिखाता है। खेलों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ अनुशासन का विकास है। किसी भी खिलाड़ी को नियमित अभ्यास, उचित खान पान और समय का पालन करना पड़ता है। उसे प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करना तथा अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करनी होती है। इससे ग्रामीण युवाओं में समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन की भावना विकसित होती है। एक खिलाड़ी समझता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। यही सोच शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी उसके लिए उपयोगी होती है। खेल के मैदान में सीखा गया अनुशासन जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता का आधार बन सकता है। खेल युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। टीम खेलों में कप्तान को खिलाड़ियों का नेतृत्व करना, रणनीति बनाना और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है। इससे नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं, युवा क्लबों और खेल समितियों में जिम्मेदारियां देकर उनकी नेतृत्व क्षमता को और विकसित किया जा सकता है। ऐसे युवा भविष्य में ग्राम पंचायत, सामाजिक संगठनों और सामुदायिक गतिविधियों में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ग्रामीण समाज में विभिन्न जाति, वर्ग और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। इन सामाजिक विभाजनों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका खेल निभाते हैं। मैदान में खिलाड़ी की पहचान उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके प्रदर्शन और टीम के प्रति योगदान से होती है। एक टीम में अलग अलग परिवारों और समुदायों के युवा एक साथ खेलते हैं। वे एक दूसरे पर विश्वास करना, सहयोग करना और सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करना सीखते हैं। इस प्रकार खेल गांवों में युवाओं के अंदर सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कई युवाओं में प्रतिभा होने के बावजूद अवसरों की कमी के कारण आत्मविश्वास कम हो सकता है। खेल उन्हें अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देते हैं। जब कोई युवा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करता है या पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। खेलों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने, दर्शकों और प्रतियोगियों का सामना करने तथा कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का अनुभव व्यक्तित्व को मजबूत करता है। इससे युवा जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आज खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए, खेलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक रोजगार के अवसर जुड़े हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, फिटनेस ट्रेनर, खेल प्रबंधक, रेफरी, अंपायर, फिजियोथेरेपिस्ट और खेल पत्रकार जैसे क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार पैदा होते हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को

रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। कई बार युवाओं के सामने बेरोजगारी, निराशा, नशे की लत और असामाजिक गतिविधियों जैसी कई चुनौतियां हो सकती हैं। खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनका समय रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत होता है। खेलों से जुड़े युवा अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। टीम और प्रशिक्षक का सहयोग उन्हें सकारात्मक सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति और अपराध निवारण के प्रयासों के साथ खेल गतिविधियों को जोड़ना उपयोगी हो सकता है। अक्सर लोग खेल और शिक्षा को एक दूसरे का विरोधी समझते हैं, जबकि वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेलों से विकसित एकाग्रता, अनुशासन और समय प्रबंधन विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी सहायता कर सकते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में स्थानीय खेलों को बढ़ावा देकर कम संसाधनों में भी विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। युवाओं के लिए कबड्डी, खो खो, दौड़ और वॉलीबॉल जैसे खेल अपेक्षाकृत कम खर्च में आयोजित किए जा सकते हैं। ग्रामीण युवतियों के विकास की यदि हम बात करें तो खेलों की भूमिका विशेष रूप से उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। खेल उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली बालिकाएं सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बनती हैं। यदि गांव में लड़कियों के लिए सुरक्षित खेल मैदान, प्रशिक्षक, उचित खेल सामग्री और प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराई जाएं, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण बालिकाएं खेलों से जुड़ सकती हैं। इससे लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के गाँव में अनेक प्रतिभाशाली युवा ऐसे हैं जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। कई बार आर्थिक कठिनाइयों और सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण युवा अपनी प्रतिभा स्थानीय स्तर तक ही सीमित कर पाते हैं। इसके लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर नियमित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। स्कूलों और पंचायतों के माध्यम से प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल सामग्री, पौष्टिक आहार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की योजनाएं भी समय समय पर सरकार चलाती रहती है। इससे ग्रामीण प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं। खेलों के अनेक लाभ हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनके विकास के सामने कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या खेल सुविधाओं की कमी है। अनेक गांव में उचित मैदान, खेल उपकरण और प्रशिक्षित कोच उपलब्ध नहीं होते। दूसरी समस्या आर्थिक है। गरीब परिवारों के युवा महंगे खेल उपकरण, प्रशिक्षण और यात्रा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। तीसरी समस्या खेल और शिक्षा के बीच संतुलन की है। कई परिवार खेलों को करियर के रूप में पर्याप्त महत्व नहीं देते और बच्चों को केवल पारंपरिक रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की खेल भागीदारी सामाजिक और सुरक्षा संबंधी कारणों से कम होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार विद्यालयों, पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए प्रत्येक गांव या गांवों के समूह में सुविधाजनक खेल मैदान विकसित किए जाने चाहिए। खेल सामग्री की व्यवस्था पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से की जा सकती है ताकि ग्रामीण युवाओं का विकास हो सके। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और प्रशिक्षित खेल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ग्रामीण प्रतिभाओं को जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुँचाने के लिए उचित चयन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आर्थिक रूप से ग्रामीण कमजोर युवा खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता योजनाएं होनी चाहिए। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेल क्लब और युवा क्लब बनाए जाने चाहिए। इन क्लबों में नियमित अभ्यास, प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य जागरूकता और करियर मार्गदर्शन जैसी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। आज ग्रामीण खेल विकास में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को खेल मैदानों, प्रशिक्षण केंद्रों और आवश्यक उपकरणों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का जो प्रयास करना चाहिए वो सरकार कर रही है। स्थानीय प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध खेल सुविधाओं का नियमित उपयोग हो ताकि युवा अपना करियर बना सकें, और साथ ही साथ इन उपकरणों के रख रखाव का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाएं भी गांवों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रायोजित कर सकती हैं। सफल खिलाड़ी ग्रामीण युवाओं के लिए आदर्श बन सकते हैं। गांव में खेल महोत्सव और प्रतियोगिताएं आयोजित करके खेलों को सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा सकता है। श्रोताओं, अंततः कहा जा सकता है कि खेल ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास का शक्तिशाली माध्यम है। वे युवाओं को स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच, अनुशासन, आत्मविश्वास

0: नेतृत्व, टीम भावना और सामाजिक जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। खेल, रोजगार और करियर के नए अवसर भी गांवों में खुल सकते हैं तथा युवाओं को नशे और असामाजिक गतिविधियों से दूर रखने में सहायता कर सकते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें सही अवसर और उचित संसाधन देने की है। यदि प्रत्येक गांव में खेल मैदान, प्रशिक्षक, खेल सामग्री और नियमित प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाए तथा लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाएं, तो ग्रामीण युवा देश के विकास में और अधिक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। इसलिए खेलों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानना चाहिए। मजबूत और स्वस्थ ग्रामीण युवा ही मजबूत भारत की नींव रख सकते हैं। वस्तुतः खेलों के पीछे निहित भावना अत्यंत व्यापक और महान है। खेल स्वयं की शक्ति का प्रतीक ही नहीं अपितु राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक भी होते हैं।
1: कुसुम बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता वार्ता का विषय है, विषय था खेलों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं का विकास, और जानकारी दे रहे थे शंभुनाथ पांडे जो कि खेल पत्रकार हैं, और इन्होंने कितने अच्छे से बताया कि देखिए खेलों के माध्यम से हमारे युवा बहुत कुछ पा सकते हैं। देखिए सबसे पहले उनके शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, अनुशासन और नेतृत्व हो सकता है, टीम भावनाएं भी हो सकती हैं, और इसके जरिए रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं और सामाजिक विकास भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं खेलों के माध्यम से पा सकते हैं।
2: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, और आजकल तो युवा आजकल खेलों में ज़्यादा रुचि भी रख रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अब हम बात करते हैं, देखिए आज 9 सितंबर है और आपको पता है लोकेंद्र भाई, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती आज ही मनाई जाती है। और इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य और नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा और खड़ी बोली को स्थापित करने में ऐतिहासिक कार्य किया।
1: और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, पत्रकारिता और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर को उनके नाम से भारतेंदु युग कहा जाता है। और अगले मैं आगे बता दूं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से महत्वपूर्ण जो रचना है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद और नील देवी शामिल हैं। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुर्तियों, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार के मुद्दों को प्रमुख उठाया।
2: बिल्कुल, उन्होंने काफी साहित्यिक योगदान दिया और उनका जो प्रसिद्ध पंक्ति जानते हैं लोकेंद्र भाई क्या है, उनका ये संदेश आज भी बहुत प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। उन्होंने इतनी सारी साहित्यिक योगदान दिया है, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में राष्ट्रीय जागरण और देश प्रेम की भावना को सशक्त किया है।
1: बिल्कुल, और बातचीत और भी करेंगे, तो अपने भाइयों को सुनवाते हैं अगली रागनी। कलाकार हैं योगेश कुमार व साथी और किस्सा है रामायण से।

0: उपेंद्र भाई, हमें अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे योगेश कुमार और साथी से रामायण पर आधारित ये रागनी। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत कर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो, तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2,000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 2 और लोगों को जबरन गायब कर दिया है। इससे बलूच लोगों के गायब होने और प्रभावित परिवारों को जानकारी न मिलने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। और अब समय हो गया है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: राम राम।
1: कुसुम बहन कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ मनोरंजन भी होगा।
0: जी बिल्कुल, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम समय समय पर बताते रहते हैं लोकेंद्र भाई।
1: हाँ?
0: एक ऐसी ही योजना है संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना। किसानों को सस्ते कृषि ऋण उपलब्ध कराने की एक केंद्र सरकार की ये योजना है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अल्पकालिक फसल ऋण बहुत कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत 3 लाख तक के अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सहायता का प्रावधान भी है और इसके साथ साथ ऋण की सामान्य रीति ब्याज 7% है। सरकार पात्र ऋणदात्री संस्थाओं को 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, और अब हम बता दें कि कौन कौन हो सकता है इसका पात्र, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र वही लोग हो सकते हैं, जैसे जो भी सभी व्यक्ति संयुक्त किसान जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं।
1: हाँ?
0: पट्टेदार और बटाईदार किसान जो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते हैं, स्वयं सहायता समूह, किसानों के समूह या संयुक्त सेवा वाले समूह, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भी इसके पात्र हैं।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, और देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, साहूकारों पर निर्भरता कम करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और इसके साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
0: बिल्कुल, और इसके लिए प्रक्रिया ये होगी कि कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आप अपनी नज़दीकी वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में जा सकते हैं, दस्तावेज़ जमा करवा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड जो होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता होती है, और ये सभी आप जमा करवा सकते हैं और आप इसके पात्र बन सकते हैं। तो ये तो हुई संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में।
1: हाँ?
0: तो अब हम चलते हैं, आपको बातचीत सुनवाते अभी सुनवाते हैं आपको कृषि समाचार दर्शन। इसके अंतर्गत आपको सुनवाते हैं सुगंधित फसलों का खेती और प्रसंस्करण। किसानों से बातचीत कर रही हैं संध्या गुप्ता।
1: देखिए, उन्होंने अनुभवी किसानों से बातचीत की है, वो अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, तो आइए सुनते हैं उनके अनुभव।
0: जी
2: नमस्कार, मैं संध्या कृषि समाचार दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण करने वाले किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
3: हमारा नाम राम परवेश वर्मा, ब्लॉक हमारा मसौली, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। खेती से तो हम बचपन से जुड़े हैं, हमारे मेन्था तो हमारे बचपन से हो रहा है। 1 से 1.5 हेक्टेयर में हम लोग कर रहे हैं। बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त था इसके लिए, और समय मार्च महीना पहला हफ्ता या फरवरी का दूसरा सप्ताह, जिस हिसाब से नर्सरी तैयार हो जाए, 1-10 दिन के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, 15 मार्च तक तो हर हालत में लग जाना। ज्यादातर देहाती भाषा में पिपरमिंट कहते हैं। खेत बराबर करके, पाटा करके, क्यारी बना के, क्यारी पे अब तो इस समय हमारे यहाँ करीब करीब 5-6 साल से सब नाली पे लग रही है, और नाली बना के उसी नाली के ऊपर लगता है। नाली वाले में खर्चा कम आता है, खाद का, पानी का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी अच्छी मिट्टी उमेड़ में आ जाती है, उमेड़ में पौधा लगता है। मान लो अगर बारिश हो गई तो पानी भरने की समस्या, उसमें पेड़ जो है रुकता नहीं है, जड़ लगती है, जड़ की नर्सरी बनती है। अब इस समय जो है नर्सरी के लिए, जड़ के लिए पौधा लग रहा है, बारिश में लग चुका है, वो जड़ तैयार हो जाएगी वही फरवरी में। उसके बाद उसको महीन काट के 1-1 इंच का, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है नर्सरी में। पौधा 5 से 6 इंच पे पौधा, तो हमारे यहाँ तो 18 इंच पे लाइन, 18 से 20, कुछ लोग 15 पे लगा दे रहे। तो 1 बीघा हम निकल रहा है हेक्टेयर में, मान के चलिए 150 kg कम से कम। मेन चीज जो इसमें है, जो कीड़ा लग रहा है ना सुंडी, उसकी दवा 15 से 20 दिन में हर हालत में पड़नी चाहिए, पौधा लगने के 15-20 दिन से बाद से। सिंचाई तो मौसम के ऊपर है, 8 से 10 दिन, इसमें कोई निराई का विशेष महत्व नहीं है, फिलहाल दवा से काम चल जाता है, क्योंकि नाली पे लगती है तो उसमें गुड़ाई का कोई मतलब नहीं, एक निराई या मान लो कोई किसान दो कर रहा है। इसकी कटाई मान के चलिए 90 से

0: 95 दिन पे होती है। बाकी तो सब छोटे छोटे किसान प्लांट अपना खुद का लगाए हैं ज्यादातर। मान लो जिसके 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर है, वो अपना खुद का प्लांट लगा लेते हैं। कोई विशेष खर्चा नहीं प्लांट में, 1.25 लाख रुपए में प्लांट लग जाता है। करीब करीब 5-6 साल वो चलेगा। तो इस समय तो 1350 रुपए केजी का बिक रहा है। ज्यादातर दवा में इस्तेमाल होता है। आप मान लीजिए कि एकड़ का 40,000 के आसपास खर्चा। अब उसमें ये मान के चलिए कि एकड़ में 60 केजी 65 केजी इससे कम नहीं होता है। वो तो बारिश हो जाए तो बात अलग है, या कोई दैविक आपदा आ जाए तो फिर बहुत कम हो या ना निकलेगा। हाँ, सुगंधित तो है, महक तो बहुत ज्यादा है इसमें।
1: नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी त्यागी है। मैं रहने वाला जिला बुलंदशहर खुर्जा, मेरा गांव का नाम ग्राम गवाह है और मैं सुगंधीय पौधों की खेती करता हूँ। जो मैं खेती करता हूँ, मेरी पिपरमेंट की खेती हरदोई में है, बाकी मेरी लेमन ग्रास की खेती मेरे गांव में ही है और जो स्पेयरमेंट है वो भी मेरे गाँव में ही है। स्पेयरमेंट पुदीना, पहाड़ी पुदीना हो जाता है, पहाड़ी पुदीना होता है ये, जो फरवरी से मार्च के महीने में बोया जाता है। बूढ़ा मिट्टी होती है जो पानी को जल्दी सूख लेती है, उस मिट्टी में बोया जाता है। समय जो इसका होता है वो फरवरी मार्च में होता है, फरवरी मार्च में इसकी रुपाई की जाती है। रुपाई जो करते हैं, जड़ों से तोड़ के जो खेत करते हैं, जड़ों से उसको तोड़ते हैं और उसको खेत में गाड़ते हैं। आधे से 1 फुट की दूरी पर इसको लगाते हैं, गहराई इसका 2 इंच होता है। जब भी क्रॉप हो जाती है तो इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। इसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद स्टीम डी इंस्टॉलेशन होती है भाप आसवान से, उसमें भाप आसवान से ही इसेंशियल ऑयल निकलता है। अगर मैं आपको 1 एकड़ का मोटा मोटा हिसाब बता दूं तो ये कम से कम 10 से 15 टन 1 एकड़ में हो सकती है। ये खेत की तैयारी होती है 3 से 5 हजार में हो जाती है। सामग्री इसकी 6 हजार तक आ जाती है। खाद को लगाएं तो 5 हजार तक का खाद हो जाता है। सिंचाई हो जाती है 6 हजार की साल की। अगर निगरानी के लिए इसके मजदूर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा निगरानी के लिए, वो भी 4-5 हजार का आ जाता है। कटाई और धुलाई 5 हजार, टोटल जो ना 32 हजार प्रति एकड़ हो जाता है। किसान को लाभ इसका, मैम लाभ इसका जो ना, इसकी एक जो क्रॉप होती है, एक क्रॉप से 1 एकड़ में 15 टन आराम से निकल जाता है। जैसे इसकी खेती वर्ष में एक ही बार मिलती है, सीजन के हिसाब से इसकी खेती होती है। मैम भी 4 से 5 महीने की हो जाती है। इसकी जड़ें अलग हो जाती हैं, इसकी जड़ों को जो ना टाइम लगता है फैलने में। ये मैंने पौधे नर्सरी से खरीदे थे और ये 4 महीने पूरी खेती तैयार हो जाती है। ये थोड़ा इसेंशियल ऑयल वाला पौधा हो जाता है। बहुत आसान खेती है, बस इसमें चुनौतियां क्या है, तो कीड़ा नहीं लगना चाहिए और ऊपर से जो जंगली जानवर है वो नहीं आने चाहिए बस। तो हमने जो ना बाउंड्री कर रखी है, क्योंकि जंगली जानवरों का काफी नुकसान हो जाता है। अब पानी लिमिट से लगना चाहिए। मार्केट में इसका अलग अलग रेट है, वेराइटी के ऊपर है, तो 1200 रुपये किलो से ये स्टार्ट हो जाता है। एमडी इंस्टॉलेशन यूनिट है हमारी, उसको हम उसकी पत्तियां लेते हैं, चैम्बर में उसको डाल देते हैं, नीचे से हल्की भाप से, मतलब आग लगा के हल्की हल्की भाप से उसका जो भाप ऊपर आता है उसी से वो ऑयल निकलता है। हम मैन्युफैक्चर हैं इसेंशियल ऑयल के, अरोमाथेरेपी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्ड ऑयल के, श्री यमुना एसेंस प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद। कुछ हमारे क्लाइंट है तो उनको अभी रिक्वायरमेंट पड़ रही है स्पेयरमेंट की, तो मैंने यही चीज देखते हुए, स्पेयरमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है उनको, तो मैंने सोचा मतलब इसका भी मैं खुद करूँ, क्योंकि मैं पिपरमेंट भी अभी खुद करता हूँ, लेमन ग्रास भी मैंने इसी साल चालू कराया अपना खुद का। जी मैं खेती भी करता हूँ, मैं मार्केटिंग भी करता हूँ और मैं खुद का बिजनेस भी देखता हूँ।
2: नमस्कार, मैं नागनाथ भगवंत पाटील, हेड पोस्ट लिंबावाड़ी, तालुका साकोर, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। मैंने 2018 से एरोमेटिक में काम कर रहा हूँ। थोड़े जमीन पर पहले जेरेनियम लगाया था, अभी लगभग मेरा 8 एकड़ जेरेनियम है। 2020 में खुद का डिस्टिलेशन यूनिट लगवाया। अच्छा एक्सपीरियंस 2020 से है। तभी लगभग जेरेनियम का रेट 12,500 पर केजी था। जेरेनियम उसका जो ऑयल है वो इसेंशियल ऑयल है। जेरेनियम में मेजर दो वैरायटी है, एक चाइनीज रोज वैरायटी है और दूसरी है इजिप्शियन वैरायटी। इंडिया में जो है हम कर रहे हैं या ज्यादातर करते हैं वो चाइनीज रोज वैरायटी है। इसका पहले नर्सरी करना पड़ता है। नर्सरी के लिए 2,000 स्क्वायर फुट की भी जगह हुई, उसपे हम नेट लगा के उसकी नर्सरी कर सकते हैं। जो नर्सरी है 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 हजार पौधे लगते हैं 1 एकड़ के लिए। मैंने जो खुद किया है वो पूरा ड्रिप इरिगेशन पे किया है। उसने पहले सेंद्रिय खाद डालते हैं, बाद में उसके बेड तैयार करते हैं, बेड करने के बाद ड्रिप इरिगेशन करते हैं, सिस्टम लगवाते हैं, बाद में नर्सरी करके पौधा खेत में लगवाते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12

0: 1000 पौधे लगते हैं। बाद में फर्स्ट जो कटिंग आती है वो जेरेनियम की, लगभग 4 से 5 महीने में आती है। उसमें थोड़ा बहुत हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। मेजर इसके लिए नाइट्रोजन की ज्यादातर मात्रा में जरूरत है, फॉस्फोरस की है और माइक्रोन्यूट्रेंट की है। इसका एनुअल कटिंग जो आता है लगभग 4 कटिंग आती है। मुझे जो आया वो 4 कटिंग आया, और हर मौसम में कम ज्यादा उसका ऑयल भी निकलता है। 4 कटिंग भी पकड़े तो 1 कटिंग का 5 टन भी ऑयल पकड़ा तो लगभग साल में 20 से 22 केजी ऑयल निकलता है। कभी कभी 1 टन पाला में 1 केजी से और 1.5 केजी तक जाता है, लेकिन मिनिमम 1 केजी तो ऑयल निकलता ही है। आज लगभग उसका जो मार्केट रेट है, हमने जब शुरू किया था 2018 में तब 12,500 था, 2021 में भी 12,500 आया, 2022-23 में रेट थोड़े डाउन होने लगे, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया इंडिया में, तब से रेट थोड़े थोड़े कम होते गए और रेट 8,000 तक गए। फिर भी हमने एक खेत का नाम नहीं बंद किया। बाद में वो रेट बढ़ते गए बढ़ते गए, आज जेरेनियम ऑयल का रेट लगभग 17,000 रुपये पर केजी है। अभी देखो हमारी खेती का 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए एनुअली हमको प्रॉफिट हो रहा है जेरेनियम ऑयल में। और इसके साथ साथ हम दूसरी भी खेती करते हैं, चिया सीड्स है और एरोमेटिक में तुलसी करते हैं, लेमन ग्रास करते हैं, पामोरोजा करते हैं, और एवरेजली पकड़े तो जेरेनियम का खेती हमें प्रॉफिटली लगता है। देखो जेरेनियम के जैसा ही पामोरोजा का है। पामोरोजा का बोले तो जेरेनियम में एक प्रॉब्लम दिक्कत है, जेरेनियम में एक दिक्कत है, अगर ज्यादा बारिश हुई तो इसके ऊपर फंगल अटैक होता है, लेकिन पामोरोजा है, पामोरोजा के ऊपर फंगल अटैक का हमें अब तक कोई डिसीज नहीं देखी। नहीं, पामोरोजा के ऊपर बीज आते हैं, वो बीज आने के बाद कुछ लोग डायरेक्ट वो खेती में बुवा देते हैं। हमने क्या किया, वो नर्सरी तैयार किया, नर्सरी तैयार करने के बाद वो खेत में लगाया, और एवरेजली वो भी पकड़े तो 2 महीने में कटिंग आती है पाम मोरजा की भी, और मार्केट रेट पकड़ा तो पाम मोरजा का भी 4,000 रुपये लीटर केजी रेट है उसका, और 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 केजी ऑयल वो भी निकलता है। हमें तो 40 केजी अब तक तो निकला है। ये है कि फंगिसाइड या कोई अटैक कोई चांसेस नहीं है पाम और जाए में, जैसे जेरेनियम में मेजर है, ज्यादा बारिश हुई तो फंगल आना ही आना है 100%, ये दिक्कत है। ये पाम और जाए में हमें दिक्कत नहीं मिली। तुलसी का हमने ट्रायल बेसिस भी किया, अभी तीसरा सीजन है तुलसी का हमारा। करते हैं 1 एकड़ में लगभग 200 या 300 ग्राम बीज लगता है उसका, नर्सरी तैयार करते हैं ओपन पे, नर्सरी तैयार करने के बाद हम खेत में लगाते हैं। हम एक ही कटिंग करते हैं, 4 महीने में कटिंग आती है उसका, 35 से 40 केजी ऑयल निकलता है उसका, 2,000 रुपये केजी का रेट है, लेकिन खर्चा लगभग नहीं के बराबर है तुलसी का।
1: मैं बंसराज कुमार, ग्राम दुधार, पोस्ट सुंदरगढ़ जिला औरंगाबाद बिहार से हूँ। मैं लेमन ग्रास की खेती पिछले 15 वर्षों से कर रहा हूँ। लेमन ग्रास एक बहुवर्षीय पौधा है जो एक बार लगाने के बाद 4-5 सालों तक चलता है, और हर 3 महीने पर उसकी कटिंग होती है और उसका तेल निकाला जाता है। एक कटिंग में 1 बीघे में 20 केजी तेल आता है। मार्केट वैल्यू देखें 1200 से 1500 रुपये केजी रेट रहता है। ये खेती बहुत आसान है और सिंचित क्षेत्रों में 4 बार उसकी कटिंग हो जाती है, और असिंचित क्षेत्रों में कम से कम 2 बार कटिंग होती है। ऑयल भी निकाल सकते हैं और आप हर्बल भी बेच सकते हैं जो आसानी से अभी मार्केट में उपलब्ध है। लेमन ग्रास की कई वेराइटियां हैं जो समय समय पर रिसर्च होकर के आती हैं। हमारे सीमेप की वेराइटी एक कृष्णा वेराइटी है जो कुछ दिनों तक ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अभी जोरहाट ICMR की एलेट वेराइटी है वो भी ज्यादा प्रचलित धीरे धीरे हो रही है, नया रिसर्च है वो। किसान भाई अगर लेमन ग्रास की खेती करते हैं असिंचित क्षेत्रों में भी तो उनको अच्छा मुनाफा होता है, कोई जानवर इसे बर्बाद नहीं करता, इसलिए ये सब तरफ से सुरक्षित खेती है। हमारे पास 2 एकड़ की खेती है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। 1 हफ्ता तक पानी में भी डूबा रहे तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, उससे ज्यादा होने पर नुकसान हो सकता है। इसमें स्लिप के द्वारा लगाया जाता है, जैसे एक पौधा लगाते हैं तो एक पौधे से लगभग 50, 60, 100 स्लिप बन जाते हैं, उसी स्लिप को निकाल करके फिर आगे आप उसको लगा सकते हैं। ये 2.5 फीट से 3, 3.5 फीट तक ऊंचाई पहुंचती है, और इसका जब हम लोग कटिंग करते हैं लगभग 6 इंच छोड़ करके

0: हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उससे ऑयल निकालते हैं। तेल निकालने के लिए 12 से 24 घंटा के अंदर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चाय में अगर बनाना है तो उसको कटिंग करके पत्ते को और छाया में सुखा करके छोटा छोटा पीस करके आप उसको हर्बल टी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और अभी प्रगति मैदान में जो 9th इंटरनेशनल जो एक्सपो है तो उसमें हमारा स्टॉल लगा था, इसमें जनता ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसमें लेमन ग्रास की खेती में स्लिप लगाने में ही शुरू में थोड़ा खर्च होता है, 4 सालों तक बहुत ज्यादा उसमें देख रेख नहीं रहता है, केवल उसको समय से सिंचाई कर देना पर्याप्त होता है। बहुत ज्यादा तो महंगा नहीं पड़ता है, 1 हेक्टेयर में 55,000 पौधे लगते हैं। इस पौधे का कॉस्ट करीब करीब 1 से 2 रुपये पौधा पड़ता है। तेल निकालने के लिए मशीन जो है कई एक प्रकार का बाजार में है, जिसमें SS का भी है और लोहे का भी है। 3 से 4 लाख रुपया वो मशीन का पड़ता है, जो किसान अपना लगा करके और उससे तेल निकाल सकते हैं। इसकी काफी संभावनाएं हैं मार्केट में। हर्बल टी के रूप में आजकल सभी कोई उसको स्वास्थ्यवर्धक के रूप में पीना चाह रहे हैं, तो इसका डिमांड काफी जोरों से चल रहा है बाजार में। अभी ऑनलाइन भी मार्केटिंग चल रही है, अच्छा रिजल्ट है उसका हर्बल टी के रूप में।
1: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: कुसुम बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण, किसानों से बातचीत की और उन संध्या गुप्ता ने, और उन्होंने अपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।
3: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बहुत ही हमारा जो कार्यक्रम है ध्यान से सुनते हैं, और जितनी जानकारी हम बताते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। और ये शाम का वक्त है और इस समय हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा मनोरंजन करा दें, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जानकारियों के बाद कुछ मनोरंजन होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: तो आइए हम सुनवाते हैं उनको, एक उपदेश कलाकार हैं ब्रजेश।
2: तो आइए सुनते हैं ये उपदेश।

0: तो अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे ब्रजेश।
1: जी लोकेंद्र भाई। और देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय बारिश के जो मौसम में नमी और कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में पशुओं की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उनको
0: बिल्कुल।
1: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो किस तरह से पशुओं का हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, पशुशाला जो होती है वहाँ को सूखा रखें, बाड़े या शेड में पानी ना भरने दें और उसे हमेशा सूखा और हवादार बनाए रखें। निकासी की व्यवस्था रखें, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को दुरुस्त करते रहना चाहिए और कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खी, मच्छर और जो जो भी कीटनाशक कीट पतंगे होते
0: दवा,
1: हैं
0: हाँ
1: उनको, उनसे बचाव हो सके, और फिनाइल या उचित कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कुसुम बहन। और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बताते चलें कि एक टीकाकरण और कृमि नाशक दवा का जरूर करें, और क्योंकि पशु पशु चिकित्सक की सलाह पर उनके अनुसार समय पर टीकाकरण और कृमि नाशक उपचार कराएं। और इसके साथ साथ कई संक्रमण और परजीवी रोग जो होते हैं उनसे भी बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ मच्छर, मक्खी और परजीवियों से भी बचाव करें। पशुशाला में नियमित, जैसे कि आपने कहा, नियमित सफाई करें और मक्खी मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए उचित स्वच्छता बनाए रखें।
1: बिल्कुल। और लोकेंद्र भाई, एक जब आहार की बात आती है तो उसको भी संतुलित रखना चाहिए। हरे और सूखे चारे का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए ताकि पशुओं को दस्त और अफरा जैसी शिकायत ना हो। और इसके अलावा सुबह की जो गीली घास होती है उससे बचना चाहिए, और क्योंकि उनके बीमार रहने का खतरा हो जाता है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो बरसात के मौसम में भी अपने पशुओं की उचित देखभाल कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और चलते चलते अपने भाइयों को सुनवाते हैं, ये भजन कलाकार हैं जगदीश नागर।

0: अभी आप सुन रहे थे भजन कलाकार थे जगदीश नागर।
1: और इसी के साथ आज हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स, और स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 7:35। और आइए सुनते हैं, ये कार्यक्रम है कवल और कवाली और गज़ल का। तो लीजिए सुनिए सबसे पहली पेशकश आपके समक्ष।

0: तो साथियों, अभी आपने ज़फ़र ख़ान बदायूनी और साथियों की आवाज़ में सुनी ये कव्वाली, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह

0: ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने भी राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकना है। संवाददाताओं से बातचीत में एमसीडी साउथ जोन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि इसके लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिल्डिंग का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति का आकलन करें।
1: मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिए हैं सभी बिल्डिंगों की, सभी मालिकों से भी निवेदन किया है कि आप भी सब बताएं और सारे अधिकारी जा जाके इसको देखें कि कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है, और जो अगर मरम्मत से ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाएंगे, मरम्मत से ठीक नहीं होगी तो उसे डिमोलिशन करवाएंगे।
0: राजधानी में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों के विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, इनोवेटर्स और उद्यमियों को एक साथ लाया गया। इसके अलावा सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच शुक्रवार से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7 बजे से शुरू हो गई है और रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया गया है और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा, सरदार पटेल मार्ग और मथुरा रोड सहित कई प्रमुख मार्ग परिवर्तित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यात्री यातायात पुलिस की आधिकारिक पोर्टल पर मार्गों की जानकारी भी देख सकते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: वहीं दिल्ली नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा राजधानी में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर अपने हरित क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, सुधार और रखरखाव के लिए एक व्यापक योजना लागू करते हुए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एनडीएमसी द्वारा हरित सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत क्षेत्र में व्यापक बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्य किए जा रहे हैं। एनडीएमसी द्वारा 15 प्रमुख स्थानों पर पुष्प बोर्ड स्थापित किए जाएंगे जबकि 9 प्रमुख स्थानों पर पुष्प फव्वारे लगाए जाएंगे। साथ ही एनडीएमसी की नर्सरी में तैयार किए गए 15,000 से अधिक गमलेदार पौधों को प्रमुख सड़कों, चौराहों, गोल चक्करों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एनडीएमसी ने चाणक्यपुरी स्थित ब्रिक्स फ्रेंडशिप रोज गार्डन में बागवानी और सौंदर्यीकरण कार्यो को भी तेज कर दिया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप कुमार के साथ आज ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर राजधानी के प्रमुख स्थानों का विस्तृत संयुक्त निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन स्थल और भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों से की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प

0: अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला, उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिया कि वे पीजी के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने का काम तेजी से करें, साथ ही एक ठोस योजना बनाने और हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने के लिए नए मास्टर प्लान के प्रावधानों पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत करें। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास मिले। उपराज्यपाल आज एक निजी मीडिया समूह के वरिष्ठ नागरिक क्लब द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ और सेवा कैंप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण के 45वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि एक प्रगतिशील समाज अपने युवाओं की ऊर्जा को बुजुर्गों के अनुभव और समझदारी के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन ऐप और नियमित संपर्क जैसी पहल उनकी सुरक्षा और भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज होलंबी कलां वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण कार्यक्रम दिल्ली को कूड़े से आजादी मुहिम के अंतर्गत चलाया गया। इस दौरान श्री यादव ने मेट्रो विहार होलंबी कला में अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और उपस्थित नागरिकों तथा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसरों, छात्र प्रतिनिधि मंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना शीर्षक से अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विचारपूर्ण सुझाव और व्यवहारिक समाधान साझा किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि उन्होंने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बायोमास जलाने, नदी पुनर्जीवन, बेहतर तकनीक और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिरसा ने कहा कि युवाओं को इस मिशन में सच्चे साझेदारी के रूप में आगे बढ़ते देखना अद्भुत जागरूक रहा। पर्यावरण मंत्री ने छात्रों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते रहने, नए

0: चीजों की खोज करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए पीजी सुविधाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मजबूत नियामक व्यवस्था पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए दाखिला वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉ. महेश वर्मा ने राजधानी में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाना है। स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन नए दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक शोध नवाचार छात्र कल्याण और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये अत्यंत उत्साहजनक है कि आज की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नजदीक से जानने और समझने में विशेष रुचि ले रही है। उन्होंने कहा कि जेंजी भारत की जागरूक जिज्ञासु और ऊर्जावान पीढ़ी है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कैडर सीपीडब्ल्यूडी से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव 30 वर्षों से लंबित रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय राजधानी को तेजी से विकसित सुरक्षित और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के एस्केप ड्रेन 1, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन और गोकलपुर ड्रेन सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव से निपटने के लिए ड्रेन की सफाई तथा पंपिंग व्यवस्था मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। और अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 8 बज चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम गीत मालिका का। तो श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ प्रीति। और ये जो कार्यक्रम है जहाँ सिर्फ गीत सुनाई नहीं देते बल्कि दिल के किसी कोने में उतरकर पुरानी यादों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप कोई गीत सुनते हैं तो आपको याद आती है आपकी पहली मोहब्बत, या कभी दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र दिन, और या कभी कभी किसी गीत के बोल बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। तो सुनते हैं सबसे पहला ये गीत जो अपनी ज़ुबान में बहुत सारी मोहब्बत लेकर आपके सामने है।

तो साथियों, अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म गदर 2 से था और इसके गायक विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर रहे। तो कुछ गीतों की खासियत इतनी अलग होती है कि उन्हें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया है, और यही संगीत की खूबसूरती भी होती है। जो बात हम शब्दों में नहीं कह पाते, उसे एक गीत हमारे लिए सब कुछ कह देता है। तो ऐसा ही एक गीत लेकर मैं हाजिर हूँ, फिल्म रॉकस्टार, और आवाज़ है AR रहमान और जावेद अली की।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और मैं हूं आपके साथ प्रीति। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इश्क, मोहब्बत और दोस्ती की। और फिर बात है कुछ ऐसे संगीत की जो आपको आपकी पुरानी यादों में लेके जाता है। और जहां बात पुरानी यादों की होती है, तो वहां कुछ खट्टे मीठे एहसास जो होते हैं वो ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं। और उनमें एक एहसास है दोस्ती का। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी नाम, उम्र या फिर किसी रिश्ते की मोहर की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके सामने हमें खुद को साबित करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम वक्त के लिए आपके ज़िंदगी में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ नहीं भी होते हैं, यानी उनकी जो यादें हैं वो उम्र भर

आपके साथ रहती हैं। और क्योंकि अब दोस्ती की बात है तो कुछ चुलबुली बातें भी होती हैं, क्योंकि खट्टे मीठे एहसास शायद ऐसे ही मिलकर बनते हैं। तो हमारा जो गीत अगला है वो ऐसा ही एक एहसास लेकर आपके सामने है। फिल्म है दिल चाहता है और गायक शंकर महादेवन।

जी बिल्कुल, इस गीत ने जो कहा है हमसे कि जब हम नए हैं तो अंदाज क्यों पुराना हो, और सच में अंदाज तो कभी भी पुराना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है नयापन लाना, हर दिन कुछ नया सोचना और अपने आप को पिछले दिन से आगे बढ़ाना। तो शायद कहते हैं ना कि जो गीत होते हैं और उनके जो बोल होते हैं वो आपसे बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो। और रही बात जब प्यार के इजहार की, तो शब्दों से हो ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्यार में हो तो उसकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। और कभी खामोशी या कोई गीत जो आपकी भाषा बनकर सामने वाले को ये एहसास ज़रूर दिला देते हैं कि कुछ तो ख़ास है। और शायद मोहब्बत के गीत हमेशा से संगीत की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहे हैं। तो इसी बात पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, और फिल्म है तमाशा।

तो साथियों, कितनी ही प्यारी ये लाइन है कि अगर तुम साथ हो तो ये हो और ऐसा हो और वैसा हो, यानी कि जब आपके जज्बात बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरती के साथ जब सामने आते हैं तो वो कुछ अलग ही अंदाज में आते हैं। इस गीत में भी ऐसा ही कुछ था जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने, और शब्दों में वो जादू होता है जो बहुत कुछ कह जाता है, और गाया भी अलका याग्निक ने इस अंदाज में कि हर शब्द का मतलब सामने ही रख दिया। ऐसा ही होता है, और ज़िंदगी में भी हमें ऐसा ही देखने और सुनने को मिलता है, जहां हम कई बार एक नई शुरुआत करते हैं खुद को फिर से खोजने की, और वहां वो साथ बहुत मायने रखता है जो आपके साथ होता है। ऐसा ही एक गाना है जो आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जहाँ दिल जो है ना उड़ने की ख्वाहिश रखता है, कभी मन दूसरी दुनिया में जाता है। तो सुनते हैं चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज़ में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम है गीत मालिका और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। और इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगला गीत जो सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म जब वी मेट और आवाज़ है मोहित चौहान की।

तो दोस्तों हमारा कार्यक्रम गीत मालिका देखते ही देखते अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही गया है। और आज इस कार्यक्रम के बहाने, गीतों के बहाने हमने प्यार और दोस्ती को महसूस किया, उन्हें याद किया, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा भी किया और ज़िंदगी को एक बार फिर से मुस्कुरा कर देखने की कोशिश की। तो कहते हैं ना कि गीत ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनका एहसास हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। तो आइए चलते चलते कार्यक्रम में एक ये और गीत सुनते हैं, फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
2: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2,000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ

0: किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
1: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ

0: साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold, in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesians advance to quarterfinal after goalless draw against hosts China.

0: आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
1: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल प्रयुक्त पदार्थ हैं, जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है, और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3 से 11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले अनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है, उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में, और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
0: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
2: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास

0: को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है।
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक अश्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए, जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम, माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं, वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाती हैं, वो चाय पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है, शहद पिलाना है, क्योंकि रस्में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा, और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी। अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है, एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ, तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है, और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे, बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन्स बनेंगे। और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की आईक्यू बहुत बढ़िया हो, नीट जेई निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके आईक्यू पॉइंट्स में 20 से 30% की बढ़त हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है। और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं, मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए, और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसके वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए। हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग आल्सो। जो RUTF की हम जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया। RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को। आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है, तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनबाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक OPD होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का। बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHC अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स ज्यादा खाते हैं, तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है। और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से।
1: जी बिल्कुल, पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है। जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं। इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर सभी की रोल है। और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है। और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है, उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं, उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके, जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये

0: सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो
1: जी
0: हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज होती हैं। लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, स्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले
1: जी
0: हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना।
1: जी
0: जब मैं MD कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है, कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए,
1: जी
0: तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे। एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा, एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही, कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया, जो कि हम अब आजकल HB भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिश्ड हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिश्ड हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिश्ड हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना, उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है। एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें। बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं।
1: जी
0: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज एक MD डॉक्टर को, MD पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर भाटिया,
0: जी
1: एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
2: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20 से 30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5 से 10% के बीच में है। तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय, या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा, पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
1: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार

0: इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
1: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है, और जो भी आपके मन में शंका होती है आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें, एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओं को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, वट एवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी,
0: जी
1: उसके बाद तो सब कुछ
0: बिल्कुल
1: पजल
0: ठीक
1: की
0: कह
1: तरह
0: रही हैं।
1: फिट हो जाएगा।
0: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है, और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है, और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू आनंद जी,
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसलों से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेल परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक

0: से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारत रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासूरिया से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फॉरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि भारत अपने राहत और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार हैं और इससे बाब अल मंदीब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय ये सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल होगा। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक समेत कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
2: रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स
3: द 7 हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर्स अलोंग विद सेवरल अदर कॉरिडोर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कैरी सिग्निफिकेंट ट्रैफिक इन द फ्यूचर are being upgraded to

मनोरमा भट्ट की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली लोकगीत कार्यक्रम माटी के रंग में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TNM 810 किलोहर्ट्स पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती इंद्राणी चक्रवर्ती का राग यमन में सितार वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती इंद्राणी चक्रवर्ती का राग यमन में सितार वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए

नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके हर वक्त, चाहे वो कैसा भी हो उसका वक्त, हम उसके साथ होते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म चांदनी से। इस गीत की फरमाइश की थी नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला, अंकिता, अनिकेत, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, दिल्ली से नीलम, प्रियाशी, बेबी वेदांशी, एसपी सिंह, मयंक, निखिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

करता हूँ काबू।

दोस्तों, प्यार का भूत ना कुछ ऐसा चढ़ा है जनाब, न दिन में चैन है न रातों का हिसाब। लाख कोशिश कर लो दिल को समझाने की, सच्ची मोहब्बत कर जो फितूर है उतरता नहीं है, बस बढ़ता चलता है। दोस्तों, चालबाज से आप सुन रहे थे ये गीत, आवाज़ दी थी सुदेश भोसले और कविता कृष्णा मूर्ति ने। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपाल, आशा सपाल, सोनिया, साईराज, विशाल, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की है पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, और बेंगलोर से इस गीत की फरमाइश की थी ज्योति, अमित शर्मा और प्रणवी ने।

जी हाँ दोस्तों, प्यार में थोड़ी शरारत और कभी रूठना मनाना भी होता है, तभी प्यार का असली मज़ा आता है। और एस जानकी मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म आखिरी रास्ता से। इस गीत की फरमाइश की थी महाराज से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने।

दोस्तों, चांदनी रातों में जब तेरी याद आती है, चांदनी भी जैसे तेरा पैगाम लाती है। नींद तो आंखों से रूठ जाती है, बस तेरी यादें दिल को बहलाती है। अनुराधा पौडवाल और जॉनी जॉली मुखर्जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म साथी से। इस गीत की फरमाइश की थी एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद, सुहेल, अनम, अशफ, रसीद, किदवई नगर से जुबैर अली खां, सबीहा,

पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी, शालनी, टीवा नशी खेड़ा ने। पीटीआई सेंसर मार्ग से अनिल मोहन ने।

जी हाँ दोस्तों, दिल भी एक अजीब चीज़ है। जब किसी पर आ जाए तो फिर किसी पर आता नहीं, और जब किसी से खो जाए तो लाख कोशिश के बाद मिलता नहीं। और दिल खो जाने के बाद कुछ हालत ऐसी ही होती है, जैसा अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म थी पारस मणि। इस गीत की फरमाइश की थी इंदौर से कुमारी वंदना। मराठा भाऊ मराठा पूजा रेखा, ललिता जगदीश चौहान, चंदा वानखेड़े लक्ष्मी नारायण, और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब और लड्डू ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 DRM, 810 kHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और आप हमें मेल कर सकते हैं IP Radio Delhi@gmail.com पर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म श्री 420 से। इस गीत की फरमाइश की थी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वन्ना कुमार, बिट्टू कुमार और अल्ले खाना ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से वीरेंद्र सिंह और नीलम ने। उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, कीतिका खोरवाल। पसंद पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी, लव, राधे और भाविका ने।

जी हाँ दोस्तों, प्यार में ये ही थोड़ी सी छेड़खानी और प्यारी सी मस्ती बहुत अच्छी लगती है और प्यार बना रहता है। आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म महबूब की मेहंदी से। सोनीपत से आपने ये सुनी ये फरमाइश थी सिमरन मुखी, अनीता, सुदर्शन। गांव बिटोरा, तहसील से योगी राज, श्री हरि मस्के, इंदुमती, कविता, विशाल, गोपाल, गोविंद मस्के और सभी श्रोता दोस्त। बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सुहाग से। इस गीत की फरमाइश की थी बिहार से नंदन कुमार, अंकित कुमार, और बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार, संजय कुमार ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म पाकीज़ा से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब 12 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIST संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन का विषय है विकासशील देशों के बीच सहयोग के जरिए शुष्क क्षेत्र की कृषि में बदलाव। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र के जुड़े साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केट प्लेस को चलाता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने उन दो कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जिन पर ज़िनबी गारंटी के कामकाज के लिए जरूरी डिजिटल करेंसी, प्रौद्योगिकी और दूसरी वित्तीय सेवाएं देने का आरोप है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-track projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and will also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, yesterday inaugurated the 6-lane Porvorim Elevated Corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said where infrastructure is good, there is capital investment. And where there is capital investment, employment is created. He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH-66, NH-748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 kilometer Porvorim corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. New Delhi and Colombo yesterday exchanged Memoranda of Understanding, MOUs, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defence guns will strengthen the air defence architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalize the NCC Youth Exchange Program between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anuradha Kumara Dasanayake in Colombo.

जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। नमस्कार, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सफर एक ऐसे रचनाकार के साथ है जिसकी कलम ने शायरी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और हिंदी सिनेमा के गीतों को भी अपनी भावनाओं से सजाया। आज हम बात करेंगे इब्राहिम अश्क की। इब्राहिम अश्क एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हिंदी फिल्म संगीत के चाहने वालों के सामने कई खूबसूरत गीतों ताज़े हो जाते हैं। लेकिन इब्राहिम अश्क ये कहानी केवल फिल्मी गीतों की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, साहित्य की, पत्रकारिता की, शायरी की और उस जुनून की जिसने मध्य प्रदेश के बड़नगर से निकले एक युवक को मुंबई की फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया। तो आइए शुरुआत करते हैं इब्राहिम अश्क के जीवन और रचनात्मक सफर का ये खास सफर।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

20 जुलाई 1951 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में इब्राहिम अशक का जन्म हुआ। उनका मूल नाम इब्राहिम खान गौरी था। उनके पिता शबराती खान किसान थे और माता हुसैना भी एक मजबूत और धार्मिक महिला थीं। परिवार की परिस्थितियां आसान नहीं थीं। उनके पिता की दूसरी शादी करने के बाद उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में इब्राहिम का पालन पोषण किया। बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता, लेकिन इन परेशानियों ने इब्राहिम अश्क के सपनों को छोटा नहीं किया। उनकी माता चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े, आगे बढ़े और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करे। इब्राहिम अश्क ने बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारियां समझनी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ उन्होंने छोटे मोटे काम भी किए और परिवार का सहयोग भी। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी रचनाओं में दिखाई देता है और उनकी रचनाओं को संवेदनशील बनाता है।

जिस गीत को अभी आपने सुना, ये गीत इब्राहिम अश्क के फिल्मी सफर के सबसे चर्चित गीतों में से एक है। साथियों, कहो ना प्यार है, ये फिल्म वर्ष 2000 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को हिंदी सिनेमा में एक नई पहचान दिलाई। इब्राहिम अश्क के लिए भी ये फिल्म एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। इस गीत में प्रेम की उलझन, मन की बेचैनी और युवा भावनाओं को बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। यही इब्राहिम अश्क की लेखनी की खूबी थी। वे कठिन भावनाओं को भी ऐसे शब्दों में ढाल देते थे जिन्हें आम श्रोता आसानी से अपने दिल से जोड़ सके। आइए इसी फिल्म का ये सुपर हिट गीत आपको सुनवाते हैं।

बड़नगर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इब्राहिम अश्क आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर पहुँचे। उन्होंने इंदौर विश्वविद्यालय से वर्ष 1973 में बीए और वर्ष 1974 में हिंदी साहित्य में एमए किया। बचपन से ही उन्हें कुश्ती और गायन में रुचि थी। साहित्य और संगीत के प्रति उनका आकर्षण लगातार बढ़ता गया। इंदौर का साहित्यिक वातावरण उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। यहीं उनके भीतर के कवि और शायर को अपनी दिशा मिली। उनकी शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही। साहित्य का अध्ययन उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन गया। आगे चलकर यही साहित्य समझ उनकी फिल्मी गीतों में भी दिखाई देती है। लीजिए उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत, फिल्म कोई मिल गया से और लेखनी इब्राहिम अश्क की।

शिक्षा पूरी करने के बाद इब्राहिम अश्क ने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने इंदौर समाचार से पत्रकारिता की शुरुआत की और बाद में उर्दू पत्रिका शमा तथा हिंदी पत्रिका सरिता से भी जुड़े। पत्रकारिता ने उन्हें समाज और जीवन की को बहुत करीब से देखने का अवसर दिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियों और समाज में होने वाले बदलावों को देखा और यही अनुभव धीरे धीरे उनकी शायरी और लेखन का हिस्सा बनते चले गए। उनके भीतर एक तरफ पत्रकार की सजग दृष्टि थी और दूसरी तरफ शायर का संवेदनशील मन। शायद यही वजह है कि उनके शब्दों में जीवन की सच्चाई और भावनाओं की गर्माहट दोनों दिखाई देती है।

इब्राहिम अशु को उनके साहित्यिक और रचनात्मक योगदान के लिए अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनके नाम से जुड़े सम्मानों में गालिब पुरस्कार, कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, मजरू पुरस्कार और मीर सम्मान जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। फिल्मी गीत लेखन के क्षेत्र में उन्हें सम्मान प्राप्त हुए। न जानो तुम न हम के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार वर्ग में नामांकन मिला। इन सम्मानों से ये स्पष्ट होता है कि इब्राहिम अश्क की पहचान केवल एक फिल्मी गीतकार तक सीमित नहीं थी, वे साहित्य, पत्रकारिता, शायरी और फिल्म लेखन के कई क्षेत्रों में सक्रिय

जनवरी 2022 को मुंबई में कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया। जीवन के अंतिम वर्षों तक इब्राहिम अंश लेखन से जुड़े रहे। 20 जुलाई 1951 को बड़नगर में जन्मे इस रचनाकार ने अपनी फिल्म जीवन के 7 दशक साहित्य और फिल्मी दुनिया को दिए, लेकिन किसी रचनाकार का जीवन उसके जाने के साथ समाप्त नहीं होता। उसके लिखे शब्द उसके बाद भी लोगों के बीच रहते हैं। इब्राहिम अश्क के साथ भी यही हुआ। आज जब ना तुम जानो ना हम जैसे गीत सुनाई देते हैं तो उनकी कलम की याद आती है। जब उनकी गजलें सुनी जाती हैं तो उनके शायर का चेहरा सामने आता है, और जब उनके साहित्य को पढ़ा जाता है तो उस संघर्षशील इंसान की याद आती है जिसने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपनी पहचान बनाई। बड़नगर से शुरू हुआ ये सफर इंदौर की शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य और फिर मुंबई की फिल्मी दुनिया तक पहुंचा।

ये सफर बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने हुनर और मेहनत पर विश्वास रखे तो रास्ते बनते चले जाते हैं।

ज्ञाति इब्राहिम अशोकी कलम ने गीतों को शब्द दिए और उन शब्दों ने संगीत के साथ मिलकर लाखों श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई। यही किसी गीतकार और शायर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, और आज हमने इस कार्यक्रम में जाना इब्राहिम अशक के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य योगदान, फिल्मी गीत और उन्हें मिले सम्मानों के बारे में। कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और नए सफर में, एक और ऐसे रचनाकार की कहानी के साथ जिसके शब्दों ने संगीत को और संगीत ने उसके शब्दों को अमर कर दिया। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े लोग साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आवर्जन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केटप्लेस को चलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम सेंटर हर साल अमरीकी पीड़ितों से अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometer and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari Elevated Corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created. He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvari corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. New Delhi and Colombo yesterday exchanged memoranda of understanding, that is MOUs, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defense guns will strengthen the air defense architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalize the NCC Youth Exchange Program between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defense Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anurag Kumar Dissanayake in Colombo. Municipal Corporation of Delhi, MCD, has intensified its enforcement drive against dangerous buildings, unauthorized constructions and violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws across all 12 zones of the city. As part of the intensive enforcement exercise carried out today, 34 demolition actions were undertaken across all 12 zones of MCD. In addition, 17 properties were sealed, 22 show cause notices were issued and 4 demolition orders were passed. MCD had also carried out enforcement action yesterday, during which 17 properties were demolished and 5 other properties were sealed for violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws. Under a massive survey of PG buildings across the national capital, approximately 1,243 buildings where PG faci-

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म जिंदगी और ख्वाब से।

साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, और लीजिए एक और खूबसूरत गीत आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। उनका नाम प्यार की दास्तान।

लीजिए जुमरू फिल्म का ये गीत आपके लिए, किशोर कुमार की।

साथियों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गीत। और लीजिए, अब आपके लिए ला रहे हैं माया फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व विकास सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास और अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण, बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसानी पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से उन्हें देश के विकास का वाहक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जल डमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद कार्रवाई करने की अपील की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि के 2:10 हुए हैं और लीजिए ये समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार का। तो लीजिए सुनिए नॉन स्टॉप फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी का भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पिछले 10 दिनों में देश में अलग अलग जगहों पर 6 बड़ी कार्रवाई की। इन छापेमारी में 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित इंडियन स्टार कछुए, 12 जिंदा टोके गेको, एक तरह की छिपकली, लगभग 24 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और करीब 500 ग्राम बाघ की हड्डियां जब्त की गईं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन ऑपरेशनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार जब्त की गई ये अलग अलग चीजें संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी को उजागर करती हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

अभी ना जाओ के रात बाकी है। मीलू शर्मा की आवाज़ में आपने सुनी ये बेहद प्यारी गज़ल।

और गजल गीत का कार्यक्रम मीलू शर्मा की इस गजल के साथ संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रातः की 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे रघुरमन जी का बांसुरी वादन, राग मध्यमवती में। तो आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम, बांसुरी वादन प्रस्तुति जी रघु रमन जी की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि। तदनुसार 10 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:54 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हम इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हम इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे 5 बजे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। पाँच बजकर 10 मिनट का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। 5:20 पर देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं और स्वर रंजनी कार्यक्रम भारतीय सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे उस्ताद अहमद रजा द्वारा प्रस्तुत राग आहिर तौड़ी। उनकी प्रस्तुति विचित्र वीणा स्वर में होगी। समय रहेगा 5:30। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 का समय अंग्रेजी समाचारों का है। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें आप सुनेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विचारों पर चिंतन। 6:40 का समय रामचरितमानस से अयोध्या कांड भाग 44 का है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट।

0: है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना नए प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा है कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से, जबकि चौथी सीड कोको गॉफ का सामना कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना से होगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve connectivity, ease congestion and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, 5 of the projects, covering 11 districts in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, will add about 540 kilometers to the existing railway network at a cost of over 10,021 crore rupees. 3 other projects, costing more than 10,700 crore rupees, will cover 14 districts in West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding around 656 kilometers to the network. On the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Mr. Vaishnaw said, the service will commence next year. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. Mr. Goyal stressed the need for easier access to credit, markets and

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं।

और छोड़ते जाते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के

अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जान बूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है।

अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी 1 आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्वर रंजनी कार्यक्रम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी, उस्ताद अहमद रजा द्वारा राग अहिर तोड़ी में आप सुनेंगे विचित्र वीणा पर उनका वादन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी।